0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
1: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: ओम नमः शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। प्रातः काल की इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, भगवान शिव की आराधना हो रही है। भगवान शिव के विषय में कहा कि त्वं भाभिराभिरभिभूय तमस्समस्तं नस्य भितानि तदान निशाचराणां दे दीप्यसे दिवमणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते। लोके तिवेलमतिवेल महामहोभिर् निर्भासि कौच गगने खिल लोकनेत्रः विद्रावितखिल

नमस्ते। त्वं पावने पथि सदा गतिरप्युपास्यः, कस्त्वां विना भुवन जीवन जीवतीह। स्तब्ध प्रभञ्जन विभिर्दित सर्वजन्तो, संतोषिता हि कुल सर्वगवै नमस्ते। विश्वैक पावक नतावक पावकैक, शक्तेरिते मृतवतामृत दिव्यकार्यम्। प्राणिष्यदो जगदहो।

ईश्वरविश्वमेतत् त्वत्सदा सदय समाससिते स्वभावात् संकोचमेति भवतोऽस्मि नतस्त्वमास्ताम् विश्वं भारात्मकविभार्सि विवोत्र विश्वं को विश्वनाथ भवतोऽन्ततमोरिनस्तौ सत्त्वं विनाशय तमो मम चाहि भूष स्तव्यात् परः परपरं प्रणतस्त्वमास्याम्।

0: न तोऽस्मि परमात्मनजोऽष्टमूर्तैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। द्वादश ज्योतिर्लिंग गमस्मरणम महात्मये सोमराष्टे सोमनाथम च शैलीन मलिकोर्जुनम ऊर्जया महाकालोम कारम परमेश्वरम केदारनम हिमं पृष्ठे दांड्याताभिशंकर वानारस्याम च विशीतम त्र्यंबकम गोमिती वैद्यनाथम चिताभूमि नागेशम दरुका वे सेतुबंदनम च रामेश्वरम मधुश्वरम च शिवालयम द्वादशे तानि नामानि प्रतारूर्थाम च य पठेत सर्व पाप विधि मुक्ताम सर्व सिद्धि फलम लभेत यम यम कामे पक्षे चैव पठयन्ति नरोत्तमाम प्रासिताम कामम तम तम हितम पवित्रेन मुनीश्वरः ये किंचात्मनाम नाते पतिष्यन्ति सुभा भया तेषां न जाने गर्भिवासी नैव भविष्यति। सोमराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल पर मल्लिकार्जुन, उजनी में महाकाल, ओमकार क्षेत्र में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, वाराणसी में विश्वेश्वर, गौतमी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुक वन में

नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में धुनेश्वर नाम ज्योतिर्लिंग है, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठ करके इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप टूट जाता है और सब प्रकार के दुख दूर हो जाता है और यह संपूर्ण सिद्धि के

0: वे उस मनोकामना को उस लोक के तथा परलोक में अवश्य प्राप्त करेंगे जो शुद्ध अनंत करण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे। उन्हें माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा और उत्तम लोक प्राप्त होगा। ओम शांते शांते इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः समीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज फ्राइडे 31 जुलाई 2026 के पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रावण मास भगवान शिव की आराधना भक्ति और साधना का परम पावन मास है। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए श्री रामचरितमानस के शिव सती चरित्र बालकांड दोहा संख्या 48 यानी दोहा संख्या 48 के दिव्य पाठ का शुभारंभ करें। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभ जरिषिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जग जननी भवानी सती माता भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया

आई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको सुनकर महेश्वर भगवान शिव ने परम सुख पाया। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और भगवान शिव ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। मुनि

बारी, श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर यानी कैलाश को चले।

आज उदासी दंडकवन विरचित अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्रीहरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन का राज्य त्याग कर तपस्वी और साधु वेश में दंडवक वन में विचर कर रहे थे। चलिए आज की कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस की ओर से ये मंत्रोपहार स्वीकार कीजिए। प्रस्तुतकर्ता मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति कर्ता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण है, कर्म है, स्वभाव है, वह हमारे जीवन के अंदर भर दीजिए। कितना अच्छा प्यारा मंत्र है, यह यजुर्वेद का मंत्र है। महर्षि दयानंद को बहुत ही प्रिय मंत्र है, इसलिए उन्होंने यजुर्वेद का व्याख्यान करते हुए प्रत्येक अध्याय के आरंभ में श्रोताओं उन्होंने इसका व्याख्यान किया है। हमारे जीवन के अंदर अच्छाई तब तक नहीं आ सकती जब तक बुराइयां हटेगी नहीं। बुराइयां बहुत होती हैं, दुर्गुण बहुत होते हैं, दुर्व्यसन भी बहुत होते हैं, और दुख तो हमारे जीवन में बहुत होते हैं। आध्यात्मिक दुख है, आधी भौतिक दुख है, आधी दैविक दुख है। कभी चलते चलते किसी ने कोई परेशान कर दिया, हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के दुख हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभो हमारे जीवन के समस्त दुखों को आप दूर कर दीजिए। और सुख का मतलब है जिसको हम चाहते हैं, शांति है, आनंद है, ये सब हमारे जीवन के अंदर आप प्राप्त कराइए। अच्छे गुण तब तक नहीं आ सकते जब तक बुराइयां हटेगी नहीं। किसी भी तरह की बुराई, यह काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, अहंकार की, ईगो की भावना, मैं बड़ा धनवान, मैं बड़ा विद्यावान, मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार के जितने हमारे जीवन के अंदर दुर्गुण हैं, उन सब दुर्गुणों को हे ईश्वर आप हमारे से दूर करो। और जो अच्छाइयाँ हैं जीवन के अंदर, नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, यद भद्रम तन्न आसुव। जो उत्तम उत्तम गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मनुष्य कैसे बन सकते हैं हम, प्रेम है, दया है, करुणा है, वात्सल्य है, एक दूसरे के प्रति प्रीति की भावना है, एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना है, एक दूसरे के प्रति मित्रता की भावना है, एक दूसरे के प्रति करुणा की, प्रेम की, दया की भावना है, ये सारे गुण हैं। इन गुणों को हम अपने जीवन के अंदर उतारने का पूरा पूरा प्रयास करें, क्योंकि जब तक अच्छे गुण नहीं होंगे हमारे अंदर, तब तक हम दुर्गुणों से बच नहीं सकते। इसलिए यह मंत्र बहुत ही प्यारा है, इस मंत्र को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें।

पुंसि पर्जन्य इव ततन गाय गायत्र मुख्यम ओम शांति शांति शांति। गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास के पावन अवसर पर वेद संदेश के समस्त श्रोताओं को आचार्य बितुला का सादर सप्रेम नमस्ते। श्रोताओं, आज का विषय है वेद पढ़ो और पढ़ाओ। मंत्र का पाठ अभी मैंने किया, मिमी ही श्लोकमास्ये पर्जन्य इव ततन गाय गायत्र मुख्यम। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसका भाव यह है, विद्वानों से विद्या पढ़े हुए मनुष्यों, तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार के प्रयत्न के साथ वेद विद्या से शिक्षा की हुई वेदवाणी से वाणी के वक्ता के समान वक्ता होकर वायु आदि पदार्थों के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करें। श्रोताओं, इस मंत्र में जो विशेष बात हमें जाननी है वह यह है, विद्वानों से विद्या पढ़े। विद्वानों अर्थात विद्वान, विद्वान कौन? विद्वान श्रोताओं, विद्वान जिनको हैं अच्छे और बुरे की पहचान, वह है विद्वान। और वो विद्वान अच्छे और बुरे की पहचान किस आधार पर करते हैं? तो है परमपिता परमात्मा की वेदवाणी, वेद से। और जब वेद से उन्होंने यह पहचान करते हैं ये अच्छा और ये बुरा है, तो उनका वो प्रचार करते हैं। और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम भी उनको सुने और सुन करके हम उस प्रचार को आगे बढ़ाएं पूर्ण प्रयास के साथ। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में आए हम एक संकल्प लेवें परमपिता परमात्मा की वाणी को, अपनी वाणी से जो हम प्रचार करें अन्य तक पहुंचाने का प्रयास करें। अर्थात जो विद्वान ने परिश्रम किया, हमको पढ़ाया, और हम भी जितना हमसे बन पड़े हम उसका प्रचार करें। हमारा एक प्रसिद्ध कहावत है कि सर्वेषाम इव दानानाम विद्यादानम विशिष्यते। अर्थात सब दानों में विद्यादान महान है। श्रावण मास में आप विद्यादान करें, वेद का प्रचार करें। कहने का तात्पर्य यह है, आप श्रावण मास में अपने यहाँ वेदों का सत्संग का आयोजन करें, यज्ञ करें, विद्वानों को बुलाएं और वेद उपदेश अवश्य कराएं। और यही श्रावण मास का पूर्ण संदेश है। श्रोताओं, आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये ध्यानपूर्वक सुने, उसी विचार से आप इस कार्य को रूप देंगे, अपने जीवन को महान बनाए और अन्य को भी आगे इस पथ का पथिक बनाए। इस सुविधा के लिए अर्थात अपने जीवन को महान बनाने के लिए हमारी सभा गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस गांव-गांव, घर-घर, परिवारों में जो है हम जा रहे हैं इस श्रावण मास के अंतर्गत, और वेदों का प्रचार प्रसार यज्ञ सत्संग भजन के माध्यम से विशेषकर युवाओं के साथ, परिवारों के घर अर्थात अपनों के साथ लेकर के हम इसको एक भव्य रूप दे रहे हैं। आप लोग साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

सर्वव्यापक निराकार परमात्मा जो जड़ और चेतन तत्वों में विद्यमान रहता है, जिनका नाम विष्णु है और सबका पालन कर रहा है, वह हमारे कर्मों को भली भांति जानता है। धार्मिक बुद्धिमान पुरुषार्थी योगी महात्मा विद्वान सूर्य के प्रकाश में फैले हुए सर्वव्यापक विष्णु के परम पद को शुद्ध ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा में देखते हैं। जैसे पवित्र आँखों से देखने योग्य मूर्तिमान पदार्थों को देखा जाता है, वैसे ही योगी महात्मा लोग पवित्र भक्ति, पवित्र ज्ञान एवं योग साधना द्वारा अपनी पवित्र आत्मा द्वारा परमात्मा के आनंद स्वरूप को देखते हैं, आत्मा में ही परमात्मा की अनुभूति करते हैं। जब ज्ञान और भक्ति की आँखें खुल जाती हैं, तभी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की अनुभूति होती है।

ईश्वर ने जगत को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला है पृथ्वी रूप जगत, ये देखने वाला जगत है। मिट्टी, वृक्ष, पौधे, औषधियाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, सोना चांदी आदि खनिज पदार्थ, ये सब इस संसार में विद्यमान है। दूसरा है अंतरिक्ष व आकाश रूपी जगत, जो बीच वाला हिस्सा है। हवा, बादल, बिजली, अदृश्य परमाणु इनमें वास करते हैं। तीसरा है प्रकाशमय सूर्य आदि जगत, जहाँ सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र सभी प्रकार की ऊर्जा वास करते हैं। संपूर्ण जगत को बनाने, धारण करने और पालन करने वाले ईश्वर एकमात्र परमेश्वर हैं।

0: विद्धनम्।
1: परमात्मा की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, वह कण कण में वास कर रहा है। संसार में जो पदार्थ दिखाई देते हैं अथवा जो पदार्थ दिखाई नहीं भी देते हैं, गोचर या अगोचर, जड़ हो या चेतन, सब परमात्मा की व्यवस्था एवं नियमों से बंधे हुए हैं। ईश्वर ने जगत की रचना कर सबको जीने का अधिकार दिया है, अतः त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए लोभ की वृत्ति से दूर रहें। दूसरे की वस्तु को देखकर उसे पाने की लालसा न करें। संसार में पाए जाने वाले धन वैभव आखिर में किसका है और किसका हुआ है? वे धन न किसी का है और न किसी का हुआ है। सारा धन मात्र परमात्मा का है।

0: चेक सुबह के 6 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार विधिमा से। विधिमा आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार। पेश है संक्षिप्त समाचार। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के खेल जगत के लिए आज एक बेहद अहम दिन है। सबसे पहले मुक्केबाज मर्विन क्लेयर, वो 70 किलोग्राम से कम वर्ग के फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सेमीफाइनल में वेल्स के ओलांडो होले सुतुमी को हराना होगा। एक और मॉरिशस की खिलाड़ी जिन पर सबकी नजर रहेगी वे हैं नोएमी अल्फोंस। व्हीलचेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस आज होगी। बजट 2026-2027 एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। आज 3 बजे फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल आज के एजेंडे में है। बजट में घोषित कदमों को कानूनी ढांचा देने के लिए ये विधेयक जरूरी है। मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। कल दोनों पक्षों ने एनहेंस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करना है, खासतौर पर डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में। चूंकि गणेशन एयरलाइन को सऊदी अरब में मौत की सजा का खतरा है, उनके वकील रमा वालादेन कई प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। लातुकेनिक में एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस के इस निदेशक को पिछले 19 जून को उनके एक सूट केस में 3 किलो कोकीन मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। मामी खावातोमांग की जमानत की अर्जी पर बहस 17 और 18 अगस्त को तय की गई है। मलागासी व्यवसायी मामी खावातोमांग कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेल एंड रिमांड कोर्ट के समक्ष पेश हुए। और विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण शस्त्रीकरण समाप्ति के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व से पाए जा रहे बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटों पर बारिश होगी। कभी कभार सामान्य से जोरदार बारिश हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। दोपहर बाद को मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व की ओर से बहेगी जिसके झोंके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचेगी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। पूर्व और ऊंचाइयों पर रात के दौरान बादल घिरे रहेंगे और कुछ वर्षा होगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में आज सुबह नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और आज शाम 5:52 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: सुप्रभात श्रोतागण, आप सभी को पूजा की ओर से प्रणाम। ये एमबीसी रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है हर नई सुबह हमें यह अवसर देता है कि हम कल से बेहतर बने। आइए इसे सुविचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि से।
1: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।
2: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं

रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुत्तमोख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। मैं बाबा जी गिरीश शर्मा हिंदू महासभा की ओर से आप सभी श्रोताओं का आज फ्राइडे 31 जुलाई 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्रोताओं, कल गुरुवार 30 जुलाई से देवादिदेव भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास का शुभारंभ हुआ, जो गुरुवार 27 अगस्त तक रहेगा। आपको स्मरण होगा ही, गत सप्ताह हमने बताया था कि देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का आरंभ हुआ है, जो 4 महीनों तक चलता है। श्रावण मास इन्हीं 4 महीनों का प्रथम मास है। पुनः स्मरण करा दूं कि यह काल भगवान श्री हरि विष्णु का योग निद्रा काल माना जाता है। भगवान विष्णु के शयन काल में विवाह, गृह प्रवेश आदि मंगल कार्य नहीं किए जाते। पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु इन 4 महीनों तक पाताल लोक में महाराज बलि के दिए हुए अपने वचन का पालन करते हैं। श्री वामन अवतार में भगवान विष्णु ने दीन वीर राजा बलि से 3 पक भूमि का दान मांगा। वचन मिलते ही भगवान ने विराट रूप धारण कर 1 पग में पृथ्वी, आकाश तथा दिशाओं को नाप लिया और 2 पग में स्वर्गलोक को। 3 पग के लिए स्थान ना होने पर राजा बलि ने अपने शीश भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा बलि के इस अद्भुत दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने प्रार्थना की कि प्रभु सदैव उनके यहाँ निवास करें। उसी समय माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया तथा भगवान को वचन से मुक्त करने का निवेदन किया। राजा बलि ने श्री हरि विष्णु भगवान को वचन मुक्त तो कर दिया, किंतु यह निवेदन किया कि प्रत्येक वर्ष 4 मास भगवान विष्णु उनके लोक यानी सुतल लोक में निवास करें। तथा भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका यह वचन जो है स्वीकार किया और श्री हरि विष्णु अपने दिए हुए उस वचन का पालन करते हैं। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु तथा भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान शिव क्रमशः 4-4 मास तक योग निद्रा अथवा विशेष निवास की लीला करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के पश्चात भगवान शिव महाशिवरात्रि तक, उसके बाद ब्रह्मा जी देवशयनी एकादशी तक अपने अपने काल में पाताल लोक में जाकर के निवास करते हैं। अपने सामर्थ्य

अनुसार अनेक भक्त जन चातुर्मास व्रत का पालन भी करते हैं। इस व्रत के अंतर्गत श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल्स का त्याग किया जाता है, यानी श्रावण मास में लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाया जाता। भाद्रपद मास में दही का, आश्विन मास में दूध तथा कार्तिक मास में अन्न यानी विशेष रूप से चावल एवं दाल आदि का त्याग किया जाता है। चतुर्मास में हरे, लाल, पीले तथा सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। इस अवधि में यथाशक्ति दान, जप, तप, स्वाध्याय, शास्त्र पाठ, सत्संग तथा सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। स्वस्थ शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की शुद्धि के लिए ही शास्त्रों ने चातुर्मास व्रत का विधान किया है। कुछ लोग यह मानते हैं कि चतुर्मास केवल सन्यासियों के लिए है, किंतु शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रमों के लोग तथा सभी वर्णों एवं संप्रदायों के व्यक्ति अपने पात्रता अनुसार इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यह व्रत प्रत्येक साधक के लिए कल्याणकारी है। जिन भक्तों को अभी तक श्री नारायण मंत्र जाप अथवा अन्य किसी आध्यात्मिक साधना का संकल्प लेने का अवसर नहीं मिला, तो आप आज से भी अपना संकल्प लेकर के अपनी साधना आरंभ कर सकते हैं। इसी प्रकार कल से अनेक भक्तों ने श्री रामचरितमानस मास परायण प्रारंभ किया। यदि किसी कारणवश आप कल से आरंभ नहीं कर सके, तो आज से भी आप अपना रामचरितमानस मास परायण पाठ आरंभ कर सकते हैं। शास्त्रों में श्रावण मास की महिमा का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। यह मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया नियम, व्रत, उपवास, पूजन एवं जप भगवान शिव की विशेष कृपा तथा भक्ति प्रदान करता है। श्रावण महात्म्यम नामक ग्रंथ में स्वयं भगवान शिव कहते हैं।

स्मृतः श्रावण नक्षत्र पौर्णमास्याम तथो अपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेन सिद्धतः श्रावणोप्यतः। अर्थात भगवान शिव कहते हैं बारहों महीनों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसका नाम श्रावण है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है, इसलिए भी इसे श्रावण मास कहा जाता है। इसके महात्म्य का केवल श्रवण करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शास्त्रों में भगवान शिव का स्पष्ट आदेश है कि श्रावण मास बिना किसी नियम के नहीं बिताना चाहिए। स्कंद पुराण में श्रावण मास के लिए अनेक नियम बताए गए हैं। उनमें से अपने सामर्थ्य एवं सुविधा के अनुसार एक दो अथवा अधिक नियमों का पालन करके भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। कुछ एक दो नियम हम आपके सामने रख रहे हैं। स्कंद पुराण कहते हैं कि श्रावण मास में सबसे पहले प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें तथा उसमें सहभागी बने। दूसरा बताया गया है अपनी किसी एक प्रिय खाद्य वस्तु का त्याग करें। तीसरा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करें। चौथा बताया गया है प्रतिदिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। फिर कहा गया है कि पूरे मास ब्रह्मचर्य का पालन करें। चौथा यह भी बताया गया है कि भूमि पर शयन करें, पत्तल पर भोजन करें। आठवीं यह भी बताया गया है कि हरी पत्तेदार सब्जियों का त्याग करें, प्रतिदिन शिव मंदिर के दर्शन करें। फिर बताया गया कि प्रतिदिन शिव महिम्न स्त्रोत्र का पाठ करें या श्रवण करें, प्रतिदिन बिल्व पत्र मदार पुष्प से

0: भगवान शिव का पूजन करें, प्रतिदिन शिव जी के निमित्त दीपदान करें। यह भी बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, और एक नियम यह भी कहता है कि पूरे मास में 100 बार रुद्र सूक्त का पाठ कराएं। 15 यह भी बताया गया कि नक्त व्रत का पालन करें, अर्थात केवल रात्रि में एक समय भोजन करें। स्कंद पुराण में गृहस्थियों के लिए यह नक्त व्रत बताया गया है और विशेष फलदायी गृहस्थियों के लिए कहा गया है। श्री महापुराण का मास परायण पाठ करें, श्री रामचरित मानस का मास परायण पाठ करें। इन नियमों से कम एक नियम का पालन तो प्रत्येक भक्त को अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव की विशेष उपासना वर्ष में मुख्यतः 2 अवसरों पर होती है, पहली महाशिवरात्रि और दूसरी श्रावण मास। महाशिवरात्रि में आदि योगी योगेश्वर भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है, जबकि श्रावण मास में गौरी शंकर की संयुक्त पूजा का विशेष फल बताया गया है। गौरी शंकर की उपासना से दाम्पत्य जीवन में मधुरता, परिवार में प्रेम, एकता तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। भगवान शिव का परिवार हमें यह शिक्षा देता है कि भिन्न भिन्न स्वभाव एवं भिन्न भिन्न वाहन होने पर भी प्रेम, सम्मान और सहयोग से परिवार को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। इसलिए श्रावण मास की पूजा यथासंभव पूरे परिवार के साथ मिलकर करनी चाहिए। श्रोताओं, श्रावण मास केवल उपवास या अभिषेक का महीना नहीं, बल्कि यह अपने जीवन को अनुशासित, सात्विक एवं ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए एक दिव्य अवसर है। यदि हम इस माह में अपने किसी एक दुर्गुण का त्याग करके किसी एक सद्गुण को अपनाएं, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करें और परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, तो यही श्रावण मास की सबसे बड़ी साधना होगी। तो चलिए, इस पावन श्रावण मास में हम यह संकल्प लें कि भगवान शिव की आराधना के साथ साथ सत्य, संयम, सेवा, सदाचार और करुणा को भी अपने जीवन में स्थान देंगे। यही भगवान शंकर की सच्ची पूजा होगी और यही उनकी कृपा प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इस प्रार्थना के साथ आज के इस कार्यक्रम को मैं विराम दूं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। श्री श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः सुखाभिलाषा परिवार मोह नवं वयं कांतिमिदं वपुश्च

श्रावण मास के उपलक्ष्य पर प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप समस्त श्रोताओं का विशेष स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रावण मास के अंतर्गत वेदों का विशेष रूप से स्वाध्याय किया जाता है। वेद शब्द को हम चार धातुओं से सिद्ध कर सकते हैं, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद्रिलाभे एवं विद सत्तायाम, जिससे सभी मनुष्य सत्य विद्या प्राप्त करके उस विद्या पर विचार कर आत्मा, जीवात्मा एवं

प्रकृति का सही रूप ग्रहण करके लाभ उठाते हो वह वेद हैं। सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने मानव मात्र के कल्याण के लिए चार ऋषियों के हृदय में वेद का ज्ञान प्रकाशित किया। यस्मिन श्वास ऋष भास उक्षणो वशा मेष अव सृष्ठास आहुता किलालपे सोम पृष्ठाय वेधसे हृदा मतिम जनये चारुमग्नये। जिस प्रकार परमेश्वर मनुष्य कल्याणार्थ ग्राम्य पशु आदि प्रदान किए हैं, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान के लिए आदि सृष्टि से ही चार ऋषियों द्वारा वेद ज्ञान भी मनुष्य को दिया। अग्नि ऋषि के द्वारा ऋग्वेद, वायु ऋषि द्वारा यजुर्वेद, आदित्य ऋषि के द्वारा सामवेद एवं अंगिरा ऋषि द्वारा अथर्ववेद का ज्ञान प्रकट किया। संहिता के रूप में वेद चार हैं, क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। वेद स्वाध्याय व वेद रक्षा निमित्त यज्ञ व वेद पाठ के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने वर्षा ऋतु श्रावण मास को सर्वश्रेष्ठ माना है। इस समय सभी वर्ण अपने कृत्यों से अवकाश पाते हैं और वेद स्वाध्याय के लिए व्रती बनते हैं। वेद आदेश देता है, ब्राह्मणासु अति रात्रे न सोमे रसो न पूर्णमभीतो वदमतः संवत्सरस्य तदह परि ष्ठमन मुडुकाहा प्रावृषिणम बभूव। प्रस्तुत ऋग्वेद के मंत्र में परमात्मा मनुष्य मात्र को उपदेश दे रहा है कि वर्षा काल में वैदिक उत्सव मनाए। वर्षा ऋतु में प्रकृति के विचित्र दृश्य देखकर वैदिक सूक्तों से ईश्वर उपासना व सोम आदि यागों द्वारा ब्रह्म उत्सव मनाए। वर्षा ऋतु में वेद पाठ करना एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है जो एक पर्व की तरह मनाया जाता है। यही श्रावणी पर्व है। श्रवण शब्द से श्रावणी बना है जिसका अर्थ होता है सुनना, अर्थात वेदों को सुनना। यदेषा मन्यो अन्यस्यः वाचम् शाक्तस्येव वदति शिक्षमाणः सर्वं तदेषां समृद्धेव पर्वयत् सुवाचो वदतः नाध्यप्सु। ज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन श्रवण ही है। इस मंत्र में परमात्मा उपदेश दे रहा है कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मंडूक अर्थात जल जंतु एक दूसरे को सुनकर उद्योगी व हर्षित होकर एक भाषा एक स्वर में शब्द करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य मात्र को एक समय में मात्र स्वर भेद, आकार भेद और वर्ण भेद रखते हुए, जाति व वर्ण भेद को न रखते हुए सभी लोग मिलकर वेद पाठ करें और वेद ज्ञान दूसरों को प्रदान करें। यही श्रावणी पर्व है। यास्क आचार्य जी ने मंडूक शब्द के अनेक अर्थ प्रस्तुत किए हैं, जैसे मग्न रहना, प्रसन्न रहना, तृप्त रहना इत्यादि। वेद पाठ करने वाले व्रती ब्रह्मचारी वेद पाठ करते समय मग्न, प्रसन्न व तृप्त हो जाते हैं। इसी कारण वेद में उन्हें मंडूक कहा गया है। संवत्सरम शशायाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्र मंडुका अवादिशु। मंत्र का यही भाव है कि जिस प्रकार मंडूक एक वर्ष बाद वर्षा ऋतु में अपना मौन व्रत छोड़ देते हैं, मानो उसी प्रकार वर्षा में वेद पाठ का व्रत करने वाले ब्राह्मण वेद पाठ का व्रत करते हैं और उस समय तृप्तिजनक मंत्रों का पाठ करते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी आया है, मासि प्रोष्ठपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम अयमध्याय समयः सामजाना मुपस्थितः। वेद स्वाध्याय करने की इच्छा करने वाले सामवेदी ब्राह्मणों के अध्ययन का समय यह

वर्षा ऋतु शुरू हो गया है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी लिखते हैं, रजः प्रशन्ताम् सहिमोद्यः वायुः निदाद्घ दोष प्रशस्सः प्रशन्ताः स्थिता हि यत्रा वसुधा धीपानाम् प्रवासी नोयन्ति नराः स्वदेशान्। बारिश के कारण धूल का उड़ना शांत हो गया, अब शीतल वायु बहने लगी जो गर्मी को शांत कर दिया है। राजा लोग अपने विजय यात्राएं भी रोक दिए हैं। प्रवासी लोग अपने अपने गांव व देशों को वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार सब कार्य में रुकावट आ जाने से सभी के पास समय रहता है और उस समय व्रती बनकर चारों वर्ण वेदों का स्वाध्याय व पाठ करते हैं। अतः यह श्रावणी पर्व एक वैदिक पर्व है जो हमें सामाजिक एकता एवं आध्यात्म उन्नति का संदेश देता है। वेद सबके लिए हैं। परमात्मा ने वेद का ज्ञान सबके कल्याण के लिए दिया है। सभी लोग वेद का अध्ययन करें एवं सामाजिक उन्नति के साथ साथ स्वाध्याय के माध्यम से आत्मोन्नति करें, यही श्रावणी पर्व का संदेश है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।

0: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले क्लोजर गोद और कागो लालियान के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर इन गलियों में एवेन्यू रेमी उलिये और इंदिरा गांधी रोड, क्लोजर लेन में कुसमस लेन और गोपी लेन के कुछ हिस्सों में के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है जोन इंडस्ट्रियल फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को 12 बजे से लेकर सुपहर के 3 बजे तक। और अंत में है मैम के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर प्लान डू एमिताज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: La boutique qui jamais pour songer, mon tea time avec Formland.
4: Ah ben oui, madame Sheila, ou toujours bien smart.
3: Et comme au sorti travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland.
4: Mmh, où fais-moi faire?
3: Assez avec Formland Hot Chocolate, la vie encore plus tamame. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Assez avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Formland, ça même nous, Smart Choice.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार, शुक्रवार 31 जुलाई 2026 के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में आज मॉरिशस के लिए अहम दिन। मुक्केबाज मर्विन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंडो होली सुटोमी से भिड़ेंगे, जीत उन्हें फाइनल में पहुंचाएगी। वहीं नोएमी अल्फोंस आज विल्चेयर 1500 मीटर फाइनल में उतरेंगी। फ्लाक में एमएसएम के जुटाव के दौरान एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी की योग्यता पर उठाए गए सवालों का उन्होंने जवाब देते हुए खुद को पूरी तरह योग्य बताया और कानून का हवाला दिया। दूसरी ओर ऊर्जा मंत्री पैट्रिक आसियावादेन ने पोर्टलुई में मॉरिशस और चीन के बीच ऊर्जा भंडारण प्रणाली समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और एमएसएम की आलोचनाओं का करारा जवाब दिया, पुरानी सरकार पर सवाल उठाए और पत्रकारों के प्रति पार्टी समर्थकों के दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। बजट 2026-2027 के कदमों को पारित करने के लिए फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल आज दोपहर 3 बजे एजेंडे में हैं। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए एक ही बैठक में इनके सभी चरणों की समीक्षा की अनुमति दी है और कार्यसूची समाप्त होने तक सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। मालागासी व्यवसायी मामी रावातुमांग की जमानत अर्जी पर 17 और 18 अगस्त को सुनवाई तय हुई है, क्योंकि एफसीसी ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है। साथ ही बचाव पक्ष डीपीपी और एफसीसी के बीच समझौते के बाद प्रिवी काउंसिल में रिमांड बढ़ाने को दी गई चुनौती को वापस ले लिया जाएगा। और विदेश में हमास का कहना है कि ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस योजना की घोषणा के बाद वो गाजा में हथियार छोड़ने के लिए सहमत हो गया है। पेशाब समाचार विस्तार से बुलेटिन की शुरुआत खेल की एक खबर के साथ। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के खेल जगत के लिए आज एक बेहद अहम दिन है। सबसे पहले मुक्केबाज मर्विन क्लेयर वो 70 किलोग्राम से कम वर्ग के फाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबला करेंगे। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंडो होली सुटोमी को हराना होगा। सबकी राय में ये एक ऐसा पड़ाव है जिसे पार करना कठिन होगा, लेकिन मॉरिशस के इस मुक्केबाज जो पहले ही एक पदक अपने नाम कर चुके हैं अपने मुकाबले में मजबूत दाव पेंच और पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। दिलचस्प बात यह है कि मर्विन क्लेयर के कोच कोई और नहीं बल्कि रिशो सुनी है, जो 1998 में क्वालालंपुर में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले मॉरिशस के पहले खिलाड़ी बने थे। ये एक ऐसा पल है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक और मॉरिशस के खिलाड़ी जिन पर सबकी नजर रहेगी वे हैं नोएमी अल्फोंस। विल्चेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस आज होगी। एक कनाडाई एथलीट की वजह से हुए रेस के एक हादसे के बाद मॉरिशस और ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस हादसे में नोएमी अल्फोंस सहित दोनों देशों की प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी गिर गई थी। फ्लक के जुटाव में प्रवीण जगनाथ के हमलों का निशाना बने और कुछ मीडिया द्वारा फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर चैट करने का आरोप झेलने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ राकेश भकोरी ने कल मोर्चा संभाल लिया। कथित स्क्रीनशॉट के प्रकाशन से आहत जिसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया एक एडिटिंग करार दिया है। राकेश बकोरी ने इस बात पर विशेष रूप से नाराजगी जताई कि प्रवीण जगनाथ जैसे

0: पूर्व प्रधानमंत्री इस स्तर के मानहानि अभियान में कैसे शामिल हो सकती हैं? उन्होंने अदगियां वाले से बात की, उनको सुनते हैं।
1: Après qui Pravin Jagnet in prend mon nom dans meeting flak mercredi, mon démenti catégoriquement tout ce ban mensonge et ban screenshot fabriqué à travers AI. Moi-même mon démontré avec force et l'exemple devant toute la population comment capable servir ChatGPT et change ban numéro ou un screenshot. Il est très facile pour faire sa bonne qualité fabrication là, mais pour moi, il est très très dommage qu'il y ait un ancien premier ministre comme Pravin Jagnat, il rentre dans un piège pareil, qu'il y ait un coup raté par ce bonne stratège. Moi, le montrer à toute la population et tout ce qui Pravin Jagnat dire, c'est une façon pour divertir l'attention de toute une population dans ce cas.
0: फ्लक में एमएसएम के जुटाव के दौरान फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के महानिदेशक संजय दाऊदारी के प्रति की गई निंदाओं का उन्होंने जवाब दिया। कुछ वक्ताओं ने कहा था कि इस पद के लिए उनके पास योग्यता नहीं है, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि मापदंडों के आधार पर वे योग्य हैं और वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष में उनका अनुभव 20 सालों से ज्यादा का है। संजय दाऊदारी ने याद दिलाया कि कानून की धारा 10(2) के तहत ये बात स्पष्ट है कि कम से कम 5 सालों तक एक एंटी करप्शन संस्था में उच्च पद संभाले बिना और वित्तीय अपराधों के खिलाफ संघर्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बगैर कोई महानिदेशक के लिए योग्य नहीं बन सकता है।
2: एफसीसी एक्ट की धारा 10 के सब सेक्शन 2(e) में कहा गया है कि महानिदेशक को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने एक भ्रष्टाचार विरोधी संस्था में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में काम किया है और वो भी कम से कम 5 वर्षों के लिए और जिसके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइनेंशियल क्राइम्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। मेरे पास 20 से ज्यादा वर्षों का अनुभव है।
0: एफसीसी की जांच के कुछ तरीकों के संदर्भ में कुछ निंदाएं की गई हैं। इस मुद्दे पर पुलिस प्रेस ऑफिस की प्रतिक्रिया ली गई। दफ्तर ने पुष्टि की कि कुछ राजनीतिक बयानों का जवाब नहीं दिया जा सकता और राजनीति में ऐसे वक्तव्य सामान्य हैं। युद्ध अच्छा है। फ्लक में बुधवार को आयोजित एमएसएम की सभा पर बोलते हुए मंत्री पत्रिका सेवादेन ने ये बात कही। पोटली में कल गुरुवार को दोपहर बाद बैटरी से ऊर्जा को स्टोर करने की प्रणाली के दान के सिलसिले में मॉरिशस और चीन के बीच तय समझौते के बाद ऊर्जा मंत्री एमएसएम की आलोचनाओं का जवाब दे रहे थे। प्रवीण जगनाथ के पहले जुटाव पर बोलते हुए पत्रिका सेवादेन ने कहा कि पुरानी सरकार के संचालन को लेकर अभी तक कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है। पत्रिका सेवादेन ने बीते सोमवार को एफसीसी के कार्यालय के सामने कुछ पत्रकारों के प्रति एमएसएम के समर्थकों के व्यवहार का कड़ा खंडन किया है। उनको सुनते हैं।
3: कोने चिमेट 11 15 कंटामिनाम गुलाम autant l'indomie pendant 10 ans l'indomie bien une revue premier ministre ceci dit bmsm me comprend bien qu'il vous a fait un petit peu man chose comme ça quand pour être capable un petit peu vivant hein pour y exister mais c'est de bonne guerre encore une fois moi mon point dit avec un sourire moi c'est normal OK les bien c'est normal les bien organise les fait tout pour qu'il les résivants et y aspirer demain pour faire ça qu'il y en a pour faire. Nous, nous, la responsabilité, c'est notre travail, délivrer ça qu'il y en a pour le travail. Mais seulement, en même temps, il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas oublier ça qu'il y en a fait. Moi, je dis ça dans certaines places. Qui est un monde pour manifester devant FCC. C'est un mince. Moi, je dis ça au Premier ministre. C'est une façon de faire pression au FCC. Parce qu'il y a des questions qui viennent, des hauts du monde peuvent crier, peuvent dialoguer. C'est une manière de... Est-ce qu'il est comme ça, nous, pour diriger? Est-ce qu'il est comme ça, pays-là, pour aller? Mais un journaliste, du monde-là, il est correct, mais pas possible.
0: बजट 2026-2027 एक निर्णायक चरण में प्रवेश कर रहा है। आज 3 बजे फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल आज के एजेंडे में है। बजट में घोषित कदमों को कानूनी ढांचा देने के लिए ये विधेयक जरूरी है। याद रहे कि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने इन टेक्स्ट के विभिन्न चरणों की एक ही बैठक में समीक्षा की अनुमति देने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला दिया था। एक प्रस्ताव ये भी प्रावधान करता है कि कार्यसूची के समाप्त होने तक कार्यवाही जारी रह सकती है। शैलिन्यबन, गीता सुनारन।
2: एक ही बैठक, 2 विधेयक और बजट कदमों को लागू होने से पहले का एक अहम चरण। फाइनेंस बिल का उद्देश्य बजट में घोषित कर उपायों को कानून का रूप देना है, जबकि इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स

मिसेलेनियस प्रोविजंस बिल के तहत कई मौजूदा कानूनों में संशोधन किए जाएंगे ताकि अन्य आर्थिक और सामाजिक कदमों को लागू किया जा सके। इन कदमों में नई आयकर दरें, कुछ बीमा प्रीमियम पर कर तथा आप्रवासन और वर्क परमिट से जुड़े सुधार शामिल हैं। हालांकि बजट पेश किए जाने के बाद कुछ प्रावधानों में बदलाव किया गया है। इनमें मैटरनिटी और पैटरनिटी लीव की अवधि बढ़ाने से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

0: बनाई जा सके। यदि संसद सदस्य इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हैं तो इसके बाद इन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी, फिर इन्हें गवर्नमेंट गजट में प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद ये कानून लागू हो जाएंगे।
1: मॉरिशस और ग्रेट ब्रिटेन अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। कल दोनों पक्षों ने एनहेंस स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का मकसद मॉरिशस की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का समर्थन करना है, खासतौर पर डिजिटल परिवर्तन, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के संदर्भ में। क्लोदेड्रियो फाकादेवादू, करुणा लालू।
2: इस समझौता मॉरिशस और यूके के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक अधिक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा। इसके तहत दोनों सरकारों के बीच ही नहीं बल्कि निजी सेक्टर और अन्य पक्षों के साथ भी नियमित बातचीत का प्रावधान होगा। चार प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, ब्लू और ग्रीन इकोनॉमी, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय सेवाएँ। सरकार के हालिया बजट में ये प्राथमिकताएँ शामिल हैं। मंत्री धनंजय रामफल ने कहा, हस्ताक्षर किए गए समझौते में दोनों देशों के बीच एक बिजनेस फोरम कायम किया जाएगा जहां बरतानी निवेशक और निजी मॉरिशन निवेशक भाग लेंगे और उन प्रोजेक्टों पर विचार करेंगे जो आपसी देशों के लिए फायदेमंद होंगे। यूके मॉरिशस का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बना रहता है। 2025 में यूके की ओर 130 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग से अधिक का माल निर्यात किया गया। वहीं दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार लगभग 1.8 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जबकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 380 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग दर्ज किया गया। ये मजबूत आर्थिक आधार इस नए MOU के साथ और मजबूत होगा। मॉरिशस में बरतानी उच्चायुक्त पॉल ब्रमल ने कहा, हम एक साझा इतिहास से साझा समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। यूके और मॉरिशस घनिष्ठ साझेदार हैं। पिछले वर्ष हमारी द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग का रहा, जो लगभग 15% की वृद्धि है। ये संबंध लगातार मजबूत हो रहा है। एक सुदृढ़ रणनीतिक व्यापार साझेदारी स्थापित करके हमारा मकसद ऐसा तंत्र विकसित करना है जिसके माध्यम से हमारे दोनों देशों के व्यवसाय और सरकारें मिलकर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इससे व्यापार से जुड़े मुद्दों का सक्रिय रूप से समाधान किया जा सकेगा। हमारे संबंध और मजबूत होंगे तथा मॉरिशस के विजन 2050 के लक्ष्यों को हासिल करने में सहयोग मिलेगा। इस साझेदारी को ठोस निवेश में बदलने के मकसद से मॉरिशस यूके बिजनेस फोरम की स्थापना की जाएगी ताकि दोनों देशों के हित में सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।
1: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन STC और उसके ईंधन आपूर्तिकर्ता OQ ट्रेडिंग के बीच का अनुबंध इस शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इसे अस्थायी रूप से बढ़ाने का फैसला किया है। इस अनुबंध के कारण मॉरिशस ने एक साल में लगभग 1 बिलियन रुपए की बचत की है। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार अनुबंध की यह अवधि बढ़ाने का उद्देश्य देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था भारत के साथ होने वाले आगामी समझौते पर हस्ताक्षर होने तक लागू रहेगी। इस समझौते से मॉरिशस का पेट्रोलियम आयात बिल और कम होगा, जिसका लाभ देश की जनता को होगा।
2: स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और ओमान की कंपनी OQ ट्रेडिंग के बीच गत वर्ष मॉरिशस को पेट्रोलियम उत्पाद की आपूर्ति के लिए तय किया गया कॉन्ट्रैक्ट 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 1 अगस्त 2025 से एक वर्ष के लिए तय इस समझौते को असाधारण रूप से 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया। यह अतिरिक्त समय मॉरिशस और भारत के बीच प्रस्तावित नए पेट्रोलियम समझौते को अंतिम रूप देने के लिए दिया गया है।
3: qui nous finit tendre ce contrat-là. Et un an de cela, va-t-il dans la guerre. Et ils ont dit tout prix qu'ils peuvent gagner, ben prix la guerre. C'est-à-dire war price. Ça veut dire pendant deux mois encore, nous pour soulager. Il est bon aussi qu'ils vont dire, le premium price qu'ils nous finissent signer avec OQ Trading, quand nous comparons avec l'ancien contrat, c'est-à-dire de l'ancien gouvernement, il coûte nous 1 milliard de roupies en moins selon un an.
2: इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सरकार से सरकार

0: कार समझौते पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित समझौते के प्रमुख लाभों में से एक मॉरिशस के लिए भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकूल भुगतान व्यवस्था है।
1: Entre-temps, nous finalisons le contrat avec le gouvernement indien. Un point très positif qui est capable déjà de dire où nous pouvons payer en roupies, c'est-à-dire un produit pétrolier qui nous passe avec Indian Oil à travers le gouvernement indien, donc nous pouvons payer en roupies. Donc ça c'est déjà un gros avantage.
0: भारत के साथ नए समझौते के अंतिम रूप लेने तक अधिकारियों का कहना है कि ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए हर आवश्यक प्रयास जारी रहेगा।
1: En janvier, l'UPP va produire pétrolier sur tous les sens autour de 600 dollars métrique tonne. Là, il finit répond, il tourne autour de 1000 dollars métrique tonne. Au niveau de Maurice, le prix de l'essence finit augmenter une seule fois. La MOP Diaou, juste avant la guerre, il est 50% plus cher que janvier. Nous augmenter une seule fois à la hauteur de 10%. Nous pouvons faire tout pour Tinili, pour absorber le choc, parce que du moment où nous montons le prix de l'essence et diesel, il fait l'effet domino sur les produits alimentaires et aussi sur les produits non alimentaires.
0: अब सभी की निगाहें भारत के साथ होने वाले इस समझौते पर टिकी हैं। इसके क्रियान्वयन से जुड़े अंतिम विवरणों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य मॉरिशस के पेट्रोलियम आयात पर होने वाले खर्च को कम करना, साथ ही देश के ईंधन आपूर्ति को और अधिक सुरक्षित बनाना है।
2: अन्य खबरों में, चूंकि गणेशन एलन को सऊदी अरब में मौत की सजा का खतरा है, उनके वकील रमा वलायदेन कई प्रयास कर रहे हैं और अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। लातोकेनिक में एक डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस के इस निदेशक को पिछले 19 जून को उनके एक सूट केस में 3 किलो कोकीन मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट में वकील रमा वलायदेन का दावा है कि उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क द्वारा 2 साल से अधिक समय तक मैनिपुलेट किया गया था। उनका तर्क है कि $10.5 million की कथित विरासत के वादे के जरिए उन्हें फंसाया गया था। वकील के अनुसार ये धोखाधड़ी COVID-19 महामारी के दौरान शुरू हुई थी, जब उन्होंने वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए इंटरनेट पर एक विज्ञापन का जवाब दिया था। वकील रामा वलायदेन का मानना है कि कार्रवाई करना और मित्र देशों से मदद मांगना जरूरी है। उनको सुनते हैं, जिनसे बात की लुविना सूफी ने।
3: मॉरिशस के कई मित्र देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूरोपीय संघ, जिसका मृत्युदंड पर स्थिति बहुत ही सैद्धांतिक है और वो मृत्युदंड के खिलाफ हैं। अगर किसी व्यक्ति पर मृत्युदंड का खतरा मंडरा रहा है तो यूरोपीय संघ हस्तक्षेप करेगा। अगर मॉरिशस ने कुछ नहीं किया, विदेश मंत्रालय अपने संपर्कों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कठिन हो जाएगा। इसलिए मैंने एक रिपोर्ट लिखी है ताकि गणेशन एलन को न्याय दिलाया जा सके और सभी मॉरिशियनों, सभी लोगों को इस मामले को समझने का मौका मिले।
4: Dans le sens pour donner à tout Mauritien, Mauritienne, à tout du monde, faut qu'ils se comprennent qui était qui ça était.
2: मामी रवातोमांग की जमानत की अर्जी पर बहस 17 और 18 अगस्त को तय की गई है। मलागासी व्यवसायी मामी रवातोमांग कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बेल एंड रिमांड कोर्ट के समक्ष पेश हुए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने बचाव पक्ष द्वारा दायर की गई जमानत की नई अर्जी पर अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है, इसलिए अदालत 17 और 18 अगस्त को इस अर्जी के मेरिट पर विचार कर सकेगी। हालांकि FCC ने जमानत के विरोध को बरकरार रखा है। इसके अलावा बचाव पक्ष DPP और FCC के बीच हुए एक समझौते के बाद अपनी रिमांड हिरासत की अवधि बढ़ाने को चुनौती देने के लिए मामी रवातोमांग द्वारा प्रिवी काउंसिल में शुरू की गई प्रक्रिया को वापस ले लिया जाएगा। और विदेश में, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बोर्ड ऑफ पीस गाजा में हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निःशस्त्रीकरण समाप्ति के लिए एक समझौते पर पहुंच गया है। ट्रंप ने कहा कि निःशस्त्रीकरण पूरा होने पर इसराइल गाजा से पीछे हट जाएगा और इस समझौते को गाजा में अंततः एक नई फलिस्तीनी सरकार द्वारा शासन किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पूर्व से पाए जा रहे बादल आज सुबह स्थानीय मौसम को प्रभावित करेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह बादल घिरे रहेंगे और देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी। कभी कभार सामान्य से जोरदार बारिश हो सकती है। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद को धूप खिली रहेगी। अधिकतम

मानसून और प्लाटो पर 23 से 25, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्व और ऊंचाइयों पर रात के दौरान बारिश होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:40 पर और सूर्यास्त शाम 5:52 पर। तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादेर को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:50 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार। लीजिए शोक समाचार सुनिए। फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में 63 साल की श्रीमती रूपा मंगरू, जो गोबिंद मंगरू की बेटी थी, की मृत्यु हो गई है। वे पहले बालों सुरीनाम रहती थी। उनकी अर्थी कल शनिवार को 1 अगस्त को मौसम समयानुसार सपहर 3:30 फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 3:30। एवेन्यू लाफोर्ज रोते बासिन कैटरबोन में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तेवंती सितल, पैदायशी नाम नवरतन और जो तेवंती सितल नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे नीतीश सितल के घर एवेन्यू लाफोर्ज रोते बासिन कैटरबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। रारोड मोसेल मॉ सेंट ऑन्द्रे में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री चित बहल रामसोहक, जो हरिदत्त नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले एजुकेशन अफसर थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती माया देवी रामसोहक के घर रारोड मोसेल मॉ सेंट ऑन्द्रे से उठाकर त्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 10 AM। मुसलमान वीओएस लालमाटी में 59 साल की 59 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती पूर्णिमा बुलक, पैदायशी नाम नक्चेदी और जो माया नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 9:30 उनके पति श्री बुजीदेव बुलक के घर मुसलमान वीओएस लालमाटी से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 9:30। राजा रोड लेस्पेरांस त्रेबुशे में 84 साल के 84 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मानंद ओगाटू, जो धर्म नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थे आज दिन के 11 बजे उनके बेटे संजय ओगाटू के घर राजा रोड लेस्पेरांस त्रेबुशे से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। लापी जेरो बैक्स स्ट्रीट पिटों में 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड के श्री व्यास दत्त रामदोस, जो सुरेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती रमावती रामदोस के घर लापेश गौबाक्स स्ट्रीट पीतों से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। महात्मा गांधी गली फूंचिसाक में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विश्वानी रामखलावन, पैदायशी नाम तिमल और जो विश्वानी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे अमित रामखलावन के घर महात्मा गांधी गली फोंजीसाक से उठाकर फोंजीसाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। माधुलेन पृथ्वीवर्जी सैंपिया में 70 साल के 70 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्ण कुमार बंसरूपन, जो क्रेश नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर माधुलेन पृथ्वीवर्जी सैंपिया से उठाकर से कॉन्स्टेंस सैंपिया की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। मेजुनेट रोड रिविया डिज ऑगी में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री ठाकुर देव कोराया, जो गौसों साधु नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर मेजुनेट रोड रिविया डिज ऑगी से उठाकर कौंस्याबल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। गांधी रोड एनिस फ्लोहा में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज रघुनोथ, जो गौसों नाम से

0: ये जाने चाहते थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला रघुनाथ के घर गांधी रोड एनिस फ्लोरेंस से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट नून। कुसमाली रोड तेरूज में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री लेकराम किस्तो जो राम किस्तो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थे आज दोपहर 3:30 बजे उनके घर कुसमाली रोड तेरूज से उठाकर ते मिनिस्ट्रियोले की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3:30। मोसेलमा बासें कटरबोन में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री आनंद कुमार सिरतन जो आनंद कुमार नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके घर मोसेलमा बासें कटरबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कारो आकाशिया थ्रा बुचिक लिस्कालिये में 86 साल की 86 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिंदामती खीरू पैदाशी नाम जीवन और जो मैडम बिंदु नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर कारो आकाशिया थ्रा बुचिक लिस्काली से उठाकर मारिजानी रोज बेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 PM। मुस्के रोल सेबास्तोपोल में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री अनिल चकवा की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर मुस्के रोल सेबास्तोपोल से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: श्रावण मास के संदर्भ में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा निम्न शाखाओं में यज्ञ और प्रवचन आयोजित कर रही है। कुतेज वेदानंद भवन, चित्रकूट आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा वाली दे प्रेत्र, गांधी भवन गोष्टिया, कैथ कोको आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, बोशेरी आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, तोमासें क्रैवक्य आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, महर्षि दयानंद सरस्वती मंदिर थ्रोबिश, नूतन जागरण सभा घों बाफों लालमाची, सुल्फेरिनो सूर्य भवन वाक्वा, पुत्रदो आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, पंडित रामप्रसाद जीवुत भवन विच्या मिल त्रियोले, इंटरनेशनल कॉलेज बॉयज में 3 दिन महायज्ञ का आयोजन किया गया है। साथ में मौदालबे आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा महिला समाज, बुआमोंग आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, विवेकानंद सभा तोंबोंबे, रिपाय वैदिक मंदिर, वेद माता मंदिर पेटिपाके मोताय ब्लांश, प्रशांत वैदिक मंदिर लेस्पेरांस काचे मिलितेय, स्वामी दयानंद सरस्वती मंदिर बौलो, गांधी भवन गोष्टेय, आर्य रविवेद फेडरेशन नंबर 7 रिविया जुरां पॉल, लावंचुअ वैदिक मंदिर, क्रैवक्य आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा, सरस्वती महिला समाज प्लेंदी पपाय अपवेल, सूर्योदय भवन सनराइज होल कोस्टल रोड बेलमॉ और पूर्णाहुति बहुकुंडीय यज्ञ नेशनल लेवल पर किया जाएगा। शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा श्रावण मास के उपलक्ष्य में वाशेरी आर्य रविवेद सभा में शाम 5 बजे जबकि तुमासें आर्य रविवेद सभा क्रैवक्य में शाम 6:15 बजे यज्ञ और प्रवचन आयोजित किए गए हैं। श्रावण मास के ही संदर्भ में बोनाकय गयानाथ मंदिर द्वारा गुरुवार 30 जुलाई से लेकर शुक्रवार 28 अगस्त 2026 तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रार्थना सभाएं लगाई जाएंगी। पिचित खुतखत के महेश्वरनाथ शिवाला द्वारा आयोजित शिवलिंग प्राण स्थानांतरण समारोह जो रविवार 26 जुलाई 2026 से शुरू हुआ अगले गुरुवार 2 अगस्त तक लगेगा।

0: 119 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्कॉटलैंड में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में आज का प्रोग्राम मॉरिशस के लिए काफी भारी भरकम है। नोएमी अल्फोंस 1500 मीटर T54 के फाइनल में होगी, ये होगा 1:20 पर। फिर 3 बजे 400 मीटर T54 में सेमीफाइनल में नोएमी अल्फोंस और भांदी पेरिन। रात्रि के 11 बजे हाई जंप T37 में अनाइस एंजेलिन। जूडो में विंस्ले गंगाया तातामी में आएगा 2 बजे बेस्ट ऑफ 16 राउंड में। फिर 2:20 पर मारी सारा सिल्वा रियू की बारी। 2:50 पर लुई राशेल फ्लोरा। 3:10 पर लाना टोमा आएगी और 4 बजे आएगी बेगे। बॉक्सिंग में मेवेक प्लेयर का सेमीफाइनल 7 बजे, ये होगा ओलांदा ओले सोटोमी के खिलाफ। एथलेटिक्स में 800 मीटर का फाइनल जिसमें होगी राशेल क्रोफेंस्टाइन। सो कल ट्रिपल जंप में अदेल क्यूपिडो क्वालिफिकेशन तक रह पाया, वो 14वें स्थान पर आया जो फाइनल में जाने के लिए काफी नहीं था। शॉर्टपुट के फाइनल में था डॉक्टर बेर्ना बाचिस्ट, वो 14वें स्थान ले पाया। ओपोजिशन काफी तगड़ा था इस कॉम्पिटिशन में। यूईएफए और फीफा के बीच अनबन। फीफा के प्रेसिडेंट यानी इन्फांटिनो को चेतावनी दी गई है कि अगर फीफा फुटबॉल कंपटीशन के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स से हाथ मिलाएगा तो यूरोप के 55 देश आने वाले वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेंगे, उसमें भाग नहीं लेंगे। एक इमरजेंसी मीटिंग आपातकालीन बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। कोकाकाफ जिसमें 41 मेंबर हैं वहां भी इन्फांटिनो को नो कहा गया। ऐसे में इन्फांटिनो पर दबाव है, वर्ल्ड कप को एक निवेश का पुतला नहीं बनाया जा सकता। वर्ल्ड कप कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, ऐसा यूईएफए वालों ने कहा। इन्फांटिनो का प्लान स्वीकार नहीं है। प्रीमियर लीग सीजन शुरू नहीं हुआ पर झाड़ू मार अभियान शुरू हो गया है। न्यूकासल यूनाइटेड से मैनेजर एडी हाउ जा रहा है, उसके स्थान पर आ रहा है मैथियास जेजल, वो अभी लेप्ज़िग का कोच रह चुका है, अभी सऊदी प्रो लीग अल अहली में है। यूईएफए यूरोपा लीग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के लिए कल मैच खेले गए, इनमें मकाबी तेल अवीव ने 1-0 से शेरिफ को हराया। गादेक खालोवे 3 ट्रोम्सो 1। मिडजिलोन की हार हुई, बेसिकतास ने एवेजा कर उसे 2-0 से हराया। पाफोस 4 राजुक स्प्लिट 0। PAOK 2 दिनामो केव 0। CSK सोफिया 0 काराबाग 0। पेनाल्टी पर सोफिया की टीम क्वालिफाई। अंडेलेक 3 हमाबी 1। फेरेनवारोस 2 22। फेरेनवारोस की टीम क्वालिफाई हुई और बेनफिका ने सेगालेन को 5-0 से हराया। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में भी कल मैच होगा, कल से शुरू होगा। डंडी यूनाइटेड का मुकाबला रेंजर्स से और क्लब फ्रेंडीज में कल यूवेंटुस निस बर्मिंगम बार्सिलोना। लीड्स ने संडरलैंड को 1-0 से हराया। सिडनी कप में कल चेल्सी का मुकाबला टोटनहम हॉटस्पर से होगा और कल ही मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलेगा एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। मैनचेस्टर सिटी इंटर मिलान। रियल मैड्रिड खेलेगा फ्लोरेंटिना के खिलाफ। और अंत में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बता दें, ऑस्ट्रेलिया अभी मेडल टेबल में आगे हैं। उसके पास हैं 51 गोल्ड मेडल, 51 गोल्ड मेडल, टोटल 110। इंग्लैंड के पास है 15 गोल्ड मेडल, कनाडा के पास भी 15 गोल्ड मेडल, स्कॉटलैंड के पास है 9, भारत के पास है भी 3 गोल्ड मेडल 10वें पोजिशन पे, टोटल 17। सो आज मॉरिशस के लिए पैरा एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, जूडो में मेडल जीतने के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। खेलेंगे जी जान से और हम लोग देखेंगे गर्व के साथ। आरे मोरिस नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, समय 7:05 हो चुके हैं। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। कहा जाता है अपनी आज में ही जिए, कल किसने देखा है, पर अपने आज को बेहतर बनाना आपके ही हाथों में है। आइए इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी जमन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहें, थोड़ा थोड़ा जल रिसते रहने से बड़े बड़े जलयान डूब जाते हैं।

सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ, इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास, दो घंटों का सुहाना सफर प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में, जहां सरस्वती रामायण एसोसिएशन, प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन, ओलंपिक वुमेन्स एसोसिएशन, विश्वनाथ मंदिर महिला समाज, सीनियर सिटीजन प्लान मायो वुमेन्स एसोसिएशन और प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर सीनियर सिटीजन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को और मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 31 जुलाई दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन आर

93 रेडियो मनोरंजन, साथ ही आप इसको टिकटॉक पर भी फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा नहीं, इस शुक्रवार 31 जुलाई को फ्रॉम नून टिल 2 PM प्लान मायो सोशल वेलफेयर कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ इन कोलैबोरेशन विद जेठा तुलसीदास।

0: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले काथबोन के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में अक्वागल लेन, पायोंके एवेन्यू, कार्डिनल टूटेलिस के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर दौर लेन और बाउंड्री रोड रॉबर्ट एडवर्ड हॉट के कुछ हिस्सों में के रहने वाले

0: वासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 31 अगस्त 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर है काथोबोन के ही रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि एवेन्यू एंटेल्म के कुछ हिस्सों में एवेन्यू उलिये, टोम्बोलेन, एवेन्यू पाक्वा और रेजिडेंस प्यालावाल के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर पावियन स्विमिंग पूल, एवेन्यू कोंट दे इल, एवेन्यू स्टेनली के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। और फिर है बावली के रहने वाले निवासियों को एवेन्यू शुमान, एवेन्यू बालाम्स, एवेन्यू रेमी ओलिये, एवेन्यू रोज दे बोआ के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक। और फिर है गोजिल के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर इन गलियों में एवेन्यू मैगा, एवेन्यू बेलियोज, एवेन्यू एनली रेन, एवेन्यू बीजे, साउथ म्यूनिसिपल मैगा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक। और फिर है क्यूपीप के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर इन गलियों में विजुअल लेन, इसोरवी लेन, अल्बास्ट्रो स्ट्रीट, कॉजिनाल स्ट्रीट, नाइटिंगेल स्ट्रीट और कोहलियस रोड और एनाश डिसे जासेंटे के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। और अंत में है सैपिया के रहने वाले निवासियों को खास तौर पर एनाश डिसे विग्नोल, सेकुंस्टांस और लाग्रेमों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भाई गम किस बात का जब हम जानते ही नहीं हैं कि आगे क्या होगा। इसीलिए जैसे मैंने कहा है सुबह सुबह कि अगर आपको बेहतर बनना है तो अपने आज में ही जिए और अपने आज को ही संवारिए, तभी तो ये ज़िंदगी और भी खूबसूरत होने लगेगी। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम में, कहते हैं ना कि इन पुराने गीतों में बहुत कुछ छुपा है, बहुत सीख भी है और इनके बोलों में भी बहुत कुछ कहा जाता है। आइए हेमंत कुमार जी की आवाज में एक और सुंदर सा गीत हम सुनते हैं।
1: जरा नजरों से कह दो जी

0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: झलकियां,
1: झलकियां,
2: रेडियो मॉरिशस।
1: चलिए नजर डालते हैं आज के रेडियो कार्यक्रमों पर। और अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी किरण जानकी जी। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार 9:05 पर आज की चर्चा कार्यक्रम वेदिता की ओर से। और 10 बजे समाचार फिर से आप सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम रोशनी द्वारा। दस बजकर 10 मिनट पर ज्ञान चक्र आप सुन पाएंगे हिंदू महासभा की ओर से। और 10:15 भक्ति धारा कार्यक्रम जारी रहेगा रोशनी ही द्वारा। और 11 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम सायदा की तरफ से। 12 बजे आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कृतिका द्वारा। 1 बजे आप तमिल कार्यक्रम सुन पाएंगे। और कार्यक्रम के बाद रंगारंग कार्यक्रम लेकर आएगी रत्ना गुजराती भाषा में 1:45 पर। दो बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे होंग होंग के साथ। और 2:30 आपकी पसंद लेकर आएगी रोशनी। और 3 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा 3:45 से लेकर 4:40 पर आप उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे अनवर की ओर से। 5 बजे गीत और गजल कार्यक्रम रत्ना द्वारा। और 6 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार कुछ प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। और आप कुछ ऐसे गीत सुन पाएंगे 6:20 पर। और 6:30

0: बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिनकी ओर से, और 7:00 रात के 7:00 तमिल भाषा में आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। साढ़े 7:00 आप तेलुगु भाषा में विश्वा जी द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे गीत और गंगा। गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में आप बापू जी की ओर से आप सुन पाएंगे 7:50 पर। और 8:00 रात के 8:10 पर भक्ति कार्यक्रम लेकर आएगी अलका जी भचले प्रभु का नाम महफिल शब परवेजा की तरफ से 8:40 पर। रात के 9:00 भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुरेखा की ओर से, और रात के 11:00 कुछ पुराने दौर के गीत आपको ले जाएगी गणेशा सुनहरे पल कार्यक्रम में। रात के 11:00 से लेकर सुबह के 6:00 तक चंद प्यारे फिल्मी गीत आप सभी के नाम।
1: झलकियां

बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और देवी जी हैं हाईलैंड से, साथ निभा रही हैं, और साथ में हैं सूरज शर्मा सजादा जी, और मौदालबेयर से अनिता जी हैं, और साथ दे रही हैं मुंजे ख्वायो से अनिता खिदनी जी हैं, शैला जी हैं गौनहव्या सुदेश से, और शोभा जी हैं वाकवा से, लीला जी हैं बुआशेगी से, और साथ में हैं माला सुमारू जी। सुबह सुबह इतनी अच्छे अच्छे मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी साथ निभा रही है साधना जी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और साथ में हैं अनिता प्रतुप जी। आशा है आप सभी को आज का जो प्लेलिस्ट है पसंद आ रही होंगे। चलिए अब हम भरेंगे 90s के दौर में, जहां पर रोमांटिक गीतों की उस समय चलन था। ऐसे गायक आए थे जिन्होंने ना केवल हमारा दिल जीता है और उनके गीतों के जरिए ही दिल तक पहुंचा है। आशिकी फिल्म से अनुराधा पौडवाल जी और कुमार सानू जी की आवाजों में

भाई किसी ने सच कहा है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो माता पिता के आशीर्वाद के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। आशा जानू जी हैं कोटेज से और सुन रही हैं हमें। मामा कुमारी, नेफ्यूज हैं शुभम, ऋषभ और दीदी आरती, साथ में हैं जीजू।

नसीना पोफे या फिनिक्स से और साथ में है उनका पूरा परिवार, श्री शंकर परिवार, और अपने जीजा के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेज रही है।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: कहते हैं हमारे इंडियन सिनेमा ने हमें हर प्रकार के गीत दिए हैं, चाहे जो भी अवसर हो, जो भी त्योहार हो, हर त्योहार के लिए भी एक ना एक गीत अवश्य बनाई गई है। साथ दे रही है अनिता जी फीका फ्लैग से, और साथ में है दिसीना जी अपने जीजू राकेश के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं भेज रही हैं। और जो भी आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, पूरे एमबीसी टीम की ओर से आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जैसे हम जानते हैं कि अभी श्रावण माह के पावन महीने में हम देवादिदेव महादेव को पूजते हैं, और सभी भक्तों के नाम आइए केदारनाथ फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी के नाम। और साथ में दे रही है कमला दीनू जी मदाल बिया से, चित्रा जी हैं, और साथ में है वीना रामफल जी, श्यामा रघुनंदन जी हैं, साथ में है नवीन लक्ष्मण जी और उनकी प्यारी पत्नी चित्रा जी, आइए इन सभी के नाम। और साथ में है विजय बंदन जी क्लाविट से, शोभा जी हैं वाकवास से, और त्रिविनी जी हैं गुडलैंड से, आइए इन सभी के नाम ये प्यारा सा गीत केदारनाथ फिल्म से।

चलिए ये प्यारा सा गीत रियांशा सरनाम जिनका जन्मदिन है, और मामा कुशमा, पापा कौशल और दादा प्रकाश कोमल और दादी शकुंतला जी और साधना अनीता मीता पुपू दीपक और साथ में है पुपा सचिन और सभी सरनाम परिवार की ओर से उनको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। और साथ में है इंदिरा लौटन जी, उनकी सभी परिवार के लिए, दीक्षा कृष्णा गोपी के लिए।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोतागण, इसी के साथ हम सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। कुछ ही घड़ी में आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तब तक की ओर से पूजा की ओर से आप सभी को शुभ दिन।

0: नमस्ते। अब जब भोजपुरी में समाचार सुने जाए, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल राष्ट्रमंडल खेल में आज मोशस खातिर अहम दिन है। मुक्केबाज मेवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम थी वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंदो होली सुतोमी से भिड़ी जीत ओकरा फाइनल में पहुंचाए। वहीं नोएमी अल्फोंस आज वेल्स के 1500 मीटर फाइनल में उतरी। फ्लाक में एमएसएम के जुटाव के दौरान एफसीसी के महानिदेशक संजय दाऊदारी की योग्यता पर ही उठावल गल सवाल के उ जवाब देते हुए खुद के पूरी तरह योग्य बतैलन और कानून के हवाला देलन। दूसर का और ऊर्जा मंत्री पत्रकार सेवा देन पोटली में मॉरिशस और चीन के बीच ऊर्जा भंडारण प्रणाली समझौते के बाद पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और एमएसएम के आलोचना के करारा जवाब देलन। पुराना सरकार पर ही सवाल उठैलन और पत्रकार के प्रति पार्टी समर्थक के दुर्व्यवहार के कड़ा निंदा करलन। बजट 2026-2027 के कदम के पारित करे खातिर फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल आज 3 बजे एजेंडा में रही। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री स्टैंडिंग ऑर्डर 65 के हवाला देते हुए एक ही बैठक में एंकर सभी चरण की समीक्षा की अनुमति दीयन और कार्यसूची समाप्त हुई लाले सदन की कार्यवाही जारी रही। मालागासी व्यवसायी मामी खावा तुमांग के जमानत अर्जी पर 17 और 18 अगस्त के सुनवाई तय होल बाटे। कहे कि एफसीसी अपन शुरुआती आपत्ति वापस ले बाटे। साथ ही बचाव पक्ष डीपीपी और एफसीसी के बीच समझौता के बाद प्रिवी काउंसिल में रिमांड बढ़ाए के देवल गल चुनौती के वापस लेवल जाए। और दूसरे देश की खबर में हमास बोलेलन कि ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस योजना की घोषणा के बाद गाजा में हथियार छोड़े खातिर सहमत हो गलबा, जे पर इसराइल देने से अभी ले कोनो प्रतिक्रिया ने आल बाटी। तो देश विदेश की खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल। अपन ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: अब जमरनी की खबर सुने जा। फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड में 3 कुड़ी 3 बरिस के 67 के श्रीमती रूपा मंगरू जे आगे बैलेंस सुहिनाम रहत रहलन गुजर गल हवन। उनकर माटी काल सामदी के 1 अगस्त के मौस समयानुसार दिन के 3:30 उनकर घरे फॉरेस्ट पार्क इंग्लैंड से उठा के इंग्लैंड के शमशान भूमि ले जावल जाए। अवनी लाफोज रोतबासें काटोबोन में 4 कुड़ी 10 बरिस के 90 के श्रीमती तेवंती सीतल पैदायशी नाम नवरतन आज तेवंती सीतल नाम से जस्ती जानते चात्रलन जाओ गुजर गल हवन। उकर माटी आज दिन के 1 बजे उकर बेटा नीतीश सीतल के घरे अवनी लाफोज रोतबासें काटोबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। रारूड मुसलमान सेंट आंद्रे में 4 कुड़ी 2 बरिस के 92 के श्री चितबहल राम सोहक जे हरिदत्त नाम से जस्ती जानते चात्र लंजा आज आगे एजुकेशन अफसर रहलंजा उगुजर गल हवन। उकर माटी आज फजर के 10 बजे उकर पत्नी माया देवी राम सोहक के घरे रारूड मुसलमान सेंट आंद्रे से उठा के त्रियोली के शमशान भूमि ले चावल जाए। मुसलमान वीओए सालमाटी में 2 कुड़ी 19 बरिस के 59 के श्रीमती पूर्णिमा बुलक पैदायशी नामनक चेदी आर जे माया नाम से जस्ती जानते चात्र लंजाओ गुजर गल हवन। उकर माटी आज फजर के 9:30 उकर पति श्री बुजदेव बुलक के घरे मुसलमान वीओए सालमाटी से उठा के लावा चुआ के शमशान भूमि ले चावल जाए। राजा रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे में 4 कुड़ी 4 बरिस के 94 के श्री धर्मानंद उगातू जे धर्म नाम से जस्ती जानते चात्र लंजाओ गुजर गल हवन। उकर माटी आज दिन के 11 बजे उकर बेटा संजय उगातू के घरे राजा रोड लेस्पेरेंस त्रिबुशे से उठा के वहीं के शमशान भूमि ले जावल जाए। लापे जेरा बैक्स स्ट्रीट पीतों में 4 कुड़ी 1 बरिस के 81 के श्री व्यास दत्त रामदोस जे सुरेश नाम से जस्ती जानते चात्र लंजाओ गुजर गल हवन। उकर माटी आज फजर के 10 बजे उकर पत्नी रामावती रामदोस के घरे लापे जेरा बैक्स स्ट्रीट पीतों से उठा के पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए। महात्मा गांधी गली फोंजुसाक में 2 कुड़ी 15 बरिस के 57 के श्रीमती विश्वानी राम खलावन पैदायशी नाम तिमल आज विश्वानी नाम से जस्ती जानते चात्र लंजाओ गुजर गल हवन। उकर माटी आज फजर के 10 बजे उकर बेटा अमित राम खलावन के घरे महात्मा गांधी रोड फोंजुसाक से उठा के फोंजुसाक के शमशान भूमि ले जावल जाए। मधुलेन पृथ्वीवैजी सें पी एम में 3 कुड़ी 10 बरिस के 67 के श्री कृष्ण कुमार बंसरोपन जिक्रेश नाम से जस्ती जानते जात्रा लंजाओ गुजर गल हवन। उकर माटी आज फजर के 10 बजे

0: Joe Kerkari, Madulin Pitsivesh, Sampia Seutakis, Circonstance, Sampia Kishumshan, Pumini Javal Jai. Maisonette Road, Rivière des Anguilles, Métin, Koribarabariski, 72 ans, Kishri Takur Dev Goraya, Jigao Sonsa Dunam, Sejasti Janet Jatralencha, Gusar Galhawan, Okarmati, Aj Dingetin Baje, Okar Kari, Maisonette Road, Rivière des Anguilles, Se Utake, Kandiable Kishumshan, Pumini Javal Jai. गांधी रोड एनएस फ्लोहाउ में डुकोरी सोलह बरिस के सकन सीजों के श्री जयराज रघुनोत जे गौ सोनाम से जस्ती जाने ते जात्र लंजाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर पत्नी निर्मला रघुनोत के घरे गांधी रोड एनएस फ्लोहाउ से उठा के भूषों के शमशान भूमि रे जावल जाए। कुसमाली रोड त्यागूज में तीन कोरी पांच बरिस के स्वसन सैकों के श्री लेखराम किस्तो जे राम किस्तो नाम से जस्ती जाने ते जात्र लंजाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा होकर घरे कुसमाली रोड त्यागूज से उठा के त्या मिनिस्ट्री ओले के शमशान भूमि रे जावल जाए। मुसलमान बासें कठोबोन में तीन कोरी छः बरिस के स्वसन सीजों के श्री आनंद कुमार सिरतन जे आनंद कुमार नाम से जस्ती जाने ते जात्र लंजाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 2 बजे ओकर घरे मुसलमान बासें कठोबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। कहुआ कासिया थ्रा बुटीक लेस्कालिये में चार कोरी छः बरिस के 86 ओं के श्रीमती बिंदामती खिरू पैदाश इनाम जीवन आज मैडम बिंदु नाम से जस्ती जानते जात्र लंजाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा ओकर घरे कहुआ कासिया थ्रा बुटीक लेस्काली से उठा के माहिशानी रोज बेल की शमशान भूमि ले जावल जाए। मुस्के रोड सेबास्तोपोल में तीन कोरी एक बरिस के 61 ओं के श्री अनिल चकवा गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 1 बजे ओकर घरे मुस्के रोड सेबास्तोपोल से उठा के सेबास्तोपोल के शमशान भूमि ले जावल जाए। नंबर 212 एवेन्यू ओटेल में कटरबोन में चार कोरी छः बरिस के 86 ओं के श्रीमती इंद्रानी भिकू पैराशी नाम कुसीराम आज रानी नाम से जस्ती जाने ते जात्र लंजाओ गुजर गल हवन ओकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा ओकर बेटा तुविन कुमार भिकू के घरे नंबर 212 एवेन्यू ओटेल में कटरबोन से उठा के गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोग के प्रति हमने संवेदना प्रकट करे थे जा।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: गर्मा गर्म नाश्ता।
1: सभी को प्यार भरा नमस्कार और गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। आइए खेलते हैं गर्मा गर्म नाश्ता, जहां पर कुछ प्रश्नों नाश्ता आप सभी को करवाएंगे, दिमाग की कसरत भी होगी। नंबर तो वही है 4028085 पर 4285 पर। और अगर आपको लाइन ना मिले तो आप व्हाट्सएप पर भी हमें मैसेज भेज सकते हैं 5251700 पर 5251700 पर।

चलिए पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने। खुशी खुशी सबका पेट भरता है, खुशी खुशी सबका पेट भरता है, पर खुद कुछ नहीं खाता। बताइए

कौन है वहाँ। खुशी खुशी सबका पेट भरता है पर खुद कुछ नहीं खाता, बताइए कौन है वह। 4028085 पर।

0: सबके दिलों के पास गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम जारी है रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। आइए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: आदाब आफेज जी।
1: आदाब,
0: हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छी हैं हम सब अच्छा हैं। हम संगे को बोला कहा है।
0: अच्छा, बोला था तो कौन जवाब बाते तुहर पास?
1: चमक है, चमक,
0: चम्मच। आपने सही जवाब दे दिया है हाफिज जी, और आपको बधाई कहती हूँ।
1: बहुत बधाई।
0: और आपको कहेंगे शुभ दिन हाफिज जी।
1: शुभ दिन, जुम्मा मुबारक
0: आपको भी।
2: तितलियों को फूलों से दिल लगी मिलाती है।
0: एक और प्रश्न, आप सभी के नाम ध्यान से सुने।

दो नकलची प्राणियों के नाम बताइए। दो नकलची प्राणियों के नाम बताइए 402-808-5 पर। दो नकलची प्राणियों के नाम बताइए जो नकल करते हैं, उनके नाम बताइए।

एक्चुअली बहुत सारे लोग जो हैं व्हाट्सएप के जरिए जो है माध्यम हमें मैसेज भेज रहे हैं, पर मैं चाहती थी कि आप लोग कॉल करें 4028085 पर 4285 पर।

0: लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। नमस्ते बसंती जी।
1: नमस्ते पूजा जी,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ पूजा जी।
0: चलिए बताइए, दो नकलची प्राणियों के नाम बताइए जो नकल करते हैं।
1: एक है बंदर,
0: एक है बंदर,
1: एक है तोता,
0: एक है तोता। क्या बात है, आपने सही जवाब दे दी आपने, और आपको कहेंगे बधाई हो
1: जी। थैंक यू पूजा जी।
0: और एक है तोता और दूसरा है बंदर। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के नाम।

बीसों का सिर काट डाला, ना कानून तोड़ा, ना मारा, ना खून किया, बताइए वे कौन हैं? बीसों का सिर काट डाला, ना कानून तोड़ा, ना मारा, ना खून किया, बताइए वे कौन हैं?

0: ही कहूंगी, खुल्लम खुल्ला गर्मा गर्म नाश्ता खेलेंगे। चलिए लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है,
0: आप ठीक हैं? हम भी ठीक हैं भैया। भाग ले रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और नाम तो बताइए।
1: विष्णुदेव।
0: विष्णुदेव जी, आपका स्वागत है। आइए बताइए हमें कि आपके पास क्या जवाब है।
1: नाखून काटना।
0: नाखून? श्योर हैं?
1: हैं?
0: श्योर हैं आप?
1: श्योर, 100%।
0: 100%, और हम भी 100% श्योर। आपको बधाई कहते हैं और शुभ दिन आपको।
1: शुभ दिन, शुभ दिन, हैप्पी श्रावणी।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: लगता है दोनों पड़ोसी हैं, वो रिश्ता ही ऐसा है जान।

कौन है वह जो अपने सारे काम अपने नाक से निपटाता है? कौन है वह जो अपने सारे काम अपने नाक से निपटाता है? 4028085 पर

0: भाजी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं बहना?
0: मैं भी ठीक हूँ। आपको सुनकर मैं और भी खुश हो गई। आपका
1: मैं ठीक ही।
0: स्वागत
1: आपकी
0: है गर्मा
1: आवाज
0: गर्म
1: सुनकर
0: नाश्ता में। आप भाग ले रही हैं, आपका हार्दिक स्वागत है।
1: जी हाँ, तो
0: और
1: हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कब आएंगे फ्राइडे तो हम आपसे बात करेंगे,
0: चलिए
1: क्योंकि
0: मैं
1: आप मिस हो गई है एमबीसी में।
0: नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जो है कार्यक्रम का जो है बेतरबी से आप इंतजार करते
1: जी हाँ जी हाँ
0: हैं। और अभी आप भाग ले रही है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। हाल में मैंने एक जो है प्रश्न पूछा है, आपके पास क्या जवाब है?
1: वो है हाथी।
0: हाथी शोर हैं आप?
1: जी हाँ,
0: कैसे पता चला आपको, बताइए तो।
1: उसकी लंबी नाक है और वो बड़ी बड़ी वाला एनिमल है, क्योंकि वो अपनी नाक से सब सब कुछ लिपट लेते हैं,
0: क्या
1: तो
0: बात
1: आपको
0: है।
1: उठा लेते हैं, आपको भी उठा लेंगे।
0: आपका आपने सही जवाब दे दिया है और आपको बधाई हो शोभा जी।
1: शुक्रिया पूजा जी।
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाथी के पास नहीं जाइए, क्योंकि आपके उठाकर थीडियो लेके चले जाएंगे एमबीसी छोड़कर।
0: धन्यवाद धन्यवाद, शुभ दिन आपको शोभा जी। चलिए एक और प्रश्न आप सभी के नाम।

0: अभी लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते।

आपको बताते चले कि 5251705 पर व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। शोभा जी है वाकवा से, उन्होंने भी कहा है एलिफेंट, जी हाँ हाथी ही है। राजू वोहरा जी दुबई से, क्या बात है, दुबई से भी हमें लोग सुन रहे हैं, आपका स्वागत है। और आपने भी कहा है हाथी, किसी ने कहा है कुत्ता, कुत्ता नहीं जी हाथी है।

चलिए देखते हैं आखिरी सवाल जो है, आखिरी प्रश्न जो है, कौन ले जाता है? वह क्या है जो पैदा होते ही उड़ जाता है? वह क्या है जो पैदा होते ही उड़ जाता है, फुड़ हो जाता है? क्या है वह? 4028085 पर वह क्या है जो पैदा होते ही उड़ जाता है?

0: हमारे साथ ऑन एयर पर है मुंजी एक्वायर से आपका स्वागत है मुंजी।
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ।
0: अच्छा, हंसते हंसते आप घर गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में भाग ले रही है, ऐसे ही हंसते रहे बस यही आशा करते हैं। और आपके पास क्या जवाब?
1: मालूम नहीं सही है या गलत, चिड़िया तो नहीं।
0: चिड़िया तो नहीं, नहीं चिड़िया तो नहीं है, पर फिर भी आपने भाग लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुंजी।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया।
0: और आपको कहेंगे शुभ दिन।
1: शुभ दिन आपको भी।
0: बाय। चलिए लाइन पर एक और श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग,
2: I'm Saroj from Cupid.
0: सरोज जी आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में, और सरोज जी के पास क्या जवाब है?
2: I'm not sure. Is soul?
0: Soul.
2: आत्मा?
0: नहीं, ये भी गलत जवाब है। कोई बात नहीं, और आपको कहेंगे शुभ दिन।
3: करूं प्यार से भी तुमको नहीं।
0: और किसी ने जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सही जवाब दिया है, आपको कहेंगे कॉल कीजिए 5251700 पर।

0: चोर तो नहीं पर सही जवाब कौन पकड़ कर जाता है। 4028085 पर चलिए एक आखिरी श्रोता को हम लेते हैं और फिर मैं ही सही जवाब दे देती हूँ। हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी, पूजा जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम
1: जी? मैं इंदिरा हूँ, लाल मस्जिद से।
0: इंदिरा जी आपका स्वागत है, और इंदिरा जी के पास क्या जवाब है?
1: मैं हिंदी में नहीं बोल सकती, कैसे कहते हैं वाप, जो वाप आते हैं सुलई से आकर फिरों से उड़ जाते हैं
0: वाप। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत जवाब है।
1: कैसे कहते हैं सोफे हो जाते हैं तो फिर से धुआं उड़ जाते हैं
0: वेपर? नहीं नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आपने आपने भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कहेंगे
1: जो प्रश्न का उत्तर मिला वो तो लाइन नहीं मिला।
0: हाँ जी, कोई बात नहीं, आपको कहेंगे शुभ दिन। तो चलिए इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे हैं, और सही जवाब मैं ही दे देती हूँ, और वो है स्मोक यानी धुआं। और किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से ये जो है सही जवाब दिया है, और वो है शोभा जी वाकवा से। आपको बधाई कहेंगे शोभा जी। तो चलिए इसी के साथ हम अब बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, किरण जानकी जी की प्रस्तुति में। और पूजा की ओर से आप सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और 9 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम।
2: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
3: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। 2 दिन से हमनी नजर दौरावत है जा दुनिया के जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नवा नवा साइट के लिस्टिंग होल बा ओकर पर। त जब इस सब साइट पर नजर दौराते है जा त चला आज इजिप्ट के पिरामिड पर थोड़ा ध्यान दे जा। आज दुनिया के 7वां अजूबा में गिनल जाए होला पिरामिड पर बतियाब जा जो इजिप्ट यानी मिस्र में पावल जाला। इजिप्ट के गीजा से लेके दाशूर तक मेम्फिस और नेक्रोपोलिस पिरामिड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इजिप्ट के प्राचीन राज्य के ई राजधानी में बहुत ही अनोखा कब्र तुम जिके बोली लासा और मोन्यूमेंट बा। इमें रॉक टॉम, मस्तबा मंदिर और पिरामिड भी बा। प्राचीन जमाना में ई जगह दुनिया के 7 अजूबा में गिनल जात रहल। मेम्फिस नाइल नदी के पश्चिम में बाटे, और ई जगह प्राचीन इजिप्ट के पहला कैपिटल खातिर मशहूर है। मेम्फिस एगो ऐसन दिलचस्प भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल जगह पर पावल जाला जेकर द्वारा एगो ऐसन डेल्टा पर आपके नजर जाए जहाँ पर अनेकों व्यापार सीमा होला नदी यानी ट्रेड रूट्स के संगम होवेला। एकर मतलब ई होल कि कोनो भी शासक खातिर अपर और लोअर इजिप्ट के शासन करे पर एकर से बेहतरीन राजधानी नहीं मिलत। परंपरागत रूप से ई मानल जाला कि इजिप्ट के राजनैतिक समन्वय होला राजधानी के रूप में 3000 BC से स्थापना होलबा। ई पुराना मेम्फिस राज्य मिस्र यानी इजिप्ट के स्वर्ण युग मानल जाला। इही समय में गीजा के बड़ा बड़ा राजधानी बनल। फाराओं के लोग देवता के बेटा मानत रहलन सा। उस समय में काम, कला

0: और लेखन और उन लोग के औषधीय सब एकदम उच्च कोटि के रहल। बुलल जाला फागाओ बोले तब जाके नियम बने। आज मेम्फिस और सकारा आर्कियोलॉजिकल साइट बन गल हवन सा। यही जगह आज भी पुराना पुराना मंदिर और पिरामिड के खंडर पावल जाला। पुराना राज्यकाल के बाद देश में गड़बड़ी होने लग रहा और तब थेबिस शहर से फिर से एकजुट करके राज चलावल गल। एक दौर में नहर, खेती और व्यापार बहुत बढ़ल। साहित्य कहानी के भी बहुत विकास भइल। जनता लोग के जीवन शांत और सुरक्षित भइल। थेबिस, अबिजोस और फायोम ये लोग के कब्र और मंदिर आज भी हुआ पैबा। मिस्र के नवा राज्य लगभग 1550 बीसी से 1550 बीसी से 1070 बीसी में स्थापित होल और सबसे ताकतवर और अमीर युग ई मानल जाला। राजधानी फिर से थेबिस बनल पर गर्मी में मेम्फिस में भी दरबार लगे। यही दौर में रामसेस, हतशेप्सुत, तुकन खमन जैसन महान फराओ बनलन सा। इजिप्ट अपन सीमा बहुत दूर तक बढ़ावे लगल। कर्नक मंदिर और वैली ऑफ किंग्स यही समय में बनल। एकर संगे लुक्सोर, अबू सिंबल आदि के दुनिया भर के लोग देखे आवेलन सा। अगला कार्यक्रम में हमने ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंकन यूनेस्को लिस्ट में काहे होलबा ई पर ध्यान देव जा। कार्यक्रम के ध्यान से सुन ला। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

0: 19 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 9 बजे हैं। सभी को विदिता की ओर से नमस्कार। समाचारों का समय हो गया है, चलिए मिलते हैं विदिमा से, सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार विदिमा।
2: नमस्कार विदिता, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस में की में लिए आज दिन बेहद अहम है, जहां मुक्केबाज मवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलंदो होली सुटोमी से भिड़ेंगे, जबकि व्हील चेयर 1500 मीटर की फाइनल रेस में नोएमी अल्फोंस पर

भी सबकी विशेष नजर रहेगी। फ्लक में प्रवीण जगनाथ के हमलों का शिकार बने प्रधानमंत्री कार्यालय की चीफ ऑफ स्टाफ राकेश बकोरी ने व्हाट्सएप चैट के वायरल स्क्रीनशॉट को एआई आधारित संपादन बताकर खारिज किया है और संजय दाऊदारी की योग्यता का बचाव किया है, जबकि मंत्री पत्रिका सेवादन ने फ्लक में हुई एमएसएम के जुटाव और एफसीसी कार्यालय के बाहर पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर पूर्व सरकार की तीखी आलोचना की है। बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों की को कानूनी रूप देने के लिए आज दोपहर 3 बजे के एजेंडे में शामिल फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए कार्यवाही की कार्यसूची समाप्त होने तक जारी रहने का प्रस्ताव रखा है। सऊदी अरब में मौत की सज़ा के खतरे का सामना कर रहे मॉरिशस के नागरिक गनेसन एलन को बचाने के लिए उनके वकील रामा वालादेन ने अधिकारियों से अपील की है, क्योंकि उनका दावा है कि 3 किलो कोकीन के मामले में गिरफ्तार उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क ने $10.5 मिलियन की कथित विरासत का लालच देकर फंसाया है। बनागासी व्यवसायी मामी हवातोमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि एफसीसी ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है, हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है। और विदेश में गुरुवार को मोरक्को से हजारों प्रवासियों के तैरकर स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एनक्लेव स्वेटा में प्रवेश करने के बाद स्पेन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वहां सैनिक भेज रहा है। श्वेता पहुंचने की कोशिश के दौरान कम से कम 15 लोगों की डूबकर मौत हो गई। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: आज की चर्चा।
1: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्ते। कार्यक्रम आज की चर्चा में आपका हम स्वागत करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आपको पता ही है कि हर शुक्रवार को हम कानूनी विषय के साथ आते हैं और आज हमारे बीच हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं हमारे वकील कपिल देव रघुनंदन जी। कपिल देव जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
1: कार्यक्रम में तो हर स्वागत बा।
2: शुक्रिया।
1: तो हमने के संगे अभी हमने के संगे बहुत कोई अभी जुड़ल हुआ जा और यही सोचत हुआ जा कि आज के जो विषय बाय कर में हमने कौन सी पतिया जा। तो आज के हमने के विषय हमने रख ले हैं जा पतिया नीति, पैटर्निटी, पिता के साथ जुड़ल बा। तो जब हमने इस शब्द वे बोली राजा पैटर्निटी, तो हम चाहते हैं कि आप एक ही हमने के विस्तार में बताइए।
2: अली पहला चीज मजे जैसे तू बोल पैटर्निटी अंग्ले के है शब्द में, फ्रांसे में हमने आदि कब सा ला रिशेस दे पैटर्निटी, मतलब रिशेस दे पैटर्निटी का है। एगो जमाना रहल अभी तक बा देखब एगो बाप एगो को मिराज करे एगो दूसर है मैडम से, अपन पत्नी से नहीं, एगो दूसर है मैडम से। एगो जफे कुमा जे बड़ी है कुमा जे है रहल एगो जमाना जहाँ एगो मैडम ओके फास एगो मिशे के से तू फासिल रहल एगो दूसर से खुशी हो जाएगी। जब खुशी हो जाए तो का हुए मजे नॉर्मल में एगो रिलेशन हुए उन लोग दोनों में, कभी ये चोरी चोरी हुए हैं मैम कि मिशेवा शादी कर लेबा, बस उसे कब जहाँ चोरी करब तभी तो देखब प्रॉब्लम वहाँ हुए ला। तो उसे हो जाला उ मैडम वहाँ से जो उसे खुशी होल बा एगो लड़का। अब एगो लड़का कब हो जाला तो हिया तो सोसाइटी में ऐसा एगो जमाना रहल कि बाप ऐसा चीज कोई देखे बोले बोले फलेना ने कि नहीं जाने ले बोले वैसा ओकर एगो लड़का हो गल ओकर तो शादी नहीं कर ले बा या शादी कर ले रहल वो दूसर के लड़का है। अब का हुए तो नॉर्मल
1: कभी बोल शक हो गल कि हाँ कर लड़का
2: है का। तो हिया का हुए तो उल्लेख देखे बोले अरे तो ये लड़कवा को मजे अब ओके ओकर पत्नियाँ बोला था या वो जो जो कि खुशियाँ बा पत्नी नहीं है जैसे हम नहीं बोलते सब पहले मैथ्रेस। अब ओके ओके बोली कुमा जे ये दिक्लारे कर हमर लड़कवा के सुबोजन एगो छोकड़ा है। तो वो बोली नहीं हम नहीं सकब सोसाइटी में मर नाम बाज आदमी जाने ला ऐसे कर जाने ले कि
1: कोई नाम नहीं सकी दे दे तो तनी बदनाम हो जाए
2: का बड़ी जोली से हद दे तो बदनाम हो जाए। तो यहाँ देख ला औसन कौवा में तो वो दिखलावे नहीं करे लेता सिविल में कि ये लड़कवा है ओकर मतलब कि ओकर से ये लड़कवा हो ही होल बा पैदा होल बा। तो मौवा बोली अच्छा तू नहीं मानत हो ना कि ये तोर लड़का है तो चल हम एगो

0: विशेष दिपाते नीति करब हम जाने खोजत हैं स एकर बाप ही के है उ लैकवा के बाप मतलब के है ये पाते नीति है। पाते नीति ई है जहाँ एगो आक्षु रहेला जहाँ पेमेते करेला एगो लैका के जाने के कोनेत जैसे मन बसा ओकर बाप है के
1: एगो डीएनए टेस्ट
0: ना ये भी आप सब में कैसे पूवे होल जाइला ते हियां लकता यहाँ कभी हुएला माँ के भी ये बाप सिर्फ नहीं है पैटर्निटी आप देखा नहीं सर मैं मैटर्निटी ही बा मैं पैटर्निटी कब कुवे कर अब सर तो मैटर्निटी ही भी सब हो जाला बहुत सा मादम है बिग लड़का ओके कुमा जो हो गल भाई कोई दूसरा है मिशेल से समझ लेना वो जाने ला ई है बपुआ जाने को जाता इसकी लड़का के है ओकर माँ वही है तो मैटर्निटी में देखब सर जो प्रोग्राम नहीं मिले था वो दूसरा आपसे लंबा चीज है।
1: हाँ
0: तो हियाँ देख ला वो लड़का जाने को जाता ओकर बाप या ओकर माँ के है आर ये देख ला वो आदमिया जोन भाई जाने को जाता वो मैडमुआ या मिशेवा जोन एक आदमी शादी कर लेबा या नहीं हो शादी कर लेबा बस एक बंद को मिराज करेला मेम की शादी करेला देखो कोई दूसरे को पत्नी के खुशी हो गल भाई को मैडम की खुशी हो गल बा या कभी नहीं हो शादी कर लेबा तो देखो कोई दूसरे से शादी मजा एगो है नाता हो जाला एगो प्रॉब्लम हो जाला तो देखो उ लैकवा नहीं होला तो की कर बोलेला जाने खोजता उ लैकवा एगो आक्षो एगो लैका के एगो लैका रही तो छोटा रही ना नहीं सके पूछवी करे वो अपने मेकर माँ से बुझो पूछवी करे एगो आक्षो है लाखूर में ढुके ओकर बपू वा के पूछवीब करी बस एगो लैका कप मजा जीवित हूँ तक लेकिन नहीं बा ओके तो माजे नहीं बा नहीं सकी पूछवीब करे मैं सकी पूछवीब करे दूसर बा हमने चितैल सब एक बान चीज देखी ला सर मैं अभी वो सब नहीं देखते हैं सर हियाँ देखते हैं सर एगो मिने उ लैकवा ओकर माँ एगो केस करेला ए लाकूर में वो देखेला आवो आवो का एगो केस डालेला कि लैकवा एकर फिलियाशो मकर एकर कुमा जे जड़ी कैसे गो है गांछ गांछवा की तो राशि नून बात अपने देख बकर है ट्रैंक बाक मा जे तो कही बा तो अनमन ऐसने एकर राशि ह के है एकर बाप ई हमने देखत है सर एगो माँ एगो केस डाली लाकुर में लाकू सिपाही सुप्रीम कोर्ट है फैमिली डिविजन में वहाँ जाने खोजता आप वे बका लेके एगो प्लान डाल के कि देख हम मांग करत हई लाकुर के ई लैकवा जोन बा कि ओकर बाप की कुमा जी रिकोनेट करे के दूसरा मांगत हैं उही में कि ओकर नाम उम होई जोन कुमा जी लैकवा पसी मऊआ तो अपन है नाम में दल्ले हो नॉर्मल हर लैका सुशांत सुशांत है मुआ हो जाला तो ओके चाहेला कुमा जी है अंग्रेजी से करे के तो का करलक हिया जाके लेता सिविल में अपन नाम में दल्ले बा ओके मन बा ओकर बपुओ के नाम डाले के बस के लैका बड़ा हुई बोली ना माँ जाने हम लाख देने सोच देखत हैं देखत हैं तुम्हें हमके खाली दिखला रहे हो खूब बोलला तो के हया के हमार बपुआ ये जाने को जता तारी तो बड़का एगो समस्या हो जाला एगो माँ के कुमा जे औसन से
1: माता जी वा जोन बा उ पिता पर केस उ तो जानता लैकवा के कर हा
0: हाँ उ जान नहीं अभी एगो दूसर चीज देखब सा
1: नहीं हियां जैसे केसवा बोलत हाँ, जा ओकर बेटा बा उ जानता लैकवा के कर हा
0: मिसिल में खूब बोलला
1: पितावा जोन बा उ ने एक्सेप्ट करता कि हम लैकवा के अपन नाम देव
0: हाँ।
1: तब जाके मातावा जुनबा माता जीवा जुनबा उ जाके एगो केस डालता ताकि लाकुर जानी कि है जो लैकवा बा उ है मिसेवा के हा और उके चाहे ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले के
0: हाँ जी यहाँ देख ला खूब बोला उ जाने खो जाता कि ओकर बाप के है ओकर बाप के का लैकवा जाने खोजेला एगो कुमा जब पाते नीते उ द्वितीय मीने करेला एगो आदमी के एदाँचीते हाँ। कैसे हमर लैका बा अभी हमर लैका के कुमा जे इदाचीते आवेला हमर नाम से जोड़ल बा ना एगो कबदमी बोली एक एकर लैका हुए दो तो बोली ऐतिल के है हमर बाप ऐतिल है हमर माँ ऐतिल है अब उ लैकवा एक एगो सही कुमा जे एगो स्टैचू सोशल मिलेला लाही में कुमा जे जहाँ झील आसमने के देश में वो सब आदमी जानेला ऐतिल के लैका है दिखेल हियाँ ए पोत है माँ एगो केस करी जाने के कि कुमा जे एगो फिलियाशो एगो जैसे को गाँच है ओकर सुर ओकर लालियान में जाने के है माँ के लैका है बाप के लैका है मैं एगो केस चाहेला है इलाकू में लूजे करे के एगो सैतन लिपोक के आगे अभी तारे देखब सब कौन कौन एक नाम है दिले न तो नहीं कि कुमा जल एक कुमा जो पचास बलि सुगल जाने खोजा करवा में एगो ओकर देखब सब
1: अच्छा पचास बलिस की हो गल तब

0: तक धुआं करना जाके दिखी के
1: नहीं नहीं एक देले है ही बोला साई अच्छा। देखा जा एक देले है कि इतना ले पकवा में चाहे ला ओके है करके अरे कब देले अब ये बोल दे रहा से देले हुआ में के विषय लाइकवा तब ले एगो मिनेर हुई मिनेर के मतलब आवाज जिस का तो उस सकी ओकर मां एगो केस करी अब सकी अपने कब ओके जिजविता हो गलबा मतलब जिजविता माजे होलबा माजे के दो बरिस बाद साविजिया 20 बरिस तक सकी को केस करी मैं कैसे होल 23 ans फिनी नहीं सकी को माजिया को एगो केस करे लाखू में पर ओकर वकील बोली नहीं देले हो गलबा दे पासे हो गलबा तो ई केसवा ठेके के चल ला मजे नहीं सकल लाई तो ई देख रहा है पोटो है कि मजे तबलिक मिने रही तो अब ओकर मां एगो केस ओकर नाम में है झुकी मैं कैसे होल ओके कुमा जे है जिजुइता तो तहियाँ तम हई हो गल माजे तब जिजुइता में सकी मैं सिल्म एगो दिले देवेला ओके कानून कमने की कुछ सिविल 20 बरिस तक 20 बरिस के आपरी फिनी नहीं सकी
0: अभी हमारे दिमाग में कुछ सवाल चला था
1: हाँ बोला बोला हाँ।
0: तो देखा पति पत्नी हवन जमीन जायदाद बा पति के को मैं आज एगो दूसरा संगे बा एगो लड़का बा हुआ लड़का अपन अपन माँ के नाम पर औस्ते बा मैं सिल्मो अभी जब है जो पितावा बा ओकर देहांत हो गल बा और लड़का जोन बा वो है एक परिवार के है तो जाहिर बा जब ओकर नाम पिता जे पर नाम दे रहे होई तो ओकर जिगिचिए बनेला वैसे मैं जब पितावा पर नाम नहीं दे लेबा तो लड़का के तो यहाँ पर कुछ एगो सबूत नहीं बा कि वो लड़का है पिता के है ना
1: इतना जोली से तक हम ही नहीं सब एक्सप्लेन कर खूब बोल तब लेक बपुआ बा को मेराज होल बा उ लड़का नहीं होल बा और ओकर माँ डिक्लारे कर ले बा उ नहीं बपुआ कैसे ओकर मर जाए फिनी कहीं नहीं सकी कुमा जे
0: कुछ नहीं होया
1: कुछ नहीं सकी हो अब नहीं सकी के दिखलारे करी दिखलारे करत से बुझो किसो लाकू रखत तब बपुआ के लाकू जिजवा ने बोलत कि झाइना तो के दिखलारे करे के बस हिया तो मर अपने तो मर गल बा आ दिखब से कब तेस अध्ययन करब से तही तर लोसे बोलता तो कैसे एक आदमी मर गल बा तो कर तेस करब से अध्ययन कि ओकर लड़का है कि नहीं ओके तो जराउ दे ले वंशन फिनी लापू शेयर हो गल बा अब मजा है कैसे मजा है नहीं सकल जाए मजा कब एगो आदमी हो जाला तो हिया हमने देखी ला सर एगो पातियानीते एगो फिलियाशों पातियानीते या मातियानीते एगो लड़का सकी को तिस्ते करे ओकर माँ के नाम बगल से लाखू सुप्रीम में फैमिली डिवीजन में एगो दिले में जैसे स्पेक्ट कर ली पूवियों के कुमाजा वैतों से नई कुमाजा ऊपर बा वैतों से एक एक दिन हुई दो कता बोका खुदते रीसेंट केस कब कुमाजा देव कानून कब बोलेला आले अब हमने देखी ना सर के सकी एगो केस डाले लाकूर में हमने जैसे बोला था एगो ऐतांते करे के एगो केस लागो एक्शन लाकू में आर ओकर दिलेवा में देखब सभी तो बोल ली सर जब तू बोल पूछला था कुमाजा आले पहला चीज ई एगो केस पाते नहीं थे एगो एक्शो है उ लैकवा के कुछ करब ओकर नामे कैसे तू हो अभी एगो लैका बा तुहर अब ओ कुमा जे लैकवा के कुमा जे त मिने बा जहाँ जाए तो कर त कुमा जे हाथ तक कुमा जे है जैसे मैंने बोल सा अमागे बा नहीं सके कुमा जे कुछ करे हाँ मैं तू माँ हो के सब एगो केस करे लाकूर में ओकर नाम में मैं सिल्मा ओ केसवा जोन बा एक्शोवा जोन बा पते नितेवा उ लैकवा के किस है ओकर खातिर मजे एक स्वाद दल हुआ तो देखला एगो पातिया नीते जोड़ल बा ओकर लैकवा से जो लैकवा की मांग करता कि कुमाजे ई बपुआ के या मामा के दिखलारे करे के कि हम ओकर लैका हैं अब ई कब हो गल बा अब ओ मामा तू तो मासी हुआ का हुई जो मामा एगो मीने होल एगो जमाना रहल कब एगो लैका सेजा बा एगो छोकड़ी मत हई बोले खोजत हई देखबे को लड़का हो गलो के आदमी तो सोसाइटी में हंसे गांव में हम तो गांव के लड़का हैं
0: आगे तो उ सेजा में शादी हो जाता कल
1: हां
0: पहले के जमाने में
1: हां मिसिल में दुआ नहीं रहले को तुसे को बोली के मिसिल में एगो चीज है अरे छुपा छुपा में एक मजे एगो लड़का हो गल सेजा में तो आदमी बोली सेजा ते तो अपने मजे नहीं बा कुछ नहीं सकी करे तो हमने देखब सर मैम की एगो मैडम उ बकतवा एगो लड़का के होल सेजा में एगो मिने उही हां
0: हां
1: सकी एगो अपने उपमा जे एगो केस करे लाकू में एगो मिने हो
0: अपने
1: के
0: आप से।
1: अपने हाँ यहाँ देख लो कैसे कानून है अपने होने के बनल बा 5 मिनट में बोला था कि तब लेक मिने रही उपमा जे है मऊआ नहीं सकी बस को माजे सकेला

0: हमारे यहाँ पैसा नहीं बा, हमके कुछ नहीं बा, हमके अभी नहीं आते, मैं फिक्र नहीं करिए तू, हम कुमा जे तो हई हक तो के मिला अब मैं दिन दिन रही जाता कुछ नहीं करता तो कैसे लेते वहाँ फिनी होल तो फिनी नहीं सकब कुछ करे तो ही हमने के लिखल कानून कुछ सिविल मोशिया जोन बा बोलेला ऐते लेते दिले करे के चाहेला। अब देखेला सब कैसे ओकर फोसे जिए कैसे मऊआ ढुके गो केस या बेटुआ ढुके गो केस तो जाके कुमा जिया रिकोनेट करी आर कौन ची होई कि नहीं होई कहाँ हुएला। पहला जब एगो एगो आदमी जैसे हो मिशेवा रिकोनेट नहीं करे खोजता ओकर लैकवा के पस मऊआ तो बोले हुई ना ये जाने ली तोर लैका है बोली कैसे हमार लैका है तू चल चलन ठीक नहीं बा अभी देख समा के कब कुमा जो कर किस कब आवी ओके आवो काका बोली तो बोले तोर कुमा जे मानियर जोन बा ये तो कोई नहीं सके बोले
1: कैसे कैसे सकबे बोले हमार
0: है कैसे सकबे बोले कि ये हमार लैका है हमके तो नहीं लौका था। अरे ओकर मुंह देख ओकर चेहरा देख ओकर स्टैंडिंग
1: हमार कहते तो नहीं बा
0: हाँ है का हमार संगीत हमार पारी नहीं बा यहाँ कपिल देव के लुक में नहीं बा कैसे सकी वो कपिल देव बोले हमार लड़का है समझ ला ना तो ये भी ये एगो है एगो एग्जाम्पल है तो यहाँ कब वो बोल नहीं मानता और का करी तब मऊआ एगो केस एगो आप का वो के देखिए दोनों के चाहेला तब ओकर एगो प्रोसीजर करी लाखों सिपाही में जीज के आगे ये केस आवेला फैमिली डिविजन में एगो केस जहाँ लाखों सिपाही जीज सुनेला ये मजिस्ट्रा के एक मजे दुआ ही नहीं बा ऐसा केस सुने के तब मजिस्ट्रा आई जीज हुआ फैमिली डिविजन हुआ में जोन बा ऊ का करी एगो केस ओकर हियाँ आवेला तो ऊ देखी कुमा जे का लिख ले बा ओकर आवे अबोका जे तू अबोका आबू से द्राफ्टे करेला एगो प्लेंट उल्लोजे करेला लाकू में अब ओकर प्लेंटवा में काब करी बोली कि मांग करत हई कि ई है लैकुआ कि लाकू रिकोनेट कराई के कि ई लैकुआ ऐतेल के है। अब जे ऊ में एगो चीज एगो कुमा जे है डाली सब ओकर कुमा जे सब पापी सब सब है है डालेला आबुए और मांग करी ही बैला चीज है कि ई प्लेंटवा में हम मांग करत हई कि लाकुर एगो तेस करी ई है मिशेवा से एगो ओकर खून निकाली तेसवा ही है खून ओकर निकाल के कि एगो आदेयन के तेस करी फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में बस की हिमोई वाला भी देखब से भी कैसे हो वाला ओकर पोसेजिया तब हुआं मांग करत हई कि एगो आदेयन तेस करे के तेस दे जिसों खून के टेस्ट करके देखे के तो वही तो एटाब्लिय करी कि कैसे है ई है ई ओकर लैका कि नहीं है ओकर लैका कि है नहीं जाने ला अरे ई हाँ अरे तो ओकर से तो जिजवा के आगे ला फैमिली डिविजन में सब मांग कर लक है मैं ऊ प्लेटवा में आप हुआ ओके डाले के चाहेला कि ई मिनिस्टर पब्लिक बा अटोर्नी जनरल के कुमार चाहेला गो पहुंची एगो पर्ची ऊ प्लेटवा में डाले के जिसे हमने बोला सर को डिफेंडेंट और छ ऊ में डाले और चाहेला रजिस्टर ऑफ सिविल स्टेटस कुमा जे ओकरो ऊ के स्वा में डाले के ये काहे है तारेल देखब सर बस कि मिनिस्टर तो लौकित करेला दूसरा रजिस्टर तो जे अंका जीज बोली हाँ ये कर लड़का है तो कैसे एगो लौतरे डाले के चाहेला ओकर लाख देने सांस में तो ये लेता सिविल न ओकर न मुआ डाली ओकर बपुआ के
1: तो यानी कि आज लड़कवा जो बा अपन माँ के नाम पर बा कैसे हाँ बोला कि परी दू बरी सातान करे के तो मामा के जब परी दिखलाहे करे के तो के तो परी लड़कवा के अपने नाम पर डाली तो लड़कवा के अपन नाम पर डाल देलक दू बरिस के बाद जब केस करी केस जीती तब जाके ओके बपुआ के नाम मिली
0: जरूर
1: बपुआ के नाम मिली तब बपुआ के जायदाद में भी ओके
0: हाँ मिलबे करी और एक एक पस की दिखला रही हो गल ओकर नामे ना तारेल देखब सब कौन सा मुश्किल है ई की कुमा जे के अभी के लिए एगो भाई बाबा ओ का करता ओकर एगो सी बुझो एगो लड़का बा ई सब अपन लड़का से शादी कर लेजिटिमेट डिसीजन ले बोला सब वो तो बड़ी खुशी हुआ तारी बाप बोली इतना चीज मिली हमके खुशी हियाँ ओकर बाप एगो को मेगा सकल एगो दूसरे आदमी से और ओके जाके दिखलारे कर दिले बा न तो अध्ययन के विषय नहीं बताई सर रिसर्च दे पाते नहीं थे नहीं कभी जाके कुमा जैस गई बा ओकर बोल रहे हुई ना मैडम वहाँ बोली इतने तोर लड़का थोड़े बोली हाँ देख थी अनमन हमरे नहीं अर बा और ओकर मानियर चल चलन सब बा फिक्र नहीं बा हम चल लेता सिविल त तो लेता सिविल में लौटे हुआ मांग करी कि इ लैकवा हमर नाम में डिक्लारे कर दे। अब जब बंटवारा आई डिविजियों हो एविचिए हो सिक्सेसियों हो जैसे तुम बोला धन दौलत के विषय में बाप तो यहाँ बहुत सा पैसा लाबांक में छोड़ के चल गलबा मर गलबा जमीन तो बोला नहीं कि

0: ना बा तो उल्लै कुआ ओकर नाम में दिखला रे उल बा हो तो खुशी हो बता बोल दे तुम्हारे बाप के अकेला है ये कब पता जाए तो उलाफी दाबी दे सिक्सेशन कब करी बोले कैसे ही में मर नाम नहीं बा तो बोल हाँ ये तू हमार बाप के लड़का हुए हमार भाई हुए बोले हाँ तोर भाई है हम बोले कैसे तो बोले लड़का ला के दे रे सांस दे तोर बाप तो आके रखल मतलब हमारे बापू है तोरो बाप है हाँ। वो आके हमके तो दिखलारे कर ले रखल तो हमार तू तो भाइयो हो गई सर अपने खून के खून है सब
1: तो बाप के आधा आधा करेंगे
0: है का आधा आधा तो पता से कितना
1: और कब ऐसे सकेला हो कि एगो पिता जुन बा मरे से आगे जब अपन वसीयत बना होता वो जाना था कि है जुन घर बा ओकर बेटा के ओकर पत्नी ओकर बेटा ओकर सब परिवार लोग बहू लोग सबको है जाओ मन सा लेकिन वो मैम दिखलावे नहीं कर ले बापन लड़का के तो मान ला जाना था कि अब तो कुछ दिन में हो सकेला कि ओकर देहांत हो जाए मरे से आगे उस सकी एगो वसीयत बनाए जहाँ पर बोली कि ये हमार लड़का हम एक जायदाद में मान ला अब जुन घर द्वार बा तो ठीक बा ओकर नाम पे कोनो जमीन कर दे या ओकर नाम पर कुछ सकी लिख दे जैसे कि बजा कानूनी तौर पे सब कुछ करी तो लड़का के ओकर पर हक मिलेला यानी कि जो बेटा बा घर में ओकर धुआ नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव हुई
0: हाँ।
1: यानी कि जो पिता देलक दिस दे करलक हो
0: भी कुरेक जब बोलल जाला कि कब एगो बाप एगो लड़का ओकर कुमा जे है से बुझ हो गल बा सकी कुमा जे मेम के हो बेटवा नहीं जन ले बा ओकर मादमो नहीं जन ले बा ओकर पत्नी कि ई ओकर लड़का है सखी कब एगो वसियत करे कोनो बाप सखी मेम की शादी कर ले बा मेम की औसे नहीं कर ले बा भी हैं और लड़कवा के मैं नहीं कि जमे आदमी सुनी का समझत नहीं सकावत हैं एगो बाप कोनो वक्त सखी एगो तेस्तामो करे ये करे नाम है ओकर पूवी ओकर कोचिते जिसपो नहीं पूवी जोन बा ओके जमीन उ लैकवा के मिले के ओकर से ज्यादा नई कुमा जे निकाल के कुमा जे लैकवा के दे के सिबोजो एक कार एगो एग्जाम्पल देला एगो बपवा के बा कोनो बाप के का माँ होई बा बाप होई बा तोहरा बा मन तोहरा होई कोई के दे के एक कार परवा एक नाम कोचिते जिसपो नहीं कोई के खुशी सकब दे दे न माँ से कुछ बोले न हिया लैका तो हौ लैकवा के मन हो एगो तेस्तामा करके दे के कुमार से बोझ दूगो घर बा एगो एग्जाम दूगो घर बा एगो घरवा सोच ले बा लैकवा जो दिखलारे कर ले बा ओके दे हिया से बोसो नहीं हो दिखलारे कर ले बा मैं उ लैकवा या ओके देखभाल कर ले बा ओके खुशी बा कि अपने लैका है कि का तो जाके नुतिर हिया एगो तिस्तामा करे कि जो एक कार जोन बा उ जमीनवा के कुमार आ एगो लड़का रही तो कहते सब में मिली जे दू गो लड़का ओकर हल तो आधा आधा मिली तो हिया तो एगो तीसरा बा जोन के मन बा कोई के दे के सके काल एगो आदमी उठा के है कैसे हम ही शादी कर ले हई काल हम के मन बा कुमार है हमार लड़का बा है दूगो अरे दूगोवा के छोड़ के एगो कुमार एगो दूसर आदमी के या एगो सोसाइटी के या एगो दोनाशियों करे के
1: कोई के हाँ
0: कोई के सकब कर दे एगो तिस्तामा कि अच्छा। कब हम मर जाब तो एगो बुतवा एक कार कुमा है ओके ओके है मिली कोई नहीं सकी तूरे कुछ नहीं ओकर दुआ है कुछ करी
1: यानी ओकर ओकर जितना भी ओकर अथी बा ओकर असेट्स बा यानी कि जितना ओकर जैसे कि ओकर जमीन जायदाद बा आज जमीन में उस सकी एक कार आज
0: कोई की खुशी दे के
1: कोई की सकी दे
0: कोई की खुशी
1: कोई नहीं सकी कुछ बोली
0: नहीं और ना सकी टूटे बस ये ओकर बा एनक को मजे
1: मैं समझ आला तेस्ता मावा कर दे के
0: हां हां तब न को मजे न तब कैसे जन बा ओके मिले ओला बा नहीं बा न भाग कब तेस्ता मा करी नु तेर वाया जाला नु तेर करेला तेस्ता मा
1: अब एगो दूसरा सवाल
0: हाली बोले
1: लाइकवा जन बा ओकर बाप के नाम नहीं बा
0: हां
1: और सब कोई जाने ला कि लाइकवा ओकरे हां
0: हाली
1: अब पितावा मर गए
0: हां
1: तो वो लैकवा कैसे करी बस की उतर ओकरे लैका ना
0: हाँ।
1: तो जब मर गए लन तो जाहिर सी बात है दिखला गए तो ओकर जो बिटवा बा घर में वो दिखला गए होल बा तो मर गए तो जितना कुछ बात हो लैकवा के हुई तो हो जो लैकवा बा सब कोई जाने ना लैकवा एकरे हा वो सब कोई जाना था ओकरे में से मैं ओकर नाम पर नहीं बा तब कुछ हो ना
0: नहीं सब कोई जाने
1: जैसे मान लो गाँव में हमन सब कोई जाना था कि है लैकवा फलनवा के हा अब ओकर नाम पर नहीं बा लेकिन कबो आवे लन जावे लन देखे लन लैकवान के मैं से माँ दिखलागे नहीं बा अब काल के ओ पितावा जन बा गुजर गए लन ना तब कुछ हो ला
0: अरे तो के तो कुछ नहीं मिली काहे बोली ला तोरा पहला चीज हमने बोली ला सर तब ले बपुआ दिखलारे नहीं कर ले बा ऊ लैकवा के कि ओकर लैका है तो कुछ है

0: नहीं मिलेला न तो हो लड़का लोग आके बोली ना कानून में, अच्छा तू तो बोलत हमर बाप के तू हो ओकर बेटा हुए तो कौन प्रेम बातों के आदमी कुछ बोली। पहले तो रही गाँव में रही सब कोई बोले रे फलना के है लड़का है नहीं जाने ले वो बोलत फलना के लड़का है। मैं सबसे आदमी जो कुमा जे प्रेम ज्यादा जाने ला और वही सकी बोले ओकर मौवा है जोन से लड़का पैदा होल बा। कितना आदमी सकी बोले अभी देखब सभी का अभी अभी कौन कौन कब मौवा के ओकर का आगते देखब सब तोर अभी बोलब अभी एक शुमा में तसा विजय हो लैकवा जो है होल है को के कुछ भी नहीं मिली तब ले एगो बाप या माँ है
1: अपन नाम नहीं दे
0: अपन नाम नहीं दे तो ओकर तना अभी हम एगो लैका के हमर नाम नहीं देनी रघुनंदन तो कैसे सकी रघुनंदन बन जाए।
1: हाँ।
0: कुछ ना कुछ प्रेम बोला ला ना आ जब तक ओकर आवोका ते ही पूछी बोली बोते तू ओकर है भाई भाई अवे ओकर बेटा तो कौन प्रेम बा तू के तो बोली मर माँ प्रेम बा बोले तोर माँ प्रेम बा हाँ तर लाग देने सांस में के बा है न मुआ
1: पिता बा की माँ बा
0: माँ भाई का तो ऐसा ऐसा केस में देख बा कुमा जे मेम की दुनिया जाने हमनी से कब से बोले हमनी के मुँह से मैं कानून तो सबूत मांगेला प्रेम मांगेला तो हियाँ तो नहीं बा कुछ बताई के कौन कनेक्शन बा और ए पोता है तो सकत मऊआ जीता में कब बपुआ रह तो यही बतियती अहिसा कि सकत एगो कुमा जे केस लाकू में ढुके मांगे के कि एगो अध्ययन तेस करे के कि हई लैकवा के हई हमर कुमा जे है ओकर हम ओकर बपुआ के नमुआ में देखलारे करे के अब हियाँ देखत हैं सब हमने के प्लेतुआ में जो लाखू सिपोमुआ में आल बा हियाँ डालता कौन सी बोलता कि देख इ लैकवा ने होल बा है ये मिसेवा से मिसेवा दिफादे हो जाला वो दिफान करेला लकुरुआ में पसी बोली प्लेतुआ में बोली नहीं हम न हम तो हमारे लैका नहीं है मैं मऊआ मडमुआ मत है आके बोली वो एक बार प्लीजिए रिप्रीज ई मिशेवा जोन से बोलत हुआ ओकर से हम के होल बा रिलेशन सेक्सुअल कितना हाल हमर से सुतल बा समझल ना रिलेशन सेक्सुअल समझ गई मैं वो सुतल बा हमर से वो सुतलवा से वो रिलेशन सेक्सुअलवा से वही लैकवा पैदा होल बा ओकर प्लेट में सब आकोते करता मैं ऊ तो बोल दे आकरी हम तो कभी नहीं सुतले ओकर से कभी तो आरो में रिलेशन सेक्सुअल नहीं हुआ इम शिवा बोता है मैं मदमुआ यहाँ बोला था तो बोले को तो नहीं सकल एगो आसमान से पैदा हो गया ना कुछ ना कोई ना खोजा वो बोले खोजा था कि हमारे लड़का नहीं दूसर से शायद तू कुमा जे ई हई होवे तो हियाँ बोली कि लाकुर के हमके कुमा जे है एगो लोज मांगत हैं कि हम सेवा एगो अध्ययन तेस करी तब हमने जानब स ई लैकवा केकर लैका है कि नहीं है तो अब कब की केसवा कब लकुरुआ में आई तो एगो बोली के पहला चीज देखल जाए ई लैकवा है कि कर समझल ना अभी को तो मांग करता ई लैकवा के ओके दिखलारे करे के लाकू सिपाही में अब का करी ओकर प्रेम आने के ओके कुंवैक करे के देख कैसे कानून है एक बार आदमी बोली हे के जाने ई तोर लैका है कि कुमा जे रहता मिशवा तो डिनाई करता बोलता नहीं हम मांगत ही नहीं तो मदमुआ के चाहे ला बताई के ओकर प्लेतवा में और लाकू में आई के जीज के आगे बोले के कुंवैक करे के बस जीजुआ ना देसी दे करी तो अब के कुंवैक करे के कौन कौन प्रेम के आने के चाहे ला बस इतना कब सुतले वंशन दोनों संगीत हुआ तो कोई नहीं दिखले रहा बोले कमरा तक मजे दरवाजा तो बन रहा अभी खुलल से नहीं हुई ना कि एगो आदमी देख ले लो जे देख ले रही था तम ये मैं एगो बोली के हियाँ सब तो बन बा तो ओके कौन प्रेम आने के चाहेला पहला ओकरे चाहेला जिजुआ के एप्रेशने करे के कुंवैक करे के कि देख ओकर से हम रिलेशन कर ले कहीं हमार संगे उ लैकवा पैदा होल बा अपने अब जीजुआ देखी ओकर कागते ओकर मानिए ओकर कुंवैक बा कि नहीं बा एक्सप्लिके करता कि नहीं एक्सप्लिके करता एगो मानियर में कि झूठ से सच करता सच से झूठ करता एक बान आदमी का करेला सोचेला बड़ी माने है का कर ले बा मिशेवा लेत लिख ले बा है है हौ पतिया जोन सिर बा बोली हाँ जान हमके बोले उ दिनवा कि है हौ लैकवा हम हमर हाँ हमू मानी ला याद भाई गोगे लाशों कर ले रही से उतन दिनवा में हाँ सकेला वही बखतुआ हमर

0: से आर्थुर से एगो लड़का ऊब जोन पड़ला हो हमनिये के लड़का मानता एगो लेत लिख दिले बा कि ई हम कैको नेत करत हैं
1: लेत हाँ लेतवा तो ठीक बा लेकिन आजकल तो लेत नहीं लिखले जा लेकिन आजकल मिसाज बहुत विदा करेला जा
0: हाँ
1: एगो फल

0: कि हमारे लड़का है कि नहीं। हाँ हिया तो बा पपियोआ में लिखल बा, उ रिकोनेट कर ले बा, एगो कन्फेशन कर ले बा, एक कोई कोमकुआ इ लैकुआ ओकरे है, इ लेतुआ है। तो का करी उ फौज ओकर आवोका के दे ओकर आवो के, तो हुआ लाकुरुआ में फौजिए करी ना जीजुआ के बोली हमार तो लैका रहा हमार बा एगो लेत माई बाप है का देखत हो एगो देव एगो लेत देव थे जहाँ हाउ मिशुआ जोन से मारे गोक मजे कोमेगाज बा ओकर लैका है का लिखले बा हुआ। अब ई तो कोरिक बा कि ओकर है लैका है, बोली एक बाण फोटो बा फोटो बा हमारा रू संगे हाथ धरले हैं सर सिपा माफ करिए चुमा ले ले हैं सर
1: घुमल गए
0: घुमल हैं सर लोथेल में रही सर।
1: हाँ
0: बस यहाँ तेल लोथेल कब रही बात हुआ तो गो रजिस्टर है रजिस्टर है जा ले तो ना आई डी को नाम है तो बोले आई गो लोथेल में मजा वो कि तक मजा खाई पियाई के नहीं कर ले कब लाशाम के कुमा जे है बुक कर ले हुआ। देखो प्रेजम्पशन बा कि ऐसा कहवा में कुछ ना कुछ होल हो तो हुआ से वही ले पकवा में लेकुआ होल बा। अभी मजा नौ महीना था लवे ला एगो बोली के तो जाने ला कॉन्सेप्शन होए ला वही ले पक पेयदवा में तो वा के पूछी फूवे करता कि देखो फुतो बा आवे बा डोकीमा बा दूसर जोन जोन इम्पोर्टेंट बा आ जैसे बोल ला दोनों बड़ी खुशी बात का मोबाइल इसने को काम करता मूवे वो
1: में
0: एगो लिमन काम करेला को मूवे कमो भी करेला पोताब तो देख ला पोताब से फोटो निकाल दे ले बा या कुछ बोल ले बा या मजे को चीज एक्सप्लिके कर ले बा बात बात बा, बा, सामने सामने कर ले बा सब चीज बोले बा वो पोताबुआ आके हुआ एक्सप्लिके करी ला कुरुआ में पोजिय करी। तो यहाँ देख लो एक बार प्रेम बा कि कोम को कुछ ना कुछ बा को में गजवा वो अमित सेवा से। अब यहाँ बोले खोजता कि बियोलॉजिकल बियोलॉजिक जैसे हमने बोली ला सब फ्रांसे क्रेओल में कि तोरे लड़का है तोरे कही है शरीर से ये लड़का है जन्म ले ले बा है कामर सब प्रेम बतावता आर वो तो बोलबे करी ना ये सब तू तू बनाई ले हुए है अपन से। मैं यहाँ तो लाकू देखेला कि हाँ अरे पूजो तो कर ले बा दुखी मऊआ न तो दुखी मऊआ का पूजो करेला लाकू इम्पोर्टेंस मजे आता से करेला उ दुखी मऊआ उ प्रेवा से। तो हिया देखेला अब देखी ओकर कुमाजिया पेयो लेगल दे कॉन्सेप्शन सब कोई तदमी बोले ला आज हुई तो नौ महीना में तो लेकुआ हो गए तो जान गई ला ना उही ले पोकुआ में और जैसे हमने बोले सब क्रियोल में सिपा फ्रांसे में और बात फामी कब होल तो कब से शुरू होल कब से कुमा जे ओकर पेयोल दे कॉन्सेप्शन शुरू होल तो कब जीज हो या ऊ हो तो सकबद मियाँ के कोवैंक करे कि कोमकुआ दिख ऐ तिल मिशेवा ओकर डिफेंस में या लकुरुआ में कब आके बोली बोले सब जोन ई बनैले बा सब एगो बन बनावल काम करल बा बस कि मदमुआ जोन बा जोन बोलता ओकर हमर लैका है। अरे बा एकर चल चाल चलन ठीक नहीं बा सिर्फ हमरे से नहीं सुतल ले बा कितना से ही सुतेला कितना से कोमेगाज बा ये कुंजित मम नुतवा बा मतलब एगो कुमा जे वो नहीं स्वाजी करेला जोन आदमी के देखेला के मन हो रिलाशो करे के तो आदमी से बा हाँ बाद में ऐसे नहीं देखेला कुमा जे उसे खुशी होल बा कि नहीं खुशी होल बा वो बस यहाँ तो सोचे हे हम तो एकर से शादी नहीं करब ना एकर से तो लड़का नहीं हुई मैं माले हो जाला कुमा जे बुनिया भी हो जाला से खिला एगो लड़का हो जाए। तो यहाँ देख ला वो बोलता कि ई मदमुआ एगो बिजनेस कुमेस में बा कुमेस नहीं कुमा जे है अपन शरीर बेचेला ये बोले को जाते हैं एगो कुमेस भी बा आर ओकर कुमा जे सिर्फ हमरे से ही सुटले नहीं बा मैं एक बार दूसरों से दूसरों से ओकर रिलेशन बा जब दूसर से रिलेशन होला तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाला बाप के कर लड़का है। तो अभी यहाँ वही पेयोदवा में कर देखता हम नहीं सकेला हमर लड़का हो बोले का है तोर लड़का नहीं है जीजुआ बोले हम तो ओकर संगे रहत रही नहीं हम तो सिपोज अंग्लेतेर में रही तो मोरिस में रहल एलवाइए रहल यहाँ कमो करके चल गया बाबू मुसलमान बोता हुआ रहत अली हमारा ओकर में तो कोनो आपोस नहीं बा हमार संगे तो दोनों संगे नहीं रही ला सकमनी या हमें एगो पोजिशन में रही कि नहीं सकब आदमी के पैदा करे बस कि कुमार जब एक बार आदमी कोनो के तो लास्ट दिफ आसानी हो गल बा तभी हो गल बा और नहीं लजुआ के छोड़ दे रहा जैने चौकड़ा है वैनसैंका में है बे इनकैपेसिटी फिजिक में बाबू
1: हम्म,
0: कैसे वो एक्सीडेंट हो गया,
1: प्रेव कर

0: दिलक
1: हाँ
0: एगो अपराध दिलक हाँ
1: हाँ एगो एक्सीडेंट में हो गल बा या बाप ऐसा एगो लेता हो गल बा मलाद में बा बड़का न लीली में से सकता निकले न कहूँ चले और ऐसा हो गल बा कि ओकर दिन गनल जाता कब सकेला मर जाए तो कब ओके सकेला कुमा जे लड़का हो ओकर संगे तो ओकर दिखला यही बोला था बोले इम्पॉसिबिलिटी फिजिक मतलब नहीं सकी ओकर संगे हो करे की और का बोली हौ जोन बोला था हम मैडम हुआ ओकर प्लेंथुआ में हमके मर खून कुमा जे है दे के खून दे के एगो पोसे जियो बोले हम नहीं खून दे
0: ओकर द्वारा रिफ्यूज करे के
1: हाँ ओकर कंसेंटमेंट ये करे रिफ्यूज करे के ओकर कंसेंटमेंट उस सकी नहीं बोले नहीं हम नहीं दे कितना केस अलबा जोली जोली केस लाखों पीली काउंसिल अलबा हम रिसामा देख लिए वो केस आल है हमने के लाखों सिपाही में भी अलबा तो कहते वकील वो सब बोल देवला जाके ये सब बोलिए कि ओकर कंसेंटमेंट वो सब नहीं रही सब तो साफे ओजिने है तो हियाँ कब ओकर है देवा था ओकर है ओकर आर्ग्यूमेंट ओकर एक्सप्लिके करा था तब बोला था हम खून नहीं दे जिस बार पूछो कि कौन सी कर बे खून दे बे बस कि खून से एनालिसिस होएला जहाँ मजे है जानल जाए एक खून वहाँ के ओकर तेज कैसे बोली जाता
0: है हाँ।
1: जब ओके कुमार जे जीज देसी दे कर दे ले बा वो तो बोता नहीं ओकर कंसेंटमेंट नहीं दे बोता मैं जीज के बा उद्वा हुआ कि ओके बोले के तो के चाहेला बस सुनेला सब के सुआ सब चीज देखेला ओके कन्विंस कर दे ले बा मडमुआ कि ये ओकरे लायका है तो जीजवा सबसे कॉन्स्टेंस कब देखेला एगो केस के तो सकी बोले बो ये कहवा में तू खुशी हुए नहीं खुशी हुए हम ओडे करेला हम लाखों रहे हम जीज हैं
0: यानी कि वो जीज पे दीपान करेला हाँ। कि आज वो बोलन कि तोहरा चाहेला इते स्वा करे कि तो तोहरा चाहेला करे कि यानी कि सब केस देख के वो जान गल बा कि है जो छुकड़िया बा मदामुआ बा वो झूठ नहीं बोला था
1: सब कोवैंकी हो गल
0: बा हाँ, सब प्रेम ओकरे ओकरे तरफ आवता तो ये जितना भी झूठ बोली वो बोली नहीं हम के तो के चाहेला तेज करा के आओ
1: हाँ,
0: और जब तेज होवेला पता चल गया लेकवा ओकरे ह तब कुछ होवेला
1: हाँ अभी एक मिनट अभी हमने कोर्ट प्रोसीड जो दे सकते कैसे
0: ओकर फुनवा
1: कैसे करता तो अब यहां जिजवा सब सुन सान ले लग के सुआ तो ऊ तो बोलबे करता नहीं है करी खुनवा तो नहीं दे यहां जीज देवेला एगो लोड बोलेला हम तो के बोला थई जाके तेज चला फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बाहिया मुका में बोले जे ये हुआ जाके हुआ तुर खून दिए हुआ का करल जा एनालिसिस अब तो हुआ जैसे जाने ल दब्बा दुखतेर दुखतेर तो अपन लापागई में पासे करी कैसे कुमा जब देसी दे करी ओकर खून जो स्पेसिमेन वहाँ ले ले बा तो देखी हुआ बोली कि कम को इह ओ एगो है दे कुमा जब रिपोर्ट दे कैसे कुमा जब कौन सी बा इलाइकवा के और ओकर लैकवा के ताली बाकी नहीं जान जी बा दूगो खून रही तो जान जाकर खून हुआ दूसर से बुझो खून के मजे उतना विषय हम नहीं जान लिया मैं एक एक बात है ओकर खून हुआ कि कोनो के आदमी के बा ओ इना को कोनो के बा कानी कौन सी है एगो दूसरा है ओकर है
0: बी पॉजिटिव
1: हाँ हाँ निगेटिव है को बोला
0: निगेटिव पॉजिटिव सब
1: हाँ तो नहीं यादे नहीं होवे निगेटिव या पॉजिटिव हो यहाँ बोल दिलक ना अरे ऊ पॉजिटिव बा यू पॉजिटिव बा एक वहाँ फिर कॉन्फियम करेला ऊ ओकर काम है डॉक्टर के काम है तो यहाँ को पापिए दे तो अभी पपी हुआ आई नहीं यहाँ लोकुरुआ में कब आए तो जीजुआ के तब मिली ना गो कॉपिया तो हो जोन के जे कर ले बाद तेरुआ एनालिसिस कर ले बाद सब चीज उ तो लकुरुआ में ईबो करी तो देखी तो यहाँ बोली ना कि हम
0: यही है बपुआ
1: हाँ यही का है कि बपुआ अब जेब कहाँ हुआ से एगो जमाना रहल तब हम फिक्स शुरू कर ले रही अब वो काके कमुआ करे के तो हम के को केस ऐसे मिल रहा अरे बाप अब वो प्रॉब्लम होल उ में हियाँ नहीं रहल मॉरिशस में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जहाँ एगो एनालिसिस करे कि एकर खुनवा कर बपुआ के नहीं तब हमने के चाहत वो सैंपल भेजे के स्विद अफ्रीक बाप स्विद अफ्रीक 200,000 मांगे हुआ के दुखते
0: एगो
1: तेस्वा करे के एक स्वीक खास नहीं
0: तो 200,000 के जाए इतना दे के तेस करे
1: आले औसन माँ जो उनके कुमा जब वो कुमे गाज बेचारी कर दिले बा हो भूल तो सभी से हुए ला अब हुआ ऐसा एगो चीज कर दिले बा कहाँ से जाए बाप 200,000 खोजे उले पकवा में अभी तो यहाँ तक आदो

0: हिमाचली सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में मॉरिशस के लिए आज का दिन बेहद अहम है, जहां मुक्केबाज मेवन क्लेयर 70 किलोग्राम से कम वर्ग के सेमीफाइनल में वेल्स के ओलांडो होली सुतोमी से भिड़ेंगे, जबकि वुलचे 1500 मीटर की फाइनल रेस में नोएमी अल्फोंस पर भी सबकी विशेष नजर रहेगी। बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों को कानूनी रूप देने के लिए आज 3 बजे के एजेंडे में शामिल फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी। सऊदी अरब में मौत की सजा के खतरे का सामना कर रहे मॉरिशस के नागरिक गनिसन एलन को बचाने के लिए उनके वकील गामा वालाइदेन ने अधिकारियों से अपील की है, क्योंकि उनका दावा है कि 3 किलो कोकीन के मामले में गिरफ्तार उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क ने $10.5 मिलियन की कथित विरासत का लालच देकर फंसाया है। मलागासी व्यवसायी मामी गावातुमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि FCC ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है। हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है। और विदेश में गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने

0: रहा है कि हमास एक ऐसे रोडमैप पर सहमत हो गया है जिसके तहत वो चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार छोड़ेगा। इसके बदले इसराइल भी गाजा से चरणबद्ध ढंग से अपनी सेना वापस बुलाएगा। हमास के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि इस समझौते का क्रियान्वयन तभी होगा जब इसराइल भी समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह लागू करेगा। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। एवेन्यू दे पेट्रिक्स मेडिन कॉन्डमास्क में 72 साल की 72 years old की श्रीमती देबिका झारी, पैदायशी नाम समा और जो देबिका नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर एवेन्यू दे पेट्रिक्स मेडिन कॉन्डमास्क से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। गुप्ता लेन बुसोंज में 73 साल की 73 years old की श्रीमती लीलावती बायरू सिंह, पैदायशी नाम गंगाराम और जो लीलावती नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12:15 बजे उनके बेटे विजय बायनू सिंह के घर गुप्ता लेन बुसोंज से उठाकर मोताय सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:15 PM। सीबी रोड गुडलैंड्स में 61 साल की 61 years old की श्रीमती शारदा मंगल, पैदायशी नाम धनु और जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री संजय मंगल के घर सीबी रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 10:04 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। तो चलिए आपकी ये भक्ति धारा कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत, साथ ही साथ आप सुन सकेंगे शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम भगवान गणेश जी को नमन करते हुए हम करेंगे।

0: तो चलिए श्रोताओं, 10:10 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सुनते हैं शास्त्र नवनीतम। ये कार्यक्रम डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
2: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमन।

का विषय है ईश्वर की मित्रता। कर्मशील जीव पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है जिसमें जीव और ईश्वर की मित्रता दर्शाई गई है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसे इंद्रस्य युज्यः सखा। अर्थात हे जीव, परमात्मा के स्वाभाविक कर्मों को देख, परमात्मा के अद्भुत रचना को देख, उनके गुण कर्म और स्वभाव को देखते हुए तू भी उत्तम कर्म कर, संसार का कल्याण कर। परमात्मा तेरा सच्चा मित्र है, वही पग पग पर जीव की सहायता करता है। परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव को धारण करने से जीव का भी गुण कर्म और स्वभाव परमात्मा के अनुरूप हो जाते हैं। अंतर इतना है कि परमात्मा व्यापक रूप से सृष्टि की रचना करता है और जीव अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान होने से सीमित रूप से किसी वस्तु की रचना करता है। रचना करने का जो सामर्थ्य है परमात्मा और जीव दोनों में है, लेकिन परमात्मा की रचना विस्तार से है और जीव की रचना अल्प मात्रा में होती है। मंत्र में विष्णु परमात्मा का वाचक है। विष्णु के सर्वव्यापी और कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन करते हुए मनुष्यों को श्रेष्ठ और परोपकारी कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। विष्णु कौन है? अर्थात वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरम जगत स विष्णु, जो चर अचर जगत में व्याप्त होकर इस संसार का पालन कर रहा है, उस ईश्वर को विष्णु कहा गया है। कहते हैं कि इंद्रस्य युज्यः सखा, इस वाक्य का अभिप्राय है कि सर्वव्यापक विष्णु स्वरूप परमात्मा जो सबका पालनहार है, वह इंद्र का मित्र भी है। इंद्र जीवात्मा का वाचक है, अर्थात जीव का परम सखा परमात्मा ही है। जीव अपने शुभ कर्म और परोपकार के द्वारा महापुरुष व देव पद को प्राप्त करता है। महापुरुष कठिनाइयों से लड़कर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। धैर्यवान साहसी और पराक्रमी महापुरुषों के अंदर परमात्मा के गुण विद्यमान रहते हैं। उनके सानिध्य में रहने से हमारे अंदर उनके जैसे विचार और व्यवहार आने लगते हैं। परमात्मा हमारे हृदय के अंदर मित्र जैसा ही व्यवहार करता है, पुण्य कार्यों के लिए बार बार प्रेरित करता रहता है और बुरे कार्यों को छोड़ने की प्रेरणा देता रहता है। अतः मनुष्य अपने अच्छे गुणों और शुभ कर्मों के कारण ही महान बनता है। संसार में महानता के शिखर पर पहुंचने के लिए धर्म एवं श्रेष्ठ मूल्यों के साथ जीना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से हम सबको यह देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है। इसी मूल्यवान शरीर से मानव उत्तम कर्म करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। परिश्रम करने की शक्ति, साहस, धैर्य आदि गुणों को प्राप्त कर वह व्यक्ति सौभाग्यशाली हो जाता है। ईश्वर की उपासना से मानव के अंदर उद्यम, साहस, धैर्य, बौद्धिक शक्ति, आत्मिक शक्ति आदि गुणों के आने से वह परमात्मा के अति निकट हो जाता है। जीव जब परमात्मा की न्याय व्यवस्था जान लेता है, तभी वह अन्य जीवों के प्रति न्याय की दृष्टि से देखता है। जीव जब परमात्मा को दयालु मानता है, तो वह भी अन्य जीवों के प्रति दया दिखाता है। जीव जब परमात्मा को सर्व रक्षक मानता है, तो वह भी अन्यों की रक्षा में तत्पर रहता है। हमारे अंदर परमात्मा की ही शक्ति काम कर रही है। साहस, धैर्य, बुद्धि, आत्मिक शक्ति सब परमात्मा की ही देन है। जीव

जब भगवान की रचनाओं, चाहे वो रचना सामान्य हो या विशेष, उनके कर्मों की ओर ध्यान देता है, उनकी रचनाओं की ओर ध्यान देता है, तो जीव को श्रेष्ठतम कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। उसी प्रेरणा से वह जगत के उपकार में लग जाता है। जीव अपने श्रेष्ठ एवं महान कर्मों से इंद्र पद को प्राप्त करता है, इसीलिए जीव को इंद्र कहा गया है। वह सर्व ऐश्वर्यवान बन जाता है, वह अपने पुण्य कर्मों से महान बन जाता है। इंद्र महानता का परिचायक है, वह दिव्य ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है, वह सांसारिक धन का दास नहीं बनता, बल्कि भगवान की कृपा से उस धन को जगत कल्याण के लिए उपयोग में लाता है। एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि उद्यमः साहसम धैर्यः बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। प्रथम उद्यम अर्थात उचित परिश्रम, राइट एफर्ट। दूसरा साहस, करेज। तीसरा धैर्य, धीरज, पेशेंस। चौथा बुद्धि, इंटेलेक्ट। पांचवा है शक्ति, शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति व सामर्थ्य, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। छठा है पराक्रम, ब्रेवनेस। षडेते यंत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। जीवन की सफलता का पहला वरदान उद्यम है। उचित परिश्रम प्रगति का आधार है, बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परिश्रमी के साथ समाज चलता है, देश उन्नत बनता है। परिश्रमी व्यक्ति अनायास किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। परमात्मा ने मानव को परिश्रम करने का वरदान देकर उसे कर्ममय बनाया है। पुरुषार्थ से ही दरिद्रता दूर होती है। पुरुषार्थ के बिना व्यक्ति एक चलता फिरता शव है। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में साहस दूसरा वरदान है। सही साहस ईश्वर की ही प्रेरणा है। साहसी व्यक्ति भय का शिकार नहीं होता। साहस भगवान का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसके बिना कोई कठिन कार्य पूरा नहीं होता। साहस से कठिन कार्य को पूरा किया जाता है। साहस से युद्ध में विजय प्राप्त की जाती है। तीसरा वरदान है धैर्य। धैर्य का अर्थ है धीरज धारण करना। धीरज धर्म का पहला लक्षण है। धीरज की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। दुख, कष्ट व संकट के समय धीरज औषधि के समान है और औषधि के समान कार्य भी करता है। धैर्य वह शक्ति है जो पराजय को विजय में बदल देता है। धीरज का अर्थ प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने अंदर इच्छाओं को जीवित जागृत रखना है। किसी पाश्चात्य विद्वान का मत है, पेशेंस इज नॉट द एबिलिटी टू वेट बट द एबिलिटी टू कीप ए गुड एटीट्यूड। चौथा वरदान बुद्धि है। बुद्धि वह शक्ति है जो तथ्यों को समझने एवं ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है। बुद्धि का लक्षण क्या है? शास्त्र में कहा गया है कि निश्चयात्मिका बुद्धि ही। निश्चय करना बुद्धि का लक्षण है। इंटेलिजेंस पोसेसेस पावर ऑफ मेकिंग गुड सिलेक्शन एंड गुड रेजोल्यूशन। और बुद्धि का कार्य क्या है? अध्यवसाय बुद्धि। भेद अभेद तर्क वितर्क करना बुद्धि के कार्य है। बुद्धि निश्चय करती है। बुद्धि के सदुपयोग से कार्य का परिणाम अच्छा होता है, परंतु बुद्धि के दुरुपयोग से जीवन में संकट, दुख और पाप जन्म लेते हैं। कभी कभी बुरे संग एवं बुरे विचारों से बुद्धि में मैल और कुसंस्कार जम जाते हैं। मैल व सुसंस्कार को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाती है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को उत्तम मार्ग में प्रेरित कीजिए। हमारी बुद्धि को पवित्र बनाइए हे ईश्वर। बुद्धि के सुधर जाने से सब कुछ सुधरने लगते हैं, परंतु बुद्धि के बिगड़ जाने से सब कुछ बिगड़ने लगते हैं। पवित्र विचारों एवं सत

0: सत्य ज्ञान द्वारा हम अपने बुद्धि को नित्य प्रति पवित्र रख सकते हैं। पांचवा वरदान है शक्ति का आवाहन। शक्ति का आदि स्रोत परमात्मा है, उसी की सामर्थ्य से संसार गतिशील है। मानव भगवान का उपासक बनकर इसी शक्ति की कामना करता है, चाहे वह शरीर की शक्ति हो या मन की शक्ति हो अथवा आत्मा की शक्ति हो। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य के पालन से वह शक्ति मनुष्य के अंदर संग्रहित होती है। उसी शक्ति के सदुपयोग से व्यक्ति के कल्याण के साथ साथ संसार का भी कल्याण होता है। छठा वरदान है पराक्रम। किसी महान कार्य को पूरा करने के लिए पराक्रम की आवश्यकता होती है। पराक्रम तप और साधना से प्राप्त होता है। पराक्रम वीर पुरुष का आभूषण है। पराक्रम के बिना युद्ध जीता नहीं जा सकता। पराक्रम का दाता मात्र परमात्मा है। जीव की सहायता करने से परमात्मा सखा कहलाता है। जीव जब परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार कर्म करता है तो उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है, उनकी बाधाएं दूर हो जाती हैं, उन्हें सुख की अनुभूति होती है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब हमें अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। 10:24 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और शुक्रवार का दिन है आज। तो चलिए, आपके लाए है ज्ञान चक्र, ये कार्यक्रम हिंदू महासभा की तरफ से आप सुन पाएंगे और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले हैं आप हैं आचार्य गिरीश शर्मा जी। तो श्रावण मास के उपलक्ष्य में, जी हाँ, श्रावण मास के उपलक्ष्य में ये प्यारा सा प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीणां पश्यन्ति सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। आज फ्राइडे 31 जुलाई, हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आज के ज्ञान चक्र कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सनातन धर्म में व्रत तो बहुत है, जैसे चतुर्थी, एकादशी, त्रयोदशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि आदि, लेकिन सनातन धर्म में चतुर्मास को ही व्रतों का खास महीना कहा गया है। चतुर्मास चार

0: महीने की अवधि है जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। ये चार महीना है श्रावण मास, भाद्रपद मास, आश्विन मास और कार्तिक मास। चतुर्मास के प्रारंभ को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और अंत को देव उठनी एकादशी। चतुर्मास का प्रथम महीना है श्रावण मास। श्रावण मास को व्रत, संयम, भक्ति और साधना का महीना कहा गया है। इसे पूर्ण मास में श्रद्धा भक्ति के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार निराहार, फलाहार अथवा सात्विक भोजन का नियम अपनाकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। यद्यपि श्रावण मास का प्रत्येक दिन पवित्र है, फिर भी इस मास को श्रावण सोमवार, मंगल गौरी व्रत, गणेश चतुर्थी, नाग पंचमी, एकादशी, श्रावणी पूर्णिमा तथा रक्षाबंधन जैसे पर्वों का विशेष महत्व कहा गया है। जो भक्त संपूर्ण श्रावण मास का व्रत करते हैं उनके लिए शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। यथासंभव भूमि पर शयन करना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का ध्यान करना, अधिक से अधिक मौन रहना, दिन में फलाहार करना तथा रात्रि में केवल जल ग्रहण करना अति उत्तम माना गया है। इस अवधि में दूध, दही, सात्विक फल एवं व्रत योग्य आहार का सेवन किया जाता है, जबकि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अधिक मसालेदार भोजन तथा तामसिक पदार्थों का त्याग किया जाता है। श्रावण मास के दौरान पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी वेजिटेबल का सेवन भी नहीं किया जाता। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस मास में दाढ़ी, बाल, नाखून आदि ना काटने का भी विधान बताया गया है। यद्यपि इसका पालन अपने परंपरा और परिस्थिति अनुसार किया जा सकता है और पूरे श्रावण मास यदि व्रत करने में समर्थ ना हो तो केवल श्रावण सोमवार का व्रत भी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। आखिर में मानस विचार आज बालकांड दोहा संख्या 74 की एक चौपाई आपके सामने रख रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, पुनि परिहरी सुखा नेहु परणा, उमाही नाम तबु भयहु अपरणा, देख ही उमा तपकीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। व्रत करते समय माँ पार्वती ने इतना कठोर व्रत किया कि इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया और ऐसा भगवान शिव को प्रसन्न की। चलिए आज को मैं विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए श्रोताओ, श्रावण मास के शुभ अवसर पर हम जन भक्ति गीत भगवान शिव पर चलाने वाले हैं। और आपको पता है कि ये मास जो है भगवान शिव जी को समर्पित है, तो बहुत ही भक्ति भाव के साथ हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अनेकों उपाय करके उनको हम प्रसन्न करते हैं। तो चलिए भगवान शिव के नाम जो है बहुत ही प्यारा सा नजराना सभी भक्तों के नाम।

0: 10:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और हम बात कर रहे हैं सावन के महीने के बारे में। चंद भक्ति गीत आपकी सेवा में। वैसे इस सावन केवल शिवलिंग पर जल ही नहीं बल्कि अपने मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता भी अर्पित करें, यही सच्ची शिव भक्ति है। तो चलिए हर हर महादेव जो है इस मंत्र का जाप आप करते रहे और हमारी जो है कामना है कि आप हमेशा आपके जीवन में सुख बनी रहे, शांति, स्वास्थ्य और अच्छी जो है सफलता जो है आपकी ज़िंदगी में आप पाए। तो चलिए आपके लिए हम लाए हैं चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान जो है भगवान शिव पर आधारित।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए श्रोताओ, सावन हमें सिखाता है कि जैसे वर्षा की बूंदे जो है धरती को नई हरियाली देती है, वैसे ही भक्ति, प्रेम और सकारात्मक विचार हमारे जीवन को नई ऊर्जा और नई दिशा देती है। तो चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज है शुक्रवार का पावन दिन, हम माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान करते हैं और माँ दुर्गा जो है हमें शक्ति प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो चलिए उनके नाम जो है ये प्यारा सा भक्ति गान नरेंद्र चंचल के स्वर में।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में आप सुन सकेंगे। तो मिलेंगे 2:30 बजे आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमा नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। बजट 2026-2027 के तहत घोषित कदमों को कानूनी रूप देने के लिए आज 3 बजे के एजेंडे में शामिल फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पर चर्चा होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री ने स्टैंडिंग ऑर्डर 65 का हवाला देते हुए कार्यवाही की कार्यसूची समाप्त होने तक जारी रहने का प्रस्ताव रखा है। सऊदी अरब में मौत की सजा के खतरे का सामना कर रही मॉरिशस के नागरिक गनिसन एलन को बचाने के लिए उनके वकील रामा वालाइडेन ने अधिकारियों से अपील की है, क्योंकि उनका दावा है कि 3 किलो कोकीन के मामले में गिरफ्तार उनके मुवक्किल को एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क ने $10.5 मिलियन की कथित विरासत का लालच देकर फंसाया है। मालागासी व्यवसायी मामी हवातोमांग की जमानत अर्जी के गुण दोष पर विचार करने के लिए बेल एंड रिमांड कोर्ट में 17 और 18 अगस्त को बहस तय की गई है, क्योंकि एफसीसी ने अपनी शुरुआती आपत्ति वापस ले ली है, हालांकि जमानत का विरोध अभी भी बरकरार है। विदेश में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में बोफो कासल के पास हमला किया। सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्ला की सुरंगों के नेटवर्क के हिस्सों को नष्ट करने के लिए 700 टन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार इस बीमारी से 1500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वायरस का प्रसार नियंत्रण प्रयासों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा गुरुवार को जारी अपडेट के अनुसार देश में अब तक इबोला के 3,442 मामले दर्ज किए गए हैं और 1,521 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: Guptaline Bosonge, Meti Hattersal, ki 73 years old, ki Shrimati Lilauti Bairu Singh, पैदाइश नाम गंगाराम और जो लीलावती नाम से भी जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं, उनके अर्थी आज दिन के 12:15 उनके बेटे विजय बैनु सिंह के घर गुप्तलीन बुसोंज से उठाकर मोहताज सिंह पिया बॉम्बू की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 12:15 शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। मंजिल सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्ते से मत डरा ए दुनिया वाले, मैं जिसकी आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को। हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए। मौज़े सामीन, हर जुम्मे की तरह आइए इस नशरियात का आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आज आप समात फरमाएंगे सूरह अल-कहफ की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد

सदक़ल्लाहु लज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अल-कहफ़ की तिलावत। हज़रत अबू सईद क़द्री रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ़ पढ़ेगा तो उसके लिए दोनों जुम्मों के दरमियान एक नूर चमकता रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो। इस रोज़ दुरूद में फरिश्ते हाज़िर होते हैं और ये दुरूद मेरे

मौजे सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:34 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है, जुलाई की 31 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़र की आज 16 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। मौज़े सामीन, दुआए मगफ़रत की गुजारिश की गई है मरहूमा तुगबाली बीबी आबिदा बुराही के लिए, जिनकी तदफीन आज दिन के 12 बजे मस्जिद प्लेजोंस रोज़ल में अदा की जाएगी। इनके लिए दुआए मगफ़रत की गुजारिश की गई है।

मौजे सामीन, मरने वालों के लिए, मरहूमीन के लिए सबसे बेहतर तोहफ़ा दुआए मगफ़िरत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कब्र में मदफून मुर्दे की मिसाल बिल्कुल उस शख्स की सी है जो दरिया में डूब रहा हो और मदद के लिए चीखो पुकार कर रहा हो। वो बेचारा इंतज़ार करता है कि माँ बाप या भाई बहन या किसी दोस्त आशना की तरफ से दुआए रहमत व मगफ़िरत का तोहफ़ा पहुँचे। जब किसी तरफ से उसको दुआ का तोहफ़ा पहुँचता है तो उसको दुनिया से ज़्यादा अजीज़ व महबूब होता है, और दुनिया में रहने बसने वालों की दुआओं की वजह से कब्र के मुर्दों को इतना अजीम सवाब अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है जिसकी मिसाल पहाड़ों से दी जा सकती है, और मुर्दों के लिए जिंदों का ख़ास हदिया उनके लिए दुआए मगफ़िरत है।

मौजूद सामीन, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। कातकुबोन की वाहिदा जियन, जी हाँ, कातकुबोन की वाहिदा जियन अपनी बहू तहसीन और अपने पोते अरियान के लिए दुआ कर रही हैं कि अल्लाह पाक इन दोनों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी और ढेरों खुशियां अता फरमाए, आमीन। इसके अलावा शबनम वशील, जी हाँ, शबनम वशील पुप्पो रुखसाना के लिए दुआए शफा की गुजारिश कर रही हैं। इसके अलावा नानी ताहिरा खुदादीन के लिए भी दुआए शफा की गुजारिश कर रही हैं और इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं नूर बख्स और जुमन फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए। और ये 10

से सबीना जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और मरहूम मोहम्मद फ़िगास किदागन गुजबाली दिलू खुदा खुदा बकस खुदा दीन पुताली और ननलाल फैमिली के तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश भी कर रही हैं। न्यूकोफ की फातिमा अपनी जी हाँ अपनी नुसहा फरीजात गुलाम हुसैन को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा जी हाँ कातकुबून की यास्मीन बेटियां सुरैया हाजरा निजार और अकीमी जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और उन तमाम लोगों के लिए दुआए शिफा की गुजारिश कर रहे हैं जो कि इस वक्त किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हैं। और रशीदा रुक्यों रेहाना साइला अपनी बहन लैला खुदा बकस के लिए ढेरों दुआएं और प्यार भेज रही हैं। कुरमाली और बंधु फैमिलीज़ जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और तमाम मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश भी कर रहे हैं।

मोहतरम सामेईन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत में किसी मर्द साले का दर्जा एकदम बुलंद कर दिया जाता है तो वो जन्नती बंदा पूछता है कि ऐ परवरदिगार, मेरे दर्जे और मर्तबे में ये तरक्की किस वजह से और कहाँ से हुई। जवाब मिलता है कि तेरे वास्ते तेरी फ़लाँ औलाद ने दुआए मगफिरत करने की वजह से। बहवाला मसनद अहमद शरीफ।

सामिन, एक और पैगाम मौसूल हुआ है नुसहा और फरी जात के लिए। फातिमा न्यू ग्रोव से बहुत सारी दुआएं और प्यार भेज रही हैं। आइए एक हदीस समात फरमाइए। हज़रत अबू दाऊद रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा आम मोमिनीनों मोमिनात के लिए हर रोज़ अल्लाह ताला से माफ़ी और मगफ़रत की दुआ करेगा, वो अल्लाह ताला के मकबूल बंदों में से हो जाएगा, जिनकी दुआएं कबूल होती हैं और जिनकी बरकत से दुनिया वालों को रिस्क मिलता है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ऐ अल्लाह तमाम मोमिनीन और मोमिनात और तमाम मुस्लिमीनों मुस्लिमात की बख्शिश फरमा, जो उनमें से ज़िंदा हों उनकी भी और जो उनमें से वफात पा गए हैं उनकी भी। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल रात 8:40 पर आपसे एक बार फिर महफिले शब के ज़रिए मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और तमाम सुनने वालों को एक बार जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़।

0: गम के।
1: दिन के 12 बजे हैं।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

सेवन रघुपति चायन शतयोजन शत शतयोजन शरधि योजन शर परिलंघन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमद भाजन दश मुख कंपन बड़वाकृत बड़ बड़वाकृत बड़ बाणल कृत बहुभस्मार्चन जयो

चलिए श्रोताओं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रेडियो मॉरिशस है, आपकी पसंद कार्यक्रम आपकी सेवा में। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आपकी पसंद कार्यक्रम, आपका ये रोजाना प्रोग्राम आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। फ़ोन नंबर वही है 4028085। हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो है 5251700। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। ये प्यारा सा गीत है जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए आप सभी श्रोताओं के नाम जो है ये प्यारा सा गीत आप सुन पाएंगे।

तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम हम चला रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे, और आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो है पोंफेया की रहने वाली है गीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ में है राकेश का जन्मदिन, तो राकेश को हम कहेंगे ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये गीत जो है मौसी मीला की तरफ से न्यू कोव की रहने वाली सभी शिव शंकर परिवार है, राम परिवार है, जुलिम परिवार है, तो बहुत ही प्यारा सा नज़ाना जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। जो बहुत ही प्यारा सा गीत जो है एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जो है हम भेज रहे हैं रेडियो के माध्यम से। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा जो है सालगिरह गीत हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए गीत की ओर, पॉपुलर गीत है कस्मे वाली फिल्म से लिया गया।

तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये अगला गीत फिल्म कसूर से लिया गया। ये गीत जाने वाला है हमारे साथ विश्वानी डुमन जी हैं, वाकवा से हैं आप। आपका ये मनपसंद गीत जाएगा आपकी बहनों के लिए। इंदिरा शारदा है, आपकी सहेलियां हैं नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता।

तो चलिए श्रोताओं, 2:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मनचाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम जारी रख रहे हैं। तो ये अगला गीत जो है हमारे साथ, जी हाँ, हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप मैसेजेस पे, हमें याद कर रही है। तो चलिए ये अगला गीत जो है हम चलाएंगे सुदेवी जी के लिए। वाक्वा की रहने वाली हैं आप, और ये अगला गीत जो है आपकी फरमाइश पे जाने वाला है त्रियोले की दीदी ललिता के लिए। कुशल परिवार है दीदी सुनीता, शोभा, देविना, बिंदु, लालोगा के दीदी माला है, जयश्री, अंबिका, जालू परिवार, बिकारी परिवार, रामरतन परिवार, रामगुलाम परिवार, रघुबा परिवार। तो चलिए इन लोगों के नाम जो है ये अगला गीत जो है जाने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है हम इस कार्यक्रम में शामिल कर रही है। तो गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

चलिए, हमारे साथ अनीता जी है, जुड़ी हुई है फीका फ्लाक से। श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है, तो इनकी फरमाइश पे जो है ये अगला गीत हम चलाएंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत है जो है, और ये गीत जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कुछ ही घड़ी में श्रोताओं, सुपहर के 3 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखने वाले हैं इसी चैनल पे। तो चलिए, हम एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो है हम चला रहे हैं इस कार्यक्रम में।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस के लिए एक अच्छी खबर, कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ है। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन देकर सिल्वर मेडल जीता है। उसने 3:32 में दौड़ पूरी की और ये इस सीजन का उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। दौड़ की शुरुआत से ही नोएमी अल्फोंस ने दूसरा स्थान बनाए रखा। गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स को गया। क्यूपिप के लायंस क्लब के सहयोग से 10 मॉरिशन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाजिद अली खान द्वारा सुब्रमण्यम भारती आई हॉस्पिटल में किए गए। उनके इस दौरे के तहत लगभग 20 ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। पोर्ट लुइस में रुइसो डुपुस पर स्थित ईआर कंपनी का पार्किंग स्थल तोड़ने के काम का अंतिम चरण कल सुबह पूरा किया गया। पूर्व न्यायाधीश भूषण दोमा द्वारा 2008 में नहरों के ऊपर निर्मित संरचनाओं को हटाने की सिफारिशों के बाद इस पार्किंग स्थल को तोड़ने का काम 2023 में शुरू किया गया था। ये सिफारिशें पोर्ट लुइस में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र संगठनों के पूर्ण निरस्त्रीकरण पर समझौता तय हो गया है। उनके अनुसार ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी, जिसके तहत डिसआर्ममेंट पूरा होने पर इसराइली सेना गजा से हटेगी। ट्रंप ने इसे शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि भविष्य में गजा का प्रशासन नई फिलिस्तीनी सरकार संभालेगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। अपर महात्मा गांधी रोड त्वा बुचिक त्रियोले में उनहत्तर साल के 69 years old श्री प्रदीप सिंह दीना सिंह जो प्रदीप नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ आज शाम पाँच बजे इनकी पत्नी श्रीमती समांथा दीना सिंह के मकान अपर महात्मा गांधी रोड थ्वा बुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमिनी थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBCRadio.TV.
3: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: चलिए आपकी पसंद का कार्यक्रम श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी पसंद कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो है हम आपको इशारा कर दें, जी हाँ हम आपको इशारा कर दें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। आइए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। सेंट क्रॉ के रहने वाले निवासियों को जिनमें है पियटों पेयरावाल, लुआजो अले पेयरावाल, इजोडो बुके, कनाल बाचुस, कोकोटरी, जुक्रे, अबेकोम्बी, सेंट मारी, उदीन लेन, रेजिडेंस, ब्रिकेटरी और पंपलेमूसेस, जी हाँ रूट दे पंपलेमूसेस के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड अपने ग्राहकों को अति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ अभी आप सेंट्रल एक्सप्रेस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम आपकी पसंद है, इसे हम चला रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए हम आपको इशारा कर दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है वो है 4028085, हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700005। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ जो है इस समय काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं और विद्या जी है यूनियन पार्क की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो चलिए उनकी फरमाइश पे ये अगला गीत जो है, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम श्रोताओं के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चलाने वाले हैं। और ये गीत जो है विद्या जी जो है अपने समस्त परिवारों के नाम जो है ये गीत चलाना चाहती है और उनकी बहनें हैं सती है, सुरेखा है, वेदना है, विमला, प्रीति उनकी चाची है कुमारी। और यही गीत जो है राधा जी जो है पिछली वर्ष सैंपिया की रहने वाली है, हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। तो उनके नाम भी जो है ये अगला गीत हम कर रही है। माँ गायत्री जी है नुवेल फ्रांस की रहने वाली, उनके बेटे हैं अजय उनके नाम। साथ में है गीता जी पोंफिया की रहने वाली, आदित्य अरब, जानवी तनिश है उनके पति है रोहित जी। तो इन सभी लोगों के लिए जो है ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं। तो श्रोताओ ये कार्यक्रम जो है हम जारी रख रहे हैं शाम के 4 बजे तक। तो एक से बढ़कर एक गीत आपके लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो चलिए हम आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रख रहे हैं और ये प्यारा सा गीत जो है हम चला रहे हैं।
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में ये अगला गीत जो है जाने वाला है हमारे साथ। इस समय हमारे साथ है जो है किश जी कतरबोन की रहने वाली, साथ में उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा हैं, साथ में उनके दामाद है एल्विन। उनके सभी परिवारों के लिए गुडलैंड्स की ओर हम जाएंगे। त्रिवेणी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पति हैं आनंद जी और उनके पति हैं अनिल जी और उनके सभी परिवारों के लिए मोहन परिवार है। वैसे केश जी के पति है आनंद जी जो कि कथोबोन की रहने वाली है। माया सुमारू जी है कथोबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्यदेव जी। उनके सभी बच्चों के लिए कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है। और ये प्यारा सा गीत जो है हमारे साथ गांगोप की सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए इन सभी लोगों के लिए ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। फिल्म का नाम है सुर और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत हम सुन सकेंगे।

चलिए अगला गीत श्रोताओं हम चलाने वाले हैं प्रेमिला से गुलाम जी, आप जो है हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी बहन की याद में कृष्णावती जी रामजनी उनकी याद में ये अगला गीत हम चलाएंगे। रिश्वा की रागिनी की तरफ से साथ में स्वराज सुदेश, तो इन सभी लोगों की तरफ से ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ शोभा जी हैं पॉम्पे मुसेस की रहने वाली। ये गीत जाएगा, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म डग का ये सदाबहार गीत हम चलाएंगे इस कार्यक्रम में।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
1: तो चलिए अगला गीत जो है मुंजी है कोयो की रहने वाली हमारे साथ जुड़ी हुई है आज जो है उनकी नातिन निया का जन्मदिन है तो ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी प्यारी सी प्रिंसेस के लिए ढेर सारा प्यार आशीर्वाद है दादा चांद की तरफ से दादी है मुन उनकी बड़ी दादी है परबोत साथ में है फूफा फूफू चाचा चाची साथ में है चाचा अभिषेक चाची जिंशी साथ में है नीलम जी हाँ उनकी मामा है नीलम पापा है अविनाश साथ में है आविशा और निक्षु है उनका छोटा सा भाई अश्ले है तो इन सभी परिवारों की तरफ से समस्त फोकियाचन परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार जो है हम रेडियो के माध्यम से निया के नाम जो है हम भेज रहे हैं तो चलिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो है उनके नाम हम कर रहे हैं फिल्म का नाम है फर्ज तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे

हमारे साथ निन्लाल जी है वाकवा की रहने के रहने वाले, तो ये अगला गीत उनके नाम हम करने वाले हैं। साथ में ये गीत जो है हमारे साथ जो है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये अगला गीत समस्त बंधु परिवार जो है त्रियोले के रहने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

अंतिम नजर आ रही हाना जी है फिनिक्स की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। मोहम्मद रफीक का गाया हुआ गीत हम चलाएंगे। उदय जी हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए ये अगला गीत जो है आपकी पसंद पे हम चला रहे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं। तो चलिए श्रोताओं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर हम आपके नाम जो है शामिल नहीं कर पाए इस प्रोग्राम में

पूरा हो चला साथ निभाने के लिए। धन्यवाद आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस के लिए धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर। निसार के साथ आप सुन सकेंगे गुलदस्ता उर्दू कार्यक्रम। तो हमारी तरफ से नमस्कार आप सभी को।

गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादिनो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मेरे अजीज सामईन, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं, आपकी समागतों की नज़र हैं गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन की वो बज़्म जहां हर हफ्ते हम उर्दू की खुशबू भरी दुनिया से मुख्तलिफ रंगों के फूल चुनकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तमाम शायकीन उर्दू का हम नहायत मोहब्बत और अकीदत के साथ इस्तकबाल करते हैं। अदब सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, कौमों की याददाश्त भी होता है। बड़े अदीब सिर्फ किताबें नहीं लिखते, वो ज़मानों की सोच तहजीब और एहसास को लफ्ज़ों में महफूज कर जाते हैं। आज की शाम हम जिस अजीम अदीब का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो उर्दू अदब की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसके बग़ैर बर्रे सग़ीर की अदबी तारीख अधूरी महसूस होती है। उर्दू अदब के

मुमताज़ अफसाना निगार, नावल निगार, हकीकत निगार, ये नाम है मुंशी प्रेमचंद का। आज 31 जुलाई है और यही वो दिन है जब प्रेमचंद इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज का गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम मुंशी प्रेमचंद के यौम पैदाइश पर मंसूब है। आज हम उस अहद को महसूस करेंगे जिसे प्रेमचंद ने अपने कलम की नोक पर जिंदा किया। उनके किरदारों से मुलाकात करेंगे, उनकी कहानियों के दरीचों में झांकेंगे और जानेंगे कि वो कौन सा जादू था जिसने एक सदी गुजर जाने के बावजूद उनके लफ्जों को जावेदा बना दिया। प्रेमचंद वो अदीब हैं जिन्होंने अदब को मोहल्लों, खेतों, गलियों, कर्ज में दबे किसानों, बिखरते खानदानों और समाजी नाइंसाफियों के बीच ला खड़ा किया। उन्होंने ये साबित किया कि अदब सिर्फ खूबसूरत जुमले बनाने का नाम नहीं बल्कि इंसान के दुख दर्द को जबान देने का नाम भी है। वो अपने अहद के सिर्फ एक बड़े अफसाना निगार या नावल निगार नहीं थे बल्कि आम आदमी के तर्जुमान थे। उनका कलम गरीब, महरूम, कमज़ोर और नज़रअंदाज इंसान के साथ खरा दिखाई देता है। यही वजह है कि प्रेमचंद को सिर्फ एक अदीब नहीं बल्कि एक एहसास शख्सियत समझा जाता है। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। 31 जुलाई सन 1880 को उनकी पैदाइश बनारस में हुई। उनका बचपन किसी आसूदा और आरामदेह घराने में नहीं गुजरा। घर के हालात सादा थे, मुआशी तंगी थी और बचपन ही में जिंदगी ने उन्हें दुख, महरूमी और जिम्मेदारी का मतलब समझा दिया था। प्रेमचंद ने बीए का इम्तिहान अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किया। वो पहले अपना कलमी नाम नवाब राय इस्तेमाल करते थे, वो नाम जो उनके चचा ने रखा था, मगर अफसानवी

0: करते थे, वो नाम जो उनके चचा ने रखा था, मगर अफसानवी।
1: देखिए, प्रेमचंद ने कितनी कम उम्र पाई, 1880 में पैदा हुए, 1936 में चल बसे, कुल 56 बरस, और 36 से लेकर के अब तक आप देखिए तो 56 बरस से कितना लंबा अरसा गुजर चुका, लेकिन प्रेमचंद को हम हर साल याद करते हैं। और 31 जुलाई तो जाहिर है कि उनका यौम पैदाइश है। प्रेमचंद बहुत ही हमारे लिए आज भी मानी बहुत रखते हैं। एक तो एक शख्स जो ज़िंदगी भर एक ख़राब सेहत का शिकार रहा, जो गुर्बत का शिकार रहा, जो स्ट्रगल करता रहा, जद्दोजहद करता रहा, यानी दो वक्त की रोटी के लिए भी प्रेमचंद को मेहनत करनी पड़ती थी। आज प्रेमचंद के नाम से सोचिए कितने इदारे कायम हो गए, खुद उनके बच्चों ने बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारी प्रेमचंद की वजह से। तो प्रेमचंद ने जो अपना एक पूरा एक, लेकिन ख़ुद जो प्रेमचंद ने ज़िंदगी गुजारी वो आजमाइशों से भरी हुई थी। और लेकिन इस सब के बावजूद आप ये देखिए कि उस आदमी ने नौकरी की, प्रेमचंद को दिलचस्पी थी अपने मुल्क से, अपनी कौम से। तो प्रेमचंद की आइडेंटिटी भी हरचंद की वो बहुत इंडियन है, अपने पूरे अप्रोच में हिंदुस्तानी है। उनकी ज़बान, उनका सोचने का तरीक़ा, उनका जो पूरा एक कहना चाहिए कि उनका जो एक स्केल ऑफ वैल्यूज़ जो कुछ भी रहा है उस पर हिंदुस्तान की छाप बहुत गहरी है। लेकिन इस सब के बावजूद प्रेमचंद के यहाँ वो महदूद नहीं है अपनी इस ये जो आइडेंटिटी है उनकी, मकामी आइडेंटिटी, स्थानीय जो उनकी पहचान थी, उसके पाबंद वो नहीं है। प्रेमचंद ने हमेशा इस बात की कोशिश की कि ज़िंदगी के उन मसलों को अपना मौजू बनाएं, उन पर कहानियाँ लिखें जो ज़ाहिर है कि सारी दुनिया के इंसानों को जिनकी मदद से समझा जा सकता है। अब सोचिए कि एक शख्स जिसकी सेहत ख़राब थी, जिसने कुल 56 बरस की उम्र पाई, जिसके माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, जो बीमार बहुत रहा, ये सब रहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी, ड्रामे लिखे, मजामीन लिखे, नावल लिखे एक दर्जन से ज़्यादा। तो कितना काम किया प्रेमचंद ने, और प्रेमचंद ने जो काम किया है उसमें आप देखें तो उनके यहाँ जो सबसे बड़ी बात जो है उनके यहाँ वो उनकी इंसान दोस्ती है। और मेरा ख्याल है कि आज के ज़माने में किसी भी अदीब की पहचान जो होती है वो इसी बात से होती है, इंसान दोस्ती का उनसुर कितना नुमाया है। तो प्रेमचंद के यहाँ ये ख़ूबी है कि प्रेमचंद ने इन चीज़ों को अपना मौजू बनाया। प्रेमचंद के यहाँ मामला है कि प्रेमचंद बैक वक्त हमारे यहाँ नेशनल एक आइडेंटिटी भी है, लेकिन उनकी आइडेंटिटी इंटरनेशनल भी है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो छोटे छोटे जो ये तासुबात होते हैं, प्रिजुडिसेस होती हैं, हमारी तरजीहात होती हैं छोटी छोटी, उनके पाबंद रहने वाले वो नहीं थे। प्रेमचंद ने इंसानों से मोहब्बत की, ख़ासतौर पर गरीब इंसानों से, वो जो आम इंसान है, आम इंसान की कहानियाँ, उससे उन्होंने मोहब्बत की, उसके दुख दर्द को उन्होंने समझने की कोशिश की और उसको अपना विषय बना करके उन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी और अपने नावल लिखे। तो प्रेमचंद जब तक लोगों की दिलचस्पी प्रेमचंद में रहेगी उस तक तक सच्ची बात यह है कि हिंदुस्तान का वो पहलू जो है जिसमें एक तरह की लचक है, एक तरह का फैलाव है, ये सारी चीज़ें वो उसकी लोग दाद देते रहेंगे। तो प्रेमचंद बहरहाल एक हमारा एक कहना चाहिए कि उर्दू फिक्शन का सबसे बड़ा नाम तो प्रेमचंद है। अगर प्रेमचंद न होते तो बाद में बेदी, मंटो, इस्मत, कृष्णचंद्र ये कोई ना होता। सच्ची बात है कि इनके बाबा तो एक तरीके से प्रेमचंद हैं। गरचे 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद की पूरी जो कहानी है वो उस पर ज़ाहिर है कि हावी जो नाम दिखाई देता है वो मंटो का है, और मंटो बहुत पॉपुलर है, मंटो के ट्रांसलेशन पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन मंटो के अलावा जिस शख्स के ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा हुए वो प्रेमचंद हैं, और प्रेमचंद से दिलचस्पी अब भी लोगों की ख़त्म नहीं हुई।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: मुअज़्ज़ज़ सामईन, गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम में निसार अख्तर एक बार फिर आप लोगों का इस्तकबाल करता है। आज की ख़ास बज़्म मुंशी प्रेमचंद के यौम पैदाइश पर मंसूब है। प्रेमचंद ने अदब की दुनिया में ऐसे बेशुमार शाहकार अफसाने तख्लीक किए जो ज़िंदगी के तलख हकाइक, इंसानी जज्बात और मुआशरती मसाइल की नहायत मुयसर अकासी करते हैं। उनके अफसानों की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन पर मुतादिद फिल्में और ड्रामे भी पेश किए गए। उन फिल्मों में से एक ऐसा लाजवाब अफसाना ईदगाह भी है जिसने नस्ल दर नस्ल

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: 819 kilohertz, this is Radio Mauritius। घड़ी मिला लीजिए समीन, 4:01 हो रहे हैं। यहाँ पर बज़्म में उर्दू का आगाज़ हो रहा है जिसमें हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

मोहतरम मोहतरम सामीन, इस बज़्म नूर में हम आपका दिल की अतः गहराइयों से खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है बफ़ज़्ल रब्बे कायनात और ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना साहिब मोहतर पसीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े आप खैर आफ़ियत से होंगे। जुम्मे का मुबारक दिन है, सैदुल अय्याम कुबलियत वाला दिन, आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सफ़रुलमुहर्रम सफ़रुलमुज़फ़्फ़र की 16वीं तारीख और आज 31 जुलाई 2026। उम्मीद है अल्लाह तबारक व ताला की नियमतों से आप महसूस हो रहे होंगे और आप तमाम लोगों को एक बार फिर यौम जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जो

0: आइए एक सोच एक फिक्र से इस बज्म का आगाज करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मत कर गुरूर कभी अपने आप पर, ए इंसान, ए इंसान अपने आप पर गुरूर कभी मत कर, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने तेरे जैसे न जाने कितने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिए। आइए सामीन बाज़ाब्ता मजलिस का आगाज़ तिलावत कलमा पाक से करते हैं। बग़ौर अदब समात करके अपने क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नज़रों में वो इंसान चमकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान मजीद व फुरक़ान हमीद से ज़्यादा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा पढ़ने ज़्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस साहब से मुखातिब हैं, लाइव टेलीकास्ट 4:20 हो रहे हैं। सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए किसी की इज़्ज़त करना इस्लाम की नहायत आला सिफात में से है, शामिल है। जब इंसान किसी की ताज़ीम, किसी का अदब एहतराम और इज़्ज़त के माल मनसब या दुनियावी मरतबे की वजह से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी के लिए करता है तो ये अमल इबादत बन जाता है। आज जुमे के मुबारक मौके पर जमा मस्जिद के ख़तीब आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकतुल्लाह ने इसी मौजू का इंतखाब किया, यानी अल्लाह के लिए इज़्ज़त, रिस्पेक्ट फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह तबारक व ताला। पेश खिदमत है ये ईमान अफरोज़ बयान।
1: ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى خاتم الأنبياء افتخار الأنبياء ومختار الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر میں نے آج کے جمعۃ المبارک کے لیے جو ٹاپک سلیکٹ کیا وہ ہے الادب للہ دا ریسپیکٹ فور دا سیک آف اللہ ریسپیکٹ فور دا پلیجر آف اللہ اللہ کے لیے ادب اور اللہ کی رضا پانے کے لیے ادب ادب رسپیکٹ اللہ کا انبیاء کا صدیقین کا شہداء صالحین کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آپ کے آل و اصحاب کا ادب علماء اولیاء اہل اللہ کا ادب اور اس سوسائٹی میں جتنے رسپیکٹڈ محترم لوگ ہیں ان سب کا ادب اور ماں باپ کا ادب۔ ابھی اذان ہوئی روزانہ دن میں

पांच मर्तबा अजान दी जाती है। अजान में बहुत से असबाब हैं, हमारे लिए, आपके लिए और पूरी उम्मा के लिए। उनमें से एक अहम सबक और इम्पोर्टेंट लेसन अजान का अदब है। अजान में एक तो अजान का अपना अदब है कि जब अजान हो तो सारे काम छोड़ दे और अजान का जवाब दे जुबान से, और फिर जब नमाज जमात का टाइम आए तो फिर अजान का प्रैक्टिकली जवाब दे। वो प्रैक्टिकली आंसर आमली जवाब ये है कि सारे काम छोड़ दें और मस्जिद आ जाए और बा जमात नमाज पढ़े। एक तो वर्बली है उसका जवाब और आंसर फकत जुबान से, और एक प्रैक्टिकली है अपने अमल से। तो अजान का वो जवाब भी देना चाहिए और ये जवाब भी देना चाहिए। ये फकत अजान नहीं है, ये इस्लाम के तालीमात का खुलासा, द समरी ऑफ द इस्लामिक टीचिंग्स। तमाम इस्लाम की तालीमात को अगर समराइज करें तो उससे अजान या अजान के कलिमात बनते हैं। अजान में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए वो अदब है, अजान का अदब। और अजान में खास तौर पर दो अदब है, स्पेशली खास दो अदब है। एक अदब अल्लाह का है और एक उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। खुदा न खास्ता अजान की बेअदबी, ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी का बायस न हो जाए। और ये भी है कि अजान की बेअदबी अल्लाह रसूल की बेअदबी को मुस्तलज़िम है। तो अजान में और अजान का अदब भी इसलिए कि अजान में अल्लाह का हसीन तस्किरा है और उसके हबीब का तस्किरा जमील, और यही फिक्र रजा अफकार रजा की रूह अदब है। तालीमात रजा की रूह अदब है। और जब रूह निकाल दी जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है। सो अगर अदब निकाल दिया जाए तो फिर पूरा निजाम, पूरा दीन वो मुर्दा हो जाए। उसकी रूह, उसकी जान, द स्पिरिट ऑफ द रिलीजन, रूह है दीन, वो अदब है। द स्पिरिट ऑफ द रिलीजन इज रिस्पेक्ट। पूरे दीन की रूह और पूरी दीन की जान वो अदब है।

आज ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं जिससे मालूम होता है कि अफसोस अब हम में अजान का अदब भी बाकी ना रहा। काश हम अजान की इंपॉर्टेंस को जान जाएं कि अजान है क्या, बड़ा अजीम अदब, बड़ा अजीम अदब असलाफ करते थे। अजान जब अजान होती तो उनका कलर टोटली चेंज हो जाता, तगैर लौनुहुम, उनका रंग बदल जाता, उनकी कैफियत अलग होती, वो दुनिया और माफिया से बेगाना हो जाते हैं। और अजान का वो नूर उन उरफा औलिया के चेहरों पे नजर आता, इसलिए कि अजान का नूर है जो अजान देने वाले को भी अता किया जाता है और अजान सुनने वाले को भी अता किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन है, अजान देने वाले के लिए भी और सुनने वाले भी, और वो अदब है कि अजान देने वाला अदब में डूब कर अजान दे और सुनने वाले अदब के समंदर में गोता जन होकर जवाब दे अजान सुने, फिर उसे भी नूर नसीब होता और इन्हें भी नूर नसीब होता। सहाबे किराम, ताबईन, औलिया अहलुल्लाह जब अजान देते और अजान से फारिग हो जाते तो अजान का नूर, उसकी रोशनी उनके चेहरों पर नमाया। और याद रखें कि अजान की बेअदबी और डिसरिस्पेक्ट से इंसान का दीन तो तबाह होता ही है, उसकी दुनिया भी तबाह हो जाती है, वो बर्बाद हो जाता है, वो खसरत दुनिया वाला है, दुनिया में भी खसारा और आखिरत में भी खसारा। अल्लाह रसूल की बेअदबी डिसरिस्पेक्ट से इंसान फिर न इधर कर रहता है न उधर कर रहता है, न खुदा ही मिला न विसाले से, न इधर के रहे न उधर के रहे। इसलिए अपनी जुबान पर काबू, कंट्रोल रखे, हमारी जुबानें आज काबू से बाहर हो गई, जो मन में आता है बोलते चले जाते हैं और ये नहीं जानते कि एक बात ऐसी हो सकती है कि जिससे आप ईमान के दायरे से निकल सकते हैं। इसलिए केयरफुल होकर, मोहतात होकर बोलना है। बारगाह उलूहियत और बारगाह रिसालत ये अदब के मुतकाजी हैं, इनकी पहली डिमांड वो अदब है, इनकी बेसिक डिमांड वो रिस्पेक्ट है। इसलिए अजान जब हो जाए तो सारे काम छोड़कर जवाब दे, और जब जब जमात का टाइम हो जाए तो सारे काम छोड़कर फिर अमली और प्रैक्टिकली जवाब दे। तफसीर लुबाब ताबीर फी मानी तंजील में वॉल्यूम 2 और पेज नंबर 57

हिफाजत फरमाने वाला है, अपने महबूब के मुकाम का तहफ्फुज फरमाने वाला है। अब आपने अंजाम सुना, अंजाम क्या? उसके पास तो ईमान पहले से न था, ईमान से तो पहले से महरूम था, इन आखिरत तो उसकी वैसी ही तबाह थी। लेकिन अब इस बेअदबी से, इस गुस्ताखी से वो दुनिया भी उसकी तबाह हो गई, दुनिया उजड़ गई, दुनिया लुट गई। उसके पास ना उसका मकान था, न उसके बीवी बच्चे रहे, न वो खुद रहा। आज मैं आपको बड़ा आसान नुस्खा बता रहा हूं, ये घरों में जो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं और दिन ब दिन तलाक बढ़ती जा रही है, मां बाप में, औलाद में, शौहर और बीवी में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में मोहब्बत नहीं, दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। उसका आसान नुस्खा यह है कि अजान, अजान का जवाब दें, और प्रैक्टिकली जवाब भी दें। जब अजान हो जाए तो सारे काम छोड़कर मस्जिद आ जाए। ज्यादा टाइम नहीं, मैं एक हफ्ते, 1 वीक का टाइम दे रहा हूं। आपके घरों में एक सुकून आएगा, एक पीस आएगा, एक चेंज होगा, एक तब्दीली होगी, मोहब्बतों में इजाफा होगा। हर शख्स किसी न किसी काम के लिए वजीफा मांगता है, सबसे बड़ा वजीफा, सबसे बड़ा वजीफा अजान है, और उसका जुबानी और अमली जवाब, अमली जवाब। यह अलग बात है कि सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुअज़्ज़िरीन के इफ्तिखार थे, जो मुअज़्ज़िरीन के मुख्तार थे, जो उनके वक़ार थे, उनकी अजान और फिर आशिक की अजान में फर्क अलग है। अजानें बाकी हैं लेकिन वो सोज़ो गुदाज बाकी नहीं है। इसलिए इमाम गज़ाली ने फरमाया कि मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, मस्जिद मरसिया ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। और फरमाया रह गया फलसफा तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अजान सोजे बिलाली न रही। तो अजान अलग है, अजान आज है, लेकिन सोजे बिलाली नहीं है। आला हजरत उसी फलसफे गजाली आपको बुला रहे हैं, उसी सोजे बिलाली आपको बुला रहे हैं, उस इश्क की कैफियत की तरफ आपको बुला रहे हैं। जब अहले ईमान किसी इलाके में जाके फकत अजान देते तो अजान सुनकर बेपनाह लोग फकत अजान सुनने से मुसलमान हो जाते हैं। इसलिए अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए, अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद व मा अलैना।

कंपटीशन यानी मुकाबला कुरान खानी का अहतमाम किया जा रहा है। इसकी पहली प्रिलिमिनरी इंशाल्लाह आज आप देख सकेंगे MBC 9 पर 8:30 बजे, और इसमें आप 9 कुर्रा हुफाज़ को आप समाप्त कर सकेंगे, और उसके फौरन बाद आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पर मुश्तमिल उर्स मुबारका, उर्स आला हज़रत आप देख सकेंगे जो न्यू खोव के फैज़ रज़ा मस्जिद में इनेकाद पज़ीर हुआ था। और इसके अलावा ये भी समात कीजिए, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि आइंदा इम्तिहानात यानी कबल इब्तदाई ता अदीब कामिल के इम्तिहानात के लिए कल 1 अगस्त ता 5 सितंबर तक फॉर्म्स नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट प्लानवेट में भरे जा रहे हैं, या फिर अपने असातिज़ा से आप राबता कायम कर सकते हैं। और इसके लिए नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट में यानी कि हफ्ते में मंडे से फ्राइडे तक शाम 3 से 5 बजे और बरोज़ शनिचर सैटरडे को 9 से 12 बजे आप जो उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेंगे उनसे दरख्वास्त है कि अपना फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके लिए ओरिजिनल और फोटोकॉपीज चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्टूडेंट पास या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और अपने प्रीवियस रिजल्ट्स आपको लाने हैं। तो लिहाजा और ज़्यादा मालूमात के लिए आप इन फ़ोन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं 2916872 या 5751-5020। ये रहे चंद ऐलानात, आइए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़े गए खुतबे की सदामंदी समाअत कीजिए, और उसके फौरन बाद हम आपसे फिर मिलते हैं।

सामीन मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से अभी खुतबे की सदाबंदी समाप्त कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने मुसलमानों के एक दूसरे के एहतराम यानी अदब एहतराम इज़्ज़त बुज़ुर्गों की तौक़ीर छोटों पर शफ़क़त और अहले इल्म अहले तक़वा की कदर करने की तलकीन फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का फरमान आलीशान है, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों की इज्जत न करे। इससे मालूम होता है कि इज्जत व एहतराम ईमान की अलामत और हुस्न अखलाक का अहम हिस्सा है।

सामीन, अल्लाह के लिए इज्जत करने का मतलब यह है कि इंसान किसी से हुस्न सलूक इस उम्मीद, इस तवक्के पर न करे कि बदले में उसे कोई फ़ायदा पहुँचे, उसकी तारीफ हो या कोई मकाम हासिल हो, बल्कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनूदी हासिल होना हो। ऐसे खालिस जज्बे से दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, नफ़रतें ख़त्म होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और आखिर में मुआशरे में क़ुव्वत, अमन और बाहमी एतमाद, इत्तेहाद फ़रोग़ पाता है।

Mauritius पर, Mauritius पर, Radio Mauritius पर. घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त शाम की ठीक 5 बजे हैं. ये रेडियो मॉरिशस का बहुत ही प्यारा सा प्रसारण और मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आपका साथ देने के लिए गीत और गजल के आज की इस हसीन शाम में. आशा करते हैं आप सभी तरोताजा होंगे, मजे से होंगे और बिल्कुल इस ब्यूटीफुल कार्यक्रम के साथ दिल से साथ हमारा देंगे, जहां पर कुछ चंद गजलों के साथ आज की ये शाम हम सजाने जा रहे हैं. और बिल्कुल अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा और मोहब्बत के सफर में गजलों के कुछ अल्फाजों के साथ, कुछ शायरियों के साथ. दिल के इस एहसास को हम बयां करते हैं. दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ लफ्जों की मोहताज नहीं होती, ये वो एहसास है कि खामोशी में भी दिख जाए कहीं. कभी कभी हम कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते, बस इतना महसूस करना चाहते हैं कि कोई हमारे पास हो, कोई हमारे साथ हो. पर जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब कहां, जब कहीं अपनों का साथ छूट जाता है. कुछ नाराजगियां दिल में समेटे हुए, जिंदगी के उस कड़वे एहसास को हम जीते हैं. आइए आज के इस हसीन शाम की हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी गजल के साथ. और इस हसीन गजल को गाया है जगजीत सिंह साहब और साथ दिया है चित्रा सिंह ने.

भटक गए हमराहों में, भटक गए हमराहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था, कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था, हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था।

लहरों में डूबते रहे दरिया नहीं मिला, उससे बिछड़ के फिर कोई वैसा नहीं मिला। कुछ लोग थोड़ी देर तो अच्छे लगते हैं, मगर हम जिसके हो सकें कोई ऐसा नहीं मिला। वो भी बहुत अकेला है शायद मेरी तरह, उसको भी कोई चाहने वाला नहीं मिला। दो चार दिन कितने सुकून से गुजरे, दो चार दिन कितने सुकून से गुजर गए, सब खैरियत रही, कोई अपना नहीं मिला।

आशा भोसले की आवाज में रखी हुई क्या लाजवाब गजल, मखमली आवाज और गीत और गजल का ये कारवां, ये सफर हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 5:22 हो चुके हैं और लाजवाब गीतों के साथ हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोता इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। और बशीर साहब की लिखी हुई गजल, क्या लाजवाब अल्फाज। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो कभी भीग जाया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर, दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से यूं मत बहाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों ही बातों में कभी कभी मुस्कुराया कर, धूप मायूस लौट जाती है, छत पे किसी बहाने तो कभी आया कर, कौन कहता है कि दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम कभी कभी हाथ तो मिलाया कर।

पंकज उदास साहब की आवाज में रखी हुई ये रही जो पेशकश हमने अभी प्रस्तुत की, और इसी के साथ गीत और गजल का ये कारवां धीरे धीरे करते हुए शाम को और हसीन और जवां बनाते हुए मलाल है, मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग यहाँ, बस अपने ही वास्ते ही फिक्रमंद हैं सब लोग यहाँ, किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है, परों को काट दिया है उड़ान से पहले, ये खौफ हिज्र है शौक विसाल थोड़ी है, मज़ा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहे, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब जवाल थोड़ी है।

है ज़िंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया। जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। जो महसूस ही नहीं करते ज़रूरत मेरी, मैंने उनका साथ निभाना छोड़ दिया। जो चाहते हैं रहना बस नाराज मुझसे, मैंने उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, मैंने बेवजह बंदिशें लगाना छोड़ दिया।

0: झूठा सा छोड़ गया कोई आधा पीकर, मैं आधा मर गया आधा जीकर, कोई जख्म नए दे गया पुराने सीकर, मैं सहता ही रह गया दर्द को पीकर, थे न चालाक वो जो गए हमें लूट कर, सब गमाया हमने मिजाजे रिंद में होकर, बना गए मैकश हमें अपने होठों से पिलाकर, अब उनकी यादें भी मिटती है पैमाना चूम कर, कुछ यूं गए वो जुबाएं उल्फत सिखा कर, अब हाल कहते हैं अपना तो शेरों से लिख कर। दोस्तों आज की ये हसीन शाम को बस यही इस आखिरी नज्म के साथ समाप्त करेंगे। आप सभी ने तहे दिल से हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये हसीन शाम
1: कुछ ऐसे जुदा
0: उन गीतों की तरह बस यूं ही बहती जाए। दोस्तों अभी थोड़ी ही देर में आप जुड़ पाएंगे समाचारों के साथ, और इसी के साथ गीत और गजल की ये हसीन शाम को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप सभी ने हमारा साथ दिया, तहे दिल से शुक्रिया, और फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही कुछ ऐसे हसीन सफ़र में। इसी के साथ रत्ना को

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, सायंकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन देकर सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रीय सभा में आज फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल पर बहसें जारी रखी जा रही हैं। 12 सांसद इस पर अपने विचार दे रहे हैं। मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को

0: सेशल्स के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच साझा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की समुद्री जोन का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, भारत में एंटी पेपर लीक बिल कल राज्यसभा में पारित किया गया। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत। शुरुआत करते हैं मॉरिशस के लिए इस अच्छी खबर के साथ। कॉमनवेल्थ खेलों में नोएमी अल्फोंस की बदौलत मॉरिशस को एक दूसरा मेडल हासिल हुआ है। 1500 T54 की दौड़ में मॉरिशन पारा एथलीट ने बेहतरीन प्रदर्शन देकर सिल्वर मेडल जीता है। उसने 3:32 में दौड़ पूरी की और ये इस सीजन का उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा। दौड़ की शुरुआत से ही नोएमी अल्फोंस ने दूसरा स्थान बनाए रखा था। गोल्ड मेडल स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स को गया।
1: नोएमी अल्फोंस के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। बुधवार की निराशा अब पीछे छूट चुकी है। आज उनके चेहरे पर अपने प्रदर्शन को लेकर संतोष और गर्व साफ दिखाई दिया। फाइनल में मॉरिशन नोएमी अल्फोंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता का पूरा परिचय दिया। शुरुआत से ही प्रबल दावेदार स्कॉटलैंड की मेलानी वुड्स के पीछे रहते हुए नोएमी अल्फोंस ने उनकी तेज रफ्तार का मजबूती से सामना किया। पूरी कोशिश के बावजूद वो मेलानी वुड्स को पीछे नहीं छोड़ सकी। वुड्स ने 3:32.20 के साथ स्वर्ण पदक जीता। वहीं नोएमी अल्फोंस ने 3:32.98 में दौड़ पूरी कर रजत पदक अपने नाम किया। ये सीजन का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सिल्वर मेडल से बढ़कर ये उपलब्धि ऐतिहासिक भी है। नोएमी अल्फोंस कॉमनवेल्थ खेलों के इतिहास में पदक जीतने वाली मॉरिशस की पहली पारा एथलीट है।
2: Avoir essayé de me préparer pendant un an et demi, deux ans, parce que pour sortir un fait 100 mètres, champion du monde, 15 ans pour une médaille ici, c'est moins l'exploit.
1: ये कॉमनवेल्थ खेलों में मॉरिशन टीम का दूसरा पदक है। इससे पहले मुक्केबाज मेविन क्लेयर ने बॉक्सिंग में देश के लिए पदक सुनिश्चित किया।
0: ग्लासगो में नोएमी अल्फोंस और बांदी पेरिन का सफर जारी है। दोनों 400 मीटर T54 की फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए हैं। राज्यसभा में आज फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल पर बहसें जारी रखी जा रही हैं। 12 सांसद इस पर अपने विचार दे रहे हैं। विपक्ष नेता ने सबसे पहले अपना मत दिया। उन्होंने मुख्य रूप से पेंशन सुधार और बैंकिंग एक्ट में लाए गए सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया। जोले जोंगो ने इन विधेयकों में शामिल दो प्रावधानों का स्वागत किया है। साथ ही श्रम मंत्री गजाउतीम और विपक्ष के सांसद अद्रियन जुवाल ने भी अपने विचार दिए। तीनों सांसदों को सुनते हैं।
3: Ces deux textes de loi scelleront de manière irréversible le modèle économique, politique et social de notre pays. Nous nous trouvons de toute évidence cet après-midi en tournant de notre histoire. Madame la Présidente, l'amendement proposé à la section 12-13C traite l'ajustement de la pension au coût de la vie par la formule « as may be prescribed ». Ne nous y trompons pas. Cette formulation lève toute obligation légale pour le gouvernement d'indexer les pensions sur l'inflation. Le pouvoir s'octroie ainsi la liberté discrétionnaire de geler le montant de ses prestations. C'est un amendement

0: qualifierait d'une gravité absolue, pour ne pas dire sinistre, Madame la Présidente. And in this country, the social contract has always been clear. You work hard, you contribute, and you retire with dignity at the age of 60.
1: Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit parmi les fonctionnaires, les travailleurs ont droit, après un certain nombre d'années, d'aller à la retraite avant l'âge de 65 ans. Et ils touchent un lump sum moins et une mensualité moins. Donc c'est le même principe qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui à la pension universelle. Si vous voulez partir à l'âge de 65 ans, vous avez un full pension. Si vous voulez partir avant l'âge de 65 ans, c'est réduit dépendant de quand vous décidez de prendre votre pension. Tous les ans, il y a une compensation salariale pour compenser la hausse du coût de la vie des travailleurs. Okay? De la même manière, la pension va être réévaluée tous les ans. Et la politique de ce gouvernement, contrairement à ce que a voulu faire croire le leader de l'opposition, la politique de ce gouvernement a toujours été d'augmenter la pension chaque année pour prendre en considération l'augmentation des coûts de la vie.
2: La plus grande priorité des Mauriciens, c'est le coût grandissant du coût de la vie de leurs dépenses ménagères. Et on aurait donc espéré que finalement le gouvernement tienne sa parole sur l'importation parallèle. Je l'ai dit, je le redis, sur un marché de 500 milliards annuels de consommation, 2 milliards de roupies, c'est 0,4%, ça ne représente rien. Donc il faut venir avec l'importation parallèle. Madame la Présidente, je vais parler de la clause 3 du Economic Bill, les amendements à section 64 du Banking Act. I have no problem if we contain it to drug trafficking, to terrorism financing. I have no problem with it at all. But I have a problem if we're going to use it for other purposes. I also have a problem that we give so much powers unchecked. And finally, I have a problem, and I'm surprised that the Minister Outim doesn't, on what it does to our financial services sector, the offshore sector.
3: मंत्रिमंडल ने पिछले शुक्रवार को सेशल्स के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच साझा कॉन्टिनेंटल शेल्फ की समुद्री जोन का अध्ययन करना, समंदर की सतह में खोज करने और भूवैज्ञानिक जानकारियां इकट्ठा करने और उसका संचालन करने में विशेषज्ञता रखने वाली वेरिजियन नामक कंपनी ये अध्ययन करने की जिम्मेदारी संभालेगी। मकसद है ये पता लगाना कि क्या समंदर की स्थिति कब हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के लिए अनुकूल है या नहीं। पेश है रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री दफ्तर का एक प्रतिनिधि मंडल इन दिनों सेशेल्स में है। वो मस्कोविंस में कॉन्टिनेंटल प्लेट के विस्तार पर जॉइंट कमीशन की एक बैठक में भाग ले रहा है। आयोग की इस 35वीं तकनीकी कमेटी में वेरिजिया कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते के मोडालिटीज को परिभाषित किया जाएगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रजा बादल कहते हैं, करीब 10 नियम कायम किए गए हैं जो खासकर पर्यावरण और खोज से संबंधित पहलुओं पर आधारित हैं और किस तरह संसाधन का संचालन किया जाए। विजय को इस क्षेत्र की जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल जानकारियां प्राप्त होंगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि कुछ प्रशिक्षण ईंधन की मौजूदगी के पक्ष में हो सकते हैं या नहीं। जॉइंट टेक्निकल कमेटी के कैसा बॉबे कहते हैं, वैज्ञानिक प्रशिक्षण काफी नहीं है, कई खोज कार्य किए गए हैं, मरीन स्पेशल प्लान शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारियां होनी चाहिए।
5: नो कैपेबल जोन सा ड्रीम इन टर्म्स ऑफ बन एक्टिविटीज की पोगा फेयर इन एक्टिविटी ओ सी की पोगा फेयर।
4: इस अध्ययन से भविष्य में इलाके की सभी गतिविधियों को लेकर संभावित पर्यावरण प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सकेगा। पहले ही कई अध्ययन किए जा चुके हैं। इस सहयोग से एक बड़ा खोजी जहाज हमारे इलाके में आ सका है जिसमें दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। हमने एक साथ काम किया, वैज्ञानिक प्रशिक्षण किए और समुद्र में नई किस्म की प्रजातियों का पता लगाया और ये जान सके कि बायोडायवर्सिटी में कौन सी जगह ज्यादा नाजुक है। इस तरह खोज कार्यों के दौरान ज्यादा सावधानियां बरत सकेंगे।
6: Comme ça, quand nous pouvons faire nos travaux d'exploration, nous connaissons qui côté nous pouvons faire plus.

0: संबंधित क्षेत्र करीब 3,96,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। दोनों देशों ने समुद्र में संसाधनों के संयुक्त संचालन को लेकर 2012 में समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
1: विवरण गीता सुनारन का रहा। मॉरिशस में तेजी से बढ़ रहे अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर ढंग से नियमबद्ध करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट ऑथोरिटी इस क्षेत्र के ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर रही है। 1 अगस्त से शुरू हो रही इस पहल का मकसद पारदर्शिता और पेशेवर प्रक्रियाएं तथा ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाना है, जो रियल एस्टेट एजेंट और डेवलपर्स इस क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से काम करेंगे उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अप्रैल बोला की करुणा लालू।
2: मॉरिशस में रियल एस्टेट मार्केट की कीमत 1 बिलियन रुपए से ज्यादा है। सेक्टर को बेहतर तरीके से विनियमित करने के लिए भूमि एवं आवास मंत्रालय के तहत आने वाली रियल एस्टेट एजेंट अथॉरिटी ऑपरेटरों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुरू कर रही है। यह अभ्यास 1 अगस्त 2026 से शुरू होकर 6 महीनों तक चलेगा। शुरुआत में 3 वर्ग संबंधित हैं। रियल एस्टेट की बिक्री और खरीद में माहिर रियल एस्टेट एजेंट, लैंड डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डेवलपर्स। एबेन में इस प्राधिकरण के हेडक्वार्टर में हमें बताया गया कि मकसद ये पक्का करना है कि घर, अपार्टमेंट या जमीन से जुड़ा हर ट्रांजैक्शन एक पारदर्शी और सुरक्षित परिवेश में हो, ताकि खरीदारों और विक्रेताओं की बेहतर सुरक्षा हो सके।
3: La protection des consommateurs, souvent il y a un acte qui passe, que ce soit dans l'achat et vente ou dans la location. La personne qui est enregistrée, les tenir à mettre un contrat en place entre lui et le client et garde un record de toutes les transactions qui sont passées avec sa client-là. Par exemple, une offre qu'il fait et comme ça, il peut faire une décision informée sur l'offre qui est mise et quel type de clientèle c'est.
2: अपनी तरफ से ऑपरेटरों का मानना है कि सेक्टर को और पेशेवर बनाने का समय आ गया है।
4: De nos jours, vous levez le matin, vous êtes sur TikTok ou sur Facebook, vous trouvez n'importe qui s'en va vendre n'importe qui terrain. Donc, nous n'avons plus qu'à continuer, nous n'avons pas capable de vivre dans un pays qui a une réglementation dans ce gros secteur-là. Donc, avec l'arrivée de REA, il n'est pas aussi évident qu'il ouvre un agent immobilier. Vous pouvez avoir un critère spécifique relatif au marché, relatif au business, pour être capable être enregistré comme un agent immobilier. Et ça, j'applaudis vivement.
2: Registration, EDB के नेशनल इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग सिस्टम के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। जारी किए गए सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराना होगा, जिसकी कीमत 20,000 से 1,00,000 रुपये तक हो सकती है। ऐसा न करने पर 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल जेल की सज़ा हो सकती है।
1: मॉरिशस को चीन की तरफ से 20 मेगावाट की क्षमता और 1 बिलियन रुपए की कीमत वाला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम दान में मिल रहा है। इस सिलसिले में कल ऊर्जा मंत्री पत्रिका सेवादेन और चीनी राजदूत हुआंग शिफांग ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जल्द ही 2 नया भंडारण सिस्टम के कार्यरत होने से देश के राष्ट्रीय ऊर्जा नेटवर्क में अतिरिक्त 60 मेगावाट बिजली जुड़ेगी। पेश है रिपोर्ट गीता स्नारन के साथ।
0: बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो बिजली को संग्रहित करती है ताकि बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। चीन की ओर से मिले इस सहयोग के तहत मॉरिशस को जल्द ही अपनी पहली 20 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली मिलेगी। ये प्रणाली बिजली ग्रिड की स्थिरता को बेहतर बनाएगी और सीबी को बढ़ती बिजली मांग, खासकर पीक आवर्स के दौरान, ज्यादा प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करेगी। मंत्री पत्रिका सेवादेन कहते हैं, हमने एक बैटरी खरीदी है जो अगस्त में कार्यरत हो जाएगी। ये 20 मेगावाट की होगी। एक दूसरी बैटरी के लिए ऑर्डर भेजा है जो 20 मेगावाट की ही है और 600 मिलियन रुपए की है। 9 महीनों में ये नेटवर्क में शामिल हो जाएगी। 20 मेगावाट की एक बैटरी के लिए चीनी सरकार की ओर से 1 बिलियन रुपए मिल रहे हैं। बहुत जल्द नेटवर्क में 60 मेगावाट की बैटरी कार्यरत होगी। हर रोज 6 से 9 बजे तक बिजली को लेकर राहत मिलेगी और इससे नेटवर्क में स्थिरता आएगी। समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान चीन की राजदूत वांग शिफांग ने इसे मॉरिशस और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। वे कहती हैं, मॉरिशस ने ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कटिबद्धता ली है। चीन

0: ग्रीन एनर्जी को लेकर दुनिया भर में आगे हैं और हम टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता और अनुभव बांटने के लिए तैयार हैं। ऊर्जा मंत्री पत्रिका सियाबादेन के अनुसार ये परियोजना ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने, नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और सरकार की स्वच्छ ऊर्जा संबंधी पहलों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: पोर्ट लुइस में रुइसो जिपूस पर स्थित ईआर कंपनी का पार्किंग स्थल तोड़ने के काम का अंतिम चरण कल सुबह पूरा किया गया। पूर्व न्यायाधीश भूषण दुमा द्वारा 2008 में नहरों के ऊपर निर्मित संरचनाओं को हटाने की सिफारिशों के बाद इस पार्किंग स्थल को तोड़ने का काम 2023 में शुरू किया गया था। ये सिफारिशें पोर्ट लुई में बाढ़ की स्थिति को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन के बाद जारी की गई थी।
0: पोर्ट लुइस भारी बारिश की आशंका को देखते हुए पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। शहर को जलभराव से बचाने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल सुबह इस व्यापक अभियान का अंतिम चरण शुरू हुआ, जिसके तहत नदी नालियों पर बनी अवैध संरचनाओं को हटाया गया। इस परियोजना की कुल लागत 15,04,092 रुपए की है। नगर पालिका ने रुइसो जिपूस नाले पर ईआर कंपनी द्वारा बनाए गए पार्किंग क्षेत्र को भी ध्वस्त कर दिया है। गोविंदा हसन नयागन कहते हैं, बाधाओं को हटाना बहुत ही जरूरी था। नीचे खम्बे हैं। बाढ़ के बाद हमने देखा कि वहाँ कई मलबे हैं, जिससे म्यूशम और पुदगिया गली के इलाकों में पानी भर जाता है। हालांकि ये अभियान आसान नहीं था। सबसे पहले नगर पालिका को रुइसो जिपूस के किनारे कंपनी गार्डन के पास बैठे फेरी वालों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। इसके अलावा मेटको और रॉजर्स कंपनियों के साथ पार्किंग इलाके हटाने को लेकर भी सहमति बनानी पड़ी। पानी भर जाता है क्योंकि लोग बहुत कचरा फेंकते हैं। नाली बनाने में बहुत पैसा खर्च किया जा रहा है, मेंटेनेंस पर भी खर्च करना चाहिए था। लाबित से लेकर टुनिये के किनारे बनी सभी संरचनाओं को भी हटा दिया गया है। कंपनी गार्डन के सामने स्थित पुराना KFC इमारत अब पूरी तरह हट चुका है। वहीं एयर मॉरिशस के पायोंग इमारत के पार्किंग स्थल को भी नष्ट कर दिया गया है। लोर्ड मेयर क्रिस्टल पोंडा कहती हैं, सफाई करने में कठिनाई होती थी, अब मलबे नजर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नियमित रूप से सफाई की जा सकेगी। ये कार्य बाढ़ के खतरे को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं, लेकिन शहरी विशेषज्ञ डॉक्टर जहीर आलम के अनुसार जलवायु परिवर्तन और आधुनिक शहरीकरण से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए ये उपाय अभी काफी नहीं है। पहले की तुलना में पोर्ट लुइस की आबादी अब बहुत ज्यादा है। वर्तमान मूल ढांचे अब उद्देश्यों को पूरा नहीं करते हैं, पुनर्व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा। वही नेशनल डेवलपमेंट यूनिट ने नदी नाली व्यवस्था और संवेदनशील इलाकों के पुनर्विकास के लिए योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं ली हैं, ताकि भविष्य में बाढ़ के खतरों को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके।
1: क्यूबेक के लायंस क्लब के सहयोग से 10 मार्शियन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है। ये ऑपरेशन पाकिस्तान से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर वाजिद अली खान द्वारा सुब्रमण्यम भारती आई हॉस्पिटल में किए गए। उनके इस दौरे के तहत लगभग 20 और ट्रांसप्लांट किए जाएंगे।
0: पिछले एक साल से शीला सूखिया आंखों की गंभीर समस्या से जूझ रही थी। इस वजह से उनका रोजमर्रा का जीवन कठिन हो गया था और उनकी स्वतंत्रता भी काफी सीमित हो गई थी, लेकिन अब उनकी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी सफलतापूर्वक हो गई है। पिछले साल से आंखों में समस्या होने लगी थी। अस्पताल में इलाज करवाने आई, मुझे वेटिंग लिस्ट में रखा गया। विदेशी डॉक्टरों ने मेरा ऑपरेशन किया, अब मेरी समस्या बहुत कम हुई है। उनकी तरह 9 अन्य

0: मरीजों का भी ऑपरेशन लायंस क्लब ऑफ क्यूपिप के सहयोग से चलाए जा रहे इस अभियान के तहत किया गया। मारियान लानगुला कहती हैं, 2015 में आंखों की समस्या थी, तीसरी बार इस आंख का ऑपरेशन किया है। क्यूपिप के लायंस क्लब के अध्यक्ष नवीन बुबीचंद कहते हैं, हमारा उद्देश्य है सेवा प्रदान करना ताकि लोगों को अपनी आंखों से दिखाई दे। ये सभी सर्जरीज पाकिस्तान से आए नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वाजिद अली खान ने की। इस तरह के चिकित्सा अभियान मरीजों को विशेष उपचार उपलब्ध कराते हैं और उन्हें फिर से सामान्य तथा आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद करते हैं। डॉक्टर वाजिद अली खान कहते हैं, 4 विशेषज्ञ यहाँ आए हैं और हर एक की अपनी अलग अलग विशेषज्ञता है। मैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करता हूँ, जबकि मेरे अन्य सहयोगी डायबिटिक रेटिनोपैथी और रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज करते हैं। खासकर जिन मरीजों का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया गया है, उनके दोबारा दिखने की संभावना बहुत अच्छी है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके मामले में आंख का बाकी हिस्सा सामान्य रूप से काम करता है, केवल कॉर्निया कमजोर या क्षतिग्रस्त होता है। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज अच्छी तरह देख सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मॉरिशस में समय समय पर विदेशी विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि मरीजों को उच्च स्तर का विशेष उपचार मिल सके। कई लोग आंखों की रोशनी खो देते हैं, हम भी वेटिंग लिस्ट में मरीजों की संख्या कम करना चाहते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने इंतजार किया। विदेश से मिल रहे सहयोग से आने वाले सप्ताहों या महीनों में सभी लोगों का ऑपरेशन हो जाएगा। इस चिकित्सा अभियान के दौरान मॉरिशस में लगभग 20 कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किए जाने की उम्मीद है।
1: अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, भारत में एंटी पेपर लीक बिल कल राज्यसभा में पारित किया गया। इसके विरोध में विपक्ष ने सभा से वॉकआउट किया। इस कानून का मकसद है किसी भी परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के किसी भी मामले के लिए सजा और सख्त करना। हाल में नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद भारत में वृहद प्रदर्शन हुए, जिसको ध्यान में रखकर सरकार इस नए विधेयक के साथ सामने आई। स्पेन में प्रवासन संकट फिर से गंभीर हो गया है। कुछ ही घंटों में हजारों प्रवासी मोरक्को से स्पेन के सियोटा इलाके में दाखिल हुए, जिससे मानवीय और सुरक्षा संबंधी आपात स्थिति पैदा हुई। इस संकट की वजह से यूरोपीय संघ के अंतर्गत खासकर मैड्रिड और रोम के बीच मतभेद फिर से उभर आया है। आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे बादलों का असर हमारे इलाके पर रह रहकर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात और कल सुबह बादल घिरे रह सकते हैं और बारिश होती रहेगी। कल दोपहर बाद खासकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:39 पर सूर्योदय, शाम को 5:52 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में लीड फिक हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। सेवक लेन सेबास्टोपोल में, सेवक लेन सेबास्टोपोल में 70 साल के 70 इयर्स ओल्ड श्री अनिल कुमार सेवक, श्री अनिल कुमार सेवक जो लेविस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 3 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 3 बजे इनकी पत्नी श्रीमती गीता सेवक के मकान सेवक लेन सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौन निवास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 3 PM।

0: एम। रॉयल रोड ब्रह्मस्थान में स्कूल के पास 81 साल के 81 ईयर्स ओल्ड श्री रामानंद देवी, जो पीओ रामानंद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनके मकान रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। समुंदर लेन पायोत में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड श्रीमती तारामती शंकर, जो तारामती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, और श्रीमती रजनी शंकर की बेटी थी, इनकी मृत्यु हो गई है। जो श्रीमती रजनी शंकर की माँ थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे इनके मकान समुंदर लेन पायोत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल माँ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट नून। नंबर 70 मोसल मगाम फल प्लान दीवापाई में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री रामाकृष्णा नारायणा रेड्डी, जो देवेन आया देवेन नाम से ज़रा जानी जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे इनकी पत्नी श्रीमती पिचाई नारायणा रेड्डी की मकान नंबर 70 मोसल मगाम फल प्लेंदी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेंदी पापाई की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1:30 PM। अलीमोंग पोस्ट डिफ्लाक में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री जमनलाल गंगू, जो देवकी सोफिया बिस नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके मकान अलीमोंग पोस्ट डिफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोस्ट डिफ्लाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। ग्रीष्मोफ्लाक में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड श्रीमती इंद्रावती रामजियावन, पिताजी नाम फकीरा, जो इंद्रावती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह नौ बजे इनकी बेटी श्रीमती प्रेमिता गजाधर के मकान ग्रीष्मोफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रीष्मो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 9 AM। KGW Lane, Le Hochetier Rouge में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड श्री मानिको मुताई, जो मानिको नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनके मकान KGW Lane Le Hochetier Rouge से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले देवपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। नंबर A01 डोडो एनएचडीसी लातू क्विनिंग में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड श्रीमती पलम्बल उपिया, जो याया तोचिन लाबुचिक नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनकी बेटी श्रीमती शश्री उपाया के मकान नंबर A01 डोडो एनएचडीसी लातू क्विनिंग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले देवपद की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। एवेनी ड्रेपर बेलरोज में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती बागिया बुल्का, जो बागिया पाबित नाम से ज़रा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। रविवार 2 अगस्त को दिन के 3 बजे इनके मकान अवेन्यू ड्रेपर बेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोडगौर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन ऑन संडे 2 अगस्त। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

रिदमर शिस पर लाइव प्रसारण जारी है। आइए अभी के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सुनते हैं कुछ विज्ञप्तियां। सेंखवा के रहने वालों को, खासकर इन गलियों के निवासियों को सूचित किया जा रहा है जो है फेतों पेलावाल, लुआजो, आले पेलावाल, इजोदो बुके, कनाल बाथर्स्ट, जुक्रे, अबेक्रोबी, सेंट मारी, ओडिन लेन, रेसिडेंस ब्रिक्टेरी और रोड पॉम्पलमोसेस के कुछ हिस्से पर वहाँ रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अब सुनिए दूसरी विज्ञप्ति। कटबोन, खासकर इन गलियों के रहने वालों को, एवेन्यू ओटेल, एवेन्यू ओलिये के कुछ हिस्से, टोम्बोलेन, एवेन्यू फॉक्वो, रेसिडेंस पेलावाल, पावियन स्विमिंग पूल, एवेन्यू कोंट दे लिस्ले, एवेन्यू स्टैनले, उन सभी जगहों के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। अगली विज्ञप्ति। बॉकली, खासकर एवेन्यू शुमान, एवेन्यू ब्राम्स, एवेन्यू रेमियोलिये, एवेन्यू रोज दे बॉक के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। बोबासें, खासकर एवेन्यू मैंगाओ, एवेन्यू बेलियोज, एवेन्यू हॉन्डेल, एवेन्यू बिजे, सेंट्र म्युनिसिपाल मैंगाओ के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि शनिवार 1 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। क्यूपिप के रहने वालों को, जो है लीज के कुछ हिस्से, विलुबी के कुछ हिस्से, एंडरसन के कुछ हिस्से, सतो, हिगिनसन बर्ड, मेग्रो और मोटोशियो, हजारी सिंह के कुछ हिस्से, फ्लैट लोचिस, रेसिडेंस जुमेनिल, मोसलमा डाले और वहां आसपास के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 2 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। कुछ और विज्ञप्तियां सुन लीजिए। मोसलमा हिंगन, प्लेंडे एमिताज के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल शनिवार 1 अगस्त 2026 को दिन के 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएगी। एनएचडीसी विन्योल, सिया कॉन्स्टांस और लाग्रेमेंट सेंट पियर के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल शनिवार 1 अगस्त 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से वहां पर बिजली में कटौती लाई जाएगी। और एक कम्युनिके सुन लीजिए। मोसलमा राफ्रे, पॉइंट कानोनी और रिजर्वर रोड गांबे के रहने वालों को सूचित किया जा रहा है कि रविवार 2 अगस्त 2026 को

सुबह 8:30 से लेकर सुपहर के 3:30 तक बिजली में कटौती लाई जाएगी। तो उन सभी जगहों पर मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली में कटौती लाई जाएंगी और जैसे ही मरम्मत कार्य पूरा हो जाएंगे तो बिना पूर्व सूचना दिए बिजली को फिर से चालू कर दी जाएगी। ये थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कुछ विज्ञप्तियाँ।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: श्रवण मास के उपलक्ष्य में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारनी सभा त्रियोले शाखास के सहयोग के साथ श्रवण मास यज्ञ और प्रवचन का आयोजन 1 अगस्त शनिवार को महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर त्रियो रोड थोबिश दोपहर 3:30 बजे कर रहा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस 4th जगन्नाथ रथ यात्रा पितों से लेस्पेरांस ट्रेबुशे 1 अगस्त 2026 शनिवार का दिन दोपहर 2 बजे कर रहा है। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारनी सभा श्रवण मास का शुभारंभ 1 अगस्त शनिवार के दिन दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में कर रहा है। जगह महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर झब्बू लेन त्रियो रोड त्रियोले। हाइलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर नादिस रोड हाइलैंड्स फिनिक्स इस रविवार 2 अगस्त को सुबह 8:30 बजे एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। श्रावण मास के उपलक्ष्य में मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारनी सभा की शाखाएं यज्ञ और प्रवचन का आयोजन कर रही हैं। रविवार 2 अगस्त को सुबह 8 बजे से 9:30 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती वैदिक मंदिर में साप्ताहिक यज्ञ। सुबह 9 बजे नूतन जागरण सभा लालमाची। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रवचन होंगे भारत से आचार्य मोहन आर्य द्वारा, जगह सोलफरिनो सूर्य भवन। और दोपहर 4 बजे पुदखदो आर्य रविवेद प्रचारनी सभा। नवोदित रामायण मंडली इस रविवार 2 अगस्त 2026 को ओशनोआ मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स जो विलेज काउंसिल कंपाउंड के पास है वहां अखंड राम भजन कीर्तन का आयोजन कर रही है। गीता मंदिर सम्मेलन सभा और आशुतोष गीता मंदिर सम्मेलन सभा सोमवार 3 अगस्त से रविवार 9 अगस्त के बीच शिव पुराण कथा का आयोजन कर रही है। आर्य सभा मॉरिशस द्वारा श्रावणी उपाकर्म के उपलक्ष्य में मॉरिशस के विभिन्न आर्य समाजों में श्रावणी यज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत से आए प्रोफेसर वेदपाल जी द्वारा श्रावणी उपाकर्म विषय पर विशेष प्रवचन होंगे। शनिवार 1 अगस्त यज्ञ और प्रवचन बुआशेही रोड मुखा आर्य समाज, वक्त दोपहर 3:30 बजे। रविवार 2 अगस्त यज्ञ प्रवचन डर्बी फॉरसाइड आर्य समाज सुबह 9 बजे। सोमवार 3 अगस्त वृष्टि यज्ञ कौतूहल आर्य समाज दोपहर 3:30 बजे।
2: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

相信只有手中的那根烟还能体会我颤抖的双唇，怕就怕在我的心几分，怕就怕缘分尽了我

0: don't care about others.
1: We are Hollywooders.
2: My, this is Radio Marches.
3: 您好
4: ，Assalamualaikum。
5: Kimchi Mauritius。
6: Namaskar。
7: ஷோத்ரந்தரிக்கு ஹிருதயபூர்வக நமஸ்காரம்.
8: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
9: Radio Mauritius पर दिल से स्वागत है आप सभी का.
10: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर.
11: भजले प्रभु का नाम. नमस्कार श्रोताओं. श्रोताओं, जिसने प्रभु का नाम लिया उसकी नैया पार आ गई. बड़ी बड़ी सुनामी आती हैं जीवन में, तूफान आते हैं, दुख आते हैं, प्रिय साथी छोड़ देता है. जिनको हम अपना समझते हैं वे ही साथ छोड़ देते हैं, वे ही बुरा व्यवहार करते हैं. लेकिन वे व्यक्ति हैं ना, वे सांसारिक लोग हैं. हमें जुड़ना होगा उस परम शक्ति के साथ जो हमेशा हमारा हित चाहती है, जिसके हम अंश हैं. हम असल में अपनी मोह माया के कारण सांसारिक लोगों से अधिक अपेक्षा करने लगते हैं, और जब अपेक्षा करते हैं

उपेक्षा सहनी पड़ती है और फिर हम रोते हैं, तो क्यों ना उस परम सखा से जुड़े जो हमेशा जीने के समय, मरने के बाद, अगले जन्म में हमारे साथ रहेगा। तो आइए इस भजन का आनंद उठाते हैं।

श्रोताओं, प्रभु का नाम एक ऐसी शक्ति देता है जो जीवन को मजबूत बनाता है। किसके जीवन में संकट नहीं आते? श्री राम ने जब लीला की, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, क्या उनका जीवन बहुत सहज था? अरे, हमसे तो 10 गुना ज़्यादा उन्होंने कष्ट सहे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे समाज का हित सोचा। तो हमें भी ऐसे ही प्रभु का नाम स्मरण करना है, ताकि उनकी ताकत, उनकी शक्ति हमें मिल सके, हमें उनका सहारा मिल सके। सांसारिक लोगों के सहारे का क्या लाभ? वह परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन प्रभु हमेशा साथ रहते हैं। तो आइए इस भजन को सुनते हैं।

और अंत में श्रोताओं, कैसा भी कष्ट आए, अपनी श्रद्धा को डावाडोल मत होने देना, अपने विश्वास को कम मत होने देना। उस प्रभु में विश्वास हमारी ताकत है, उसमें श्रद्धा हमारे रास्ते को खोलती है। श्रोताओं, श्रद्धा, विश्वास और उसके साथ नाम स्मरण, यह ताकत जिनके पास है वे नैया से पार हो जाते हैं। आप सभी को रामचरितमानस का वह प्रसंग याद है ना, विभीषण चिंता कर रहे हैं कि राम कैसे युद्ध करेंगे, लेकिन राम क्या कहते हैं, जिसके पास शौर्य है, धीरज है, संयम है, नियम है, वह बड़े से बड़े युद्धों को भी जीत लेता है। तो श्रोताओं, जीवन को पवित्र जिए, भोजन पवित्र हो, वाणी अच्छी हो और प्रभु का नाम,

बस और क्या चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस भजन को और इस आनंद को लेते हुए अलका धनपत और शिव, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, शिवरात्रि।

भगवान कृष्ण लीला अवतार कहे जाते हैं। एक लीला ये भी देखिए, अन्य बच्चों की तरह रोज माटी खाते थे और माँ पूछती तो साफ मना कर देते थे, और एक दिन पकड़ लिए गए।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवीज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के आप तमाम सामीन खैर व आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद कलाम के साथ, जो हमारे दिलों को रूहानियत और सुकून से भर दे।

ए रब्बे ज़ुल जलाल तेरी ज़ात लाजवाल, ए रब्बुल आलमीन तेरी तस्बीह में है गुम, सारे जहां में कोई नहीं है तेरी मिसाल, दुनियाए दो जहां के सब अदना उबा कमाल। शामिल मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, आप फरमा दीजिए कि हमें हरगिज़ कोई चीज़ नहीं पहुंच सकती मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वही हमारा कारसाज़ है। ये आयतें हमें सिखाती हैं कि हमारी ज़िंदगी, हमारी खुशियाँ, हमारी आजमाइशें, हमारी कामयाबियाँ सब अल्लाह ताला के हुक्म से वाबस्ता हैं, किसी महीने, किसी दिन या किसी तारीख से नहीं। मज़ीसामीन, इस्लामी साल का हर महीना अल्लाह ताला की तख्लीक है।

ये रेडियो मॉरिशस है, परवीज़ा का साथ है उर्दू नशरियात महफिल शब में रात के 9 बजे तक। शामिल महतरम, इस्लाम हमें तवक्कुल सिखाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें इसी तरह रिस्क अता फरमाएगा जैसे परिंदों को देता है। वह सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को आसूदा होकर लौटते हैं। सामईन अजीज, माह सफ़र हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है कि हम अपने ईमान का जायज़ा लें। अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो सब्र इख्तियार करें, अगर नेमतें मिलें तो शुक्र अदा करें, अगर आजमाइश आए तो दुआ करें, अगर खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र बजा लाएं। यही मोमिन की शान है। अल्लाह ताला हमें सही अकीदा अता फरमाएं, हमारे ईमान को मजबूत करें, हमारे घरों में रहमतें नाजिल फरमाएं, बीमारों को शिफा, परेशान हालों को सुकून और मरहूमीन की कामिल मगफिरत फरमाएं। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है। मशकूर ममनून।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का।
1: नमस्ते हमनी के सब श्रोता लोग के तोहर स्वागत करत हैं जा भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। उम्मीद करत हैं कि तोहर दिन आज बहुत अच्छा से गुजरल हो, आज के दिन बहुत मजे में गुजरल हो, जितना काम सोचले हुई बजा सब के सब काम अच्छा से पूरा होल हो। और यही उम्मीद करत हैं कि अभी हमनी के भोजपुरी तड़का में बहुत अच्छा से भाग ले बजा और ये हमनी के कार्यक्रम में अपन पसंद के गाना की फरमाइश कर बजा। जो टेलीफोने करे खोजबा जा तो हमनी के नंबर है 4028085 और जो मिसाज भेजे खोज बजा तो हमनी के नंबर है 5251700005 और ई नंबर इन दोनों नंबर पर हमनी के संपर्क सक बजा करे और ये अपन पसंद के गाना के फरमाइश करे सक बजा। अभी हमने जन गाना सुनवाओ जाता लोग के गाना संभावती दुमन जी के गावल गाना है और ये गाना हमने से मंगले हवन ललिता जी गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, अपन बहिन सुदेवी खातिर, बहिन देवी ना ज्ञानी और नीता खातिर, छत्री जी, प्रभावती जी, आत्माराम जी और हरीश जी खातिर, सुखलाल मौसी, माला राम जवन और उषा लुकाना के नाम करत हवन ललिता जी ई गाना।

बहल गौरी और उनकर भाई लोग के संगे संगे गावली गाना चल हम सुनते हैं जा शिव जी पर आधारित। और अभी तो श्रावण मास चलता, शायद यही उपलक्ष्य में मंगले हवन हम से गाना अनीता जी मौदाल पे ऐसे करुणा अमृता और पूरा परिवार के संगे मिलके

वन के महीना के शुभकामना देवत हैं जा तोहर लोग सब कोई के और हमने के पूरा टीम ही उम्मीद करा था कि महीना में तोहर लोग के बरकत ही बरकत होगी। अभी सुना थे जा हमने सुमन राम तोहर जी के गावल गाना, सुमन के गमट चला गमट करी जा सुमन के संगे संगे, और ये गाना हमने बजवाई ला जा कौफुको के मालिनी जी की जी बगल से उनकर बेटी शेषना खातिर और उनकर पति अविनाश खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

तो बस चला अब रिकुत आगे बढ़ब जाओ री हमनी मड़ैया के अगवा के बारे में सुनब जा रागिनी सवारत और लीलू माथुर जी के गावली गाना। ये गाना हमने बजवाओ थे जा संजय जी के पसंद पर। संजय जी गाना पोडवी से मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर खास तौर पर अपन दादी माँ खातिर। तो चला उनका संगे संजय जी के संगे संगे उनका दादी माँ के संगे संगे सुने जाए।

अब चल अब बढ़ी जा हमने जुबेदा के लुतु बगल, जुबेदा के लुतु में बैठी जा और गाना हमने नाम करी जा अबू जी के। अबू जी गाना मंगले हवन आफेज असलम आया जायान जाहिरा रईस काला चौथी खातिर अपन संगतिया अपी खातिर और उनकर पत्नी खातिर और रकीबा जी के नाम कर ले हवन गाना और संगे संगे अभी उनकर घरे उनकर परिवार लोगाल हवन जा पूरा परिवार के नाम रम भराम तो हर जगह गावल जी।

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में चला बढ़ते बढ़ते चली जा हमने कलकत्ता के दहाज के बारे में सुनी जा। और कलकत्ता से जब दहाज निकल के आ रहल तो बड़ा दुख भी ओकर में रहल और विकास के एगो सीमा भी रहल दिखबत बकीर ई विकास के सीमा पर अते अते जितना पीड़ा हमने के पूर्वज लोग सहलन जा ई तो बहुत दिल दहला देवेला। चल हमने सुनी जा पूर्णिमा फकीरा जी के गावल गाना है। पूर्णिमा जी गाना मंगले हवन पूरा फकीरा परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: अभी विनोद सिद्धार्थ जी के गावल गाना सुनब जा और ये सुनत है जा उनका संगीत और कौन सी लेके आल हव कौन सी लेके जैब सच्चाई जीवन के हमने के विनोद सिद्धार्थ जी सुने हन। शांति जी तेहू से गाना मंगले हवन दागोचा के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर और अपा दागोचा के अपन भगीना ओम खातिर।

गुरकी संवर की चला सुने जाओ पूर्णिमा फकीराजी की गावल गाना। और ये गाना हमने से मंगले हवन गायत्री जी नोवेल फॉन्स से मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, लॉन्ग माउंटेन के भाभी शकुंतला जी खातिर और नोवेल फॉन्स के सखी गीता बाई खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का ते लगाओ। अब जब हमने जन्मदिन के गाना संगे संजय गोविंद जी के गावाली जन्मदिन वाला गाना हम भी बजवावत है जा समीक्षा खातिर। समीक्षा के जन्मदिन काल और उनका जन्मदिन के शुभकामना उनकर भाई अरियन देवत हवन, उनकर माँ उषा, चाचा चाची, फूफा फूफू, कुशल परिवार, उनकर सब कुछ कुछ लोग मिलजुल के उनका बोला तो जन्मदिन अभिनंदन। हैप्पी बर्थडे टू यू समीक्षा।

तो चलो अभी कुछ हमने पीतों के अमृता जी के पसंद के गाना प्रस्तुत करी जा लीलो माथुर सुकरन जी के गावाली गाना अमृता जी मंगले हवाने पन बेटी पूनम खातिर सोनिया और परी खातिर बेटा विशान पतो मीनाक्षी खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर।

लीलो माथुर सुकंज के गावाली गाना हमनी घोंगुप के सुनीता जी बगल से उनकर बहिन खातिर प्रस्तुत करते हैं जा गोंगो कोंगो माँ के वीमाला जी खातिर।

अफ्रीका फ्लैग कहनी था जी आप हाइजे पर हवा ना, हाइजे पर हवा ना तो हर पसंद के गाना चलावत है जाता तो हर पूरा परिवार खातिर तर सब संगत यालो खातिर प्रस्तुत करते हैं जा गासन सिंगारों जी के गावली गीत।

दादा दादी के कहानी सुनला के बाद चला मामू के कहानी सुनी जा। अभी गणेशन हरी जी के गावा ली गाना और ये गाना हमने से मंगले हवन रतन जी घोंपे से अपन पत्नी करुणा जी के नाम। वैसे करुणा जी मंगले हवन ये गाना रतन जी के नाम। चला सुनी जा।

विनोद सिंह दत्त जी के गावल गाना हमने बजात है जा श्रीमती जी खातिर। श्रीमती जी गाना मंगले हवन सुयाग से पूरा चंद्रमुनि परिवार खातिर, पूरा मोहेश परिवार खातिर।

अभी सगरो पूजा के माहौल चलल बा श्रावणी के अवसर पर, तब पूजा के माहौल में राजन लक्ष्मण जी अम्बे मैया के गीत मंगले हवन सुनीता ननको जी के गावल। लाफलोगा से राजन लक्ष्मण जी गाना अपन पत्नी माला खातिर मंगले हवन, अपन बेटी प्रगति और प्रार्थना खातिर, बहन मानती खातिर, भगिनी उर्मिला तुलसी खातिर, पूरा लक्ष्मण परिवार खातिर, हमने के सके किरण जी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद एक खातिर राजन लक्ष्मण जी।

0: सुनील गंगाराम जी की गावली गाना सुनी जा, भुलक्कड़ गाना है, भुलक्कड़ कितना भुला जाला चला सुनी जा। ये गाना हमने बजाया था जा सैंपल के विद्यार्थी के पसंद पर, और ये गाना हमने बजाया था जा राधिका जी खातिर बाकवा के।
1: बुटिक

एक लीबर जूता की, एक लीबर फीता की, एक लीबर आटा। सुनील गंगाराम जी के गावली गाना रहर। अभी चला सुदेश बोजू जी के गावल पीती पीती छोकरी और शहर के छोकरी के संगम। और ये गाना हम सुने थे जा विश्वानी जी के पसंद पर। विश्वानी जी रहे लन ते खुश। ये गाना मंगलवार अपन पूरा परिवार खातिर, खास तौर पर अपन पति राजीव जी खातिर।

और अभी हमने सुना था जा कुणाल बाबूलाल जी के गावल गाना बैगन बागी होला गाना, और बैगन बागी होला गाना सुनते सुनते हमने के कार्यक्रम समाप्त हो जाए। हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, और भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो हर खातिर हमने प्रस्तुत कर ली जा। उम्मीद करे थे जा कि भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो लोग के पसंद पड़ल हो, और हमने के श्रोता लोग जितना हमने के टेलीफोन करके अपन पसंद के गाना मंगलन जा उनका बहुत बहुत धन्यवाद देव जा। और यही उम्मीद करे थे जा कि हमने के श्रोता लोग के चुनल कनकनवन तो लोगों खूब मजे से सुन ला जा। बस अभी 11 बजे में 5 मिनट बाकी बा, ये गीतवा सुना जाए। गीतवा सुनते सुनते 11 बज जाए और 11 बजे सुनिया जा आज के पुराना गीत के कार्यक्रम सुनहरे पल। कार्यक्रम लेके आए हन अग्निशा आवा थला, फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लवली लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग। गिनिशा बड़े प्यार से आई है आप लोगों का साथ निभाने के लिए इस प्यारे से सफर में। आपका सुनहरे पल, आपका दिल से स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं वो अनमोल नगमे जो सिर्फ संगीत नहीं बल्कि जिंदगी के हसीन लम्हों का एहसास है दोस्तों। तो बस मुस्कुराइए और यादों की इस महफिल का हिस्सा बन जाइए।

दोस्तों, हर पुराना गीत एक खुशबू की तरह होता है, जैसे ही सुनाई देता है दिल पुरानी यादों के बाग में खो जाता है। आज के इस सफर में हम मिलकर उन यादों को फिर से महसूस करेंगे। तो बैठ जाइए आराम से और अगला नगमा आपके नाम।

कभी किसी गाने ने आपको अपने स्कूल की याद दिलाई है, या किसी अपनों की मुस्कान, या हो सकता है किसी का प्यार। वैसे भी आज के हर गीत में वही जादू छुपा है, तो बने रहिए हमारे साथ सुनहरे पल में। इस खूबसूरत से शो में हम लेकर आए हैं आपके मनपसंद गीत, तो चलिए अगला नगमा आप गुनगुनाइएगा जरूर और अपनी उन खूबसूरत यादों को फिर से याद कर लीजिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

रात कितनी भी थकी हुई क्यों ना हो, एक प्यारा सा पुराना गाना दिल को फिर से ताजा कर ही देता है। आज हम वही सुकून और प्यार लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए इस खूबसूरत से शो में। वैसे जिंदगी बदलती रहती है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में रहते हैं। आज उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के साथ अपनी रात को यादगार बनाइए ऑन रेडियो मॉरिशस सुनहरे पर।

रेडियो की दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास तब होता है जब एक गीत आपके दिल की बात कह जाए। शायद, बिल्कुल जी शायद, आज का अगला गीत भी आपके लिए कुछ खास हो, किसको पता।

अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं या बस आराम से बैठकर हमारा साथ दे रहे हैं तो इस संगीत भरे सफर का मजा लीजिए। हर गीत एक नई मुस्कान लेकर आएगा। तो चलिए सुनहरे पल आपके नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: पुराने गीतों की बात ही अलग होती है मेरी जान, ना उनमें शोर होता है ना दिखावा, सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज और रूह को छू लेने वाले सुर होते हैं। तो चलिए आप तैयार हो जाइए अगले गीत में खो जाने के लिए।

खूबसूरत नगमे सुनाते सुनाते इस खूबसूरत शो का अंत में कब पहुंच गया हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है जब इंसान इन खूबसूरत नगमों में खो ही जाते हैं, जैसे कि हम अभी अभी खो गए थे इस एक घंटे की सफ़र में। लेकिन दिल छोटा ना कीजिए, फिर से आएंगे एक और खूबसूरत सी सफ़र के साथ रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, सिर्फ सुनहरे पल में आपके लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। हमें इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: You're listening RM Free Radio.

You're listening RM Free Radio. Radio.

0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: This is something

0: मालूम था पहले से।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ए, बोल ए कचुंबर।
2: अरे बोल पाखंडी,
1: तू शुरू करता है क्या?
2: अरे तू ही शुरू कर।
1: अच्छा ठीक है, सुन ले।
2: सुना
1: सरे गा रे गा रे गा पा गा पा गा पा दा पा दा पा दा पा दा सा सा दा पा दा पा गा पा गा रे गा रे सा दा सा पा दा गा पा गा रे गा सा बोल बोल बोल झटपट।

0: पास है फिर देखो
1: दिखा।
2: देख कमर का काम जरा डिंडारा डिंडारा डिंडारा डिंडारा डिंडारा डिंडारा

0: मत बोल हसीना, ये है बड़ा हसीना।
1: लेट गया। अरे सो गया, एक कुंभकर्ण की औलाद सो गया। तू हार गया, मैं जीत गया। 1 2 3 4 चल बट।

You're listening RM Free Radio.